चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: This is Radio Marches.
2: निहाओ,
3: अस्सलामुअलैकुम,
4: किम चू मॉरिशियस,
5: नमस्कार,
6: श्रोतृंदरिकी हृदयपूर्वक नमस्कारम,
7: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
8: रेडियो मॉरिशस पर दिल से स्वागत है आप सभी का।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
2: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। सावन प्रभात की इस पुण्य बेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रावण मास की पूजा और अपने चरम पर हैं भगवान का, और पूजन निरंतर हो रहा है भगवान शिव के विषय में, और शिव पुराण कह रहा है कि जय जय जगदेकनाथ शंभु प्रकृति मनोहर नित्य चित स्वभाव अतिगत कलुष प्रपंच वाचा मपि मनसा पदवी मती तत्त्वम्। कि जगत के एकमात्र रक्षक नित्य चिन्मय स्वभाव प्रकृति मनोहर हे शंभो, आपका तत्व कलुष राशि से रहित निर्मल वाणी तथा मन की पहुंच से भी परे है, आपकी जय हो। जय हो भगवान स्वभाव।

स्वात्मतुल्य महाशक्ते जय शुद्ध गुणार्णव। आपका श्री विग्रह स्वभाव से ही निर्मल है, आपकी चेष्टा परम सुंदर है, आपकी जय हो। आपकी महाशक्ति आपके ही तुल्य है, आप विशुद्ध कल्याणमय गुणों के महासागर हैं।

0: मंगलौ, आप अनंत कांति से संपन्न हैं। आपके श्री विग्रह की कहीं तुलना नहीं है। आपकी जय हो। आपका अतर्क्य महिमा के आधार हैं तथा शांतिमय मंगल के निकेतन हैं। भगवान आपकी जय हो। जय हो निरंजन निराधारौ, जय निष्कारणोदयौ निरंतर परानंद, जय निवृत्ति कारण निरंजन। मतलब निर्मल, आधार रहित तथा बिना कारण के प्रकट होने वाले हे भगवान शिव, आपकी जय हो। निरंतर परमानंदमय शांति और सुख के कारण हे प्रभो आपकी जय हो। जयाति परमेश्वरीय, जयाति करुणास्पद, जय सर्व तंत्र सर्वस्व, जया सदृश वैभव। अतिशय उत्कृष्ट ऐश्वर्य से सुशोभित तथा अत्यंत करुणा के आधार आपकी जय हो। प्रभु आपका सब कुछ स्वतंत्र है तथा आपके वैभव की कहीं समता नहीं है। प्रभु आपकी जय हो। जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। जेनेदं भूतं भुवनं भविक्यत् परिगृहीतं मितं सर्वे येन यज्ञसस्तास्ते सप्तहूता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जिस अमृत स्वरूप मन के द्वारा भूत वर्तमान और भविष्यत संबंधी सभी वस्तुओं ग्रहण की जाती है तथा जिसके द्वारा सात होता वाला अनिष्ट होम यज्ञ संपन्न होता है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। यस्मिन् नितसाम जजुरेखि यस्मिन् प्रतिष्ठा स्थान भीराः जस्मिन् चित्तगुं सर्वमुतं यज्ञानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। जिस मन में रत चक्र की नाभि में अकोरों के समान ऋग्वेद और सामवेद प्रतिष्ठित है तथा जिसमें यजुर्वेद प्रतिष्ठित है, जिसके प्रजा का सब पदार्थ से संबंध रखने वाला संपूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है, मेरा वह मन कल्याणकारी भागवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। सुखारतिरस्वा निर्विजाज मुख्या निनीत यंत बिखुभाभिराज इव हत प्रतिष्ठम जदजिरम जीवन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्रेष्ठ सारथी जैसा घोड़े का संचालन और रास के द्वारा घोड़ों का नियंत्रण करता है, वैसे ही जो प्राणियों का संचालन तथा नियंत्रण करने वाला है, जो हृदय में रहता है, जो कभी बूढ़ा

0: नहीं होता और जो अत्यंत वेगवान है, मेरा वह मन कल्याणकारी भागवत संबंधी संकल्प से युक्त हो। इस प्रकार से जो मंत्र और मन संबंधित मंत्रों से एकाग्रित इंद्रियों को बस में कर सकता है और इंद्रियों को बस में करने से संपूर्ण फल को प्राप्त करता है। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगला

पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः श्रीरामदूताय नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज 20 अगस्त 2026 हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सती माता ने बहुत प्रकार से भगवान त्रिपुरारी महादेव से उनकी प्रतिज्ञा के बारे में पूछी, परंतु भगवान शिव ने कुछ ना कहा। इसके पश्चात कथा को आगे बढ़ाते हुए आज दोहा संख्या 57, दोहा नंबर 57 को हम पाठ करते हुए आगे बढ़ाते हैं। सती हृदय अनुमान किया, सबु जाने सर्वज्ञ, कीन्ह कपटु मैं शंभुसन, नारी सहज जर अज्ञ। तुलसीदास जी कहते हैं कि सती माता ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख है और बेबस समझ होती है। जल उपय सरिस विकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस

प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खट्टाई परती ही पानी अलग हो जाते हैं, दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहा है।

0: अपनी करणी को याद करके सती माता के हृदय में इतना सोच है कि इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि भगवान शिव कृपा के परम अताह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा है। चलिए आज इसको यही विराम दे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम अग्निनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। आदरणीय श्रोताओं नमस्ते। श्रावण एवं वेद मास के अवसर पर आयुषा मोरिशस के पुरोहित जीवन महादेव आपका हार्दिक स्वागत करता है। ईश्वर किन मनुष्यों पर कृपा करता है, ईश्वर की कृपा क्या है, उनको धर्मयुक्त मार्ग पर चलाता है, धर्म का ज्ञान देता है। पूर्व में जो अधर्म के मार्ग पर चलते थे, धर्म क्षेत्र ज्ञान आदि पर चल करके अपने अधर्म को छोड़ दिया है। जब ईश्वर की कृपा होती है तब ज्ञान बढ़ जाता है और अधर्म धर्म की पहचान होने लग जाती है। जो व्यक्ति कुटिल आचरण करता है, अर्थात मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, व्यवहार आदि में कुछ और, उन्हीं से उन्हीं की हानि होती है। धर्म इन सारी कुटिल आचरणों को मिटा देता है। जो सत्य भाव से परमेश्वर की उपासना करते हैं उन पर ईश्वर कृपा करता है। यथाशक्ति उसकी आज्ञा का पालन करना, जितना सामर्थ्य है ईश्वर की वाणी वेद अनुसार कर्म करना, यदि ईश्वर की सौ आज्ञाओं को किसी ने जाना तो प्रयास करें कि यथाशक्ति पालन करें। जैसे कि कोई 50% पालन करते हैं, कुछ लोग 75%, कुछ लोग 70%, इसमें कोई आपत्ति नहीं। मनुष्य को जितने सुख लाभ आदि मिले उन सब का मूल परमेश्वर है। जो परमेश्वर में विश्वास करता है उसी को सर्वोपरि मानता है, उसे परमात्मा पाप कर्मों से अलग करता है। परमेश्वर भक्त को ज्ञान देता है और वह अच्छे बुरे की जानकारी पा जाता है। इतिहास

इतिहास में बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि पाप कर्म करने वालों की क्या दशा होती है, और कुछ बुराई करने वाले जब सन्मार्ग पर चलने लगे तब बहुत बड़े संत भी हो गए। एक अद्वितीय ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य की उपासना न करें। यदि किसी की आज्ञा वेदानुकूल है तो वह ईश्वर आज्ञा है। जो सच्चे दिल से ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर उसे विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान देता है। उस समस्त कुटिल के व्यवहार, छल कपट आदि सब दूर हो जाते हैं। अग्नि नय का अर्थ है स्वप्रकाश स्वरूप, करुणामय, दिव्य स्वरूप, चमकने वाले, उत्तम, श्रेष्ठ, ऐसे परमेश्वर को संबोधित करते हुए उसे उपासक कह रहे हैं, जिससे हम लोग आपके लिए अधिकतर सत्कार पूर्व प्रशंसा का विभिन्न सेवन करें। इससे विद्वान सबको जाने वाले आप हम लोगों से जुहुराणम अर्थात कुटिलता रूप से पृथक करें। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: तुम्हारा।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
2: ॐ त्वं च सोम नु वशो जीवातु न मरामहे प्रियस्तोत्रो वनस्पतिः। ओम शांति शांति शांति। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेद मास की शुभकामना आप सभी श्रोताओं को है। मैं पंडिता राजवंती पियती। उक्त मंत्र में वेद माता अवश्य निर्देश देती है। इस मंत्र का अर्थ होता है कि हे श्रेष्ठ, कर्मों की प्रेरणा देने वाले परमेश्वर, आप हम लोगों के जीवन को वश में रखने वाले, स्थिर रखने वाले और प्रकाशित करने वाले हो। आप प्रिय स्तोत्र हैं। आपके स्तुति वचन सुनकर हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। आप सेवनीय पदार्थों के रक्षक हैं, इसलिए आपकी कृपा से हम अकाल मृत्यु और अनायास मृत्यु न पाए। श्रोतागण, इस मंत्र का भावार्थ यह होता है कि परमात्मा मनुष्यों के जीवन को वश में रखने वाला और प्रकाशित करने वाला है। फिर परमेश्वर प्रिय स्तोत्र है क्योंकि उसके स्तुति वचन सुनकर हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। पुनः परमेश्वर हम अपनी महान शक्ति से मनुष्यों द्वारा सेवनीय पदार्थों की रक्षा करता है। फिर प्रभु की कृपा से हम अकाल मृत्यु के वश में न जावें। न मरामे का अर्थ होता है करते हुए हमने महर्षि दयानंद के जो शब्दों को ही रख दिया है। इस मंत्र और इसके महर्षि भाष्य से यह सिद्ध होता है कि स्वामी जी अकाल मृत्यु को मानते थे। तो परमात्मा की कृपा से हम अकाल मृत्यु से बच पाते हैं। परमात्मा पर ध्यान देते हुए हम अपना जीवन वर्तते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: अथ वेद मंत्राः ओम। येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पनते सदा तेन सहस्त्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः।
2: जिस ईश्वरीय सत्य ज्ञान से सभी देवता, विद्वान, विदुषी पवित्र होते हैं, ऐसे वेद ज्ञान के सरोवर में नित्य स्नान करना एक पवित्र कर्म है। उत्तम ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म और ईश्वर की भक्ति से ही तन, मन, बुद्धि और आत्मा में पवित्रता का संचार होता है। अतः हर संभव उपाय से सत्य ज्ञान को ग्रहण करते हुए अपने कर्म व व्यवहार को उत्तम एवं पाप रहित बनाते चले और भगवान की भक्ति को कभी न भूलें। निष्काम ज्ञानी जिस पवित्र वेद ज्ञान के द्वारा अपने आप को पवित्र करते हैं, उस सहस्र आनंद धाराओं वाले अमृत रूपी ज्ञान अर्थात वेद की पवित्र ऋचाएँ हमें पवित्र करें।
1: ओम उभाभ्याम देव सवितः पवित्रेण सवेन च माम पुनीह विश्वतः।
2: परमात्मा दिव्य गुणों का सागर हैं, वही सब जीवों को सत्कर्मों में प्रेरित करता है। मानव ईश्वर का पवित्र ज्ञान प्राप्त कर यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होता है और अपने मन, बुद्धि और

0: आत्मा को पवित्र बनाने में सफल होता है। सविता देव परमात्मा हमें अंदर बाहर से पवित्र करें, ज्ञान विज्ञान कर्म उपासना आदि के माध्यम से हम अपने आप को पवित्र बनावें, हमारे शरीर मन बुद्धि और विचार स्वस्थ शुद्ध और सबल हो, हमारे बाह्यकरण अर्थात सभी इंद्रियां एवं अंतःकरण नित्य पवित्र बने और इस प्रकार से पवित्र बने जिससे कि हम उत्तम कर्म करते हुए अपने जीवन को पवित्र बना सकें। हे परमात्मा, मुझे भी इस संसार में पवित्र बनाइए।
1: ओम समुद्र ईशे स्रवताम अग्नि पृथिव्यावसे चंद्रमा नक्षत्राणाम ईशे त्वमेक वृषो भव।
0: बहती हुई नदियों का स्वामी समुद्र है। समुद्र से ही नदियां उत्पन्न होती हैं और नदियों का अधिकांश जल समुद्र में विलीन हो जाता है, अर्थात सूर्य की तेज किरणों से समुद्र का जल वाष्प बनकर आकाश में मेघ का रूप धारण कर लेता है, पश्चात मेघ वर्षा का रूप धारण कर जलाशय व नदियों में परिवर्तित हो जाता है। जब ही जल धरती को प्राप्त होता है तो उससे संसार का कल्याण होता है, बहता हुआ जल पुनः समुद्र को प्राप्त हो जाता है, पृथ्वी उस समुद्र को अपनी व्यवस्था में रखती है, परंतु पृथ्वी को अपने वश में कौन रखता है। अग्नि ही पृथ्वी को ऊर्जा और स्थिरता प्रदान कर अपने वश में रखती है। चंद्रमा नक्षत्रों का स्वामी है, वह चांदनी से सबको प्रसन्न रखता है। इसी प्रकार सत्य ज्ञान को अर्जित कर हमें समुद्र पृथ्वी और चंद्रमा की भांति अग्रणी देवतुल्य परोपकारी बनना चाहिए। हम सब मानव का कर्तव्य है कि जल अग्नि पृथ्वी चंद्रमा की भांति परोपकारी बने।
1: इति वेद मंत्राः ओम शांति।
2: सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आपसे करुणा। नमस्कार।
3: नमस्कार नीतू शाह, सभी को नमस्कार। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच के लिए जिम्मेदार आयोग आईपीसीसी से जुड़ने वाले दो नए सदस्यों ने इस आयोग से संबंधित कानून में संशोधन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के बीच आज मुलाकात, जिसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार साझेदारी के तहत बहुप्रतीक्षित एमओयू का आदान प्रदान किया जाएगा। मॉरिशस और जिम्बाब्वे के बीच व्यापार सहयोग को मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। दोनों देशों के बीच निवेश के अवसरों को बेहतर तरीके से तलाशने और उनका विस्तार करने के मुद्दे पर एक बिजनेस फोरम लगाया गया। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार एम्सो में नए पशु चिकित्सकों की भर्ती की तैयारी चल रही है। इस संबंध में वेटरिनरी काउंसिल और मॉरिशस के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व कड़ी आर्थिक कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाने के बाद ट्रंप ने ये चेतावनी दी कि जो भी देश ईरान को आर्थिक मदद या राहत देने की कोशिश करेगा उसे भी कड़े आर्थिक दंड का सामना करना पड़ेगा। और अब मौसम की रिपोर्ट। मस्करिन्स के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त मौसम सुहाना रहेगा, दोपहर में भी धूप खिली रहेगी, केवल पश्चिम में कुछ घरी के लिए बादल घिराएंगे। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा।

चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा, लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त होगा 5:58 पर। तो पूरा समाचार बुलेटिन 6:30 बजे, तब तक के लिए अनुमति दें, नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: चलिए श्रोताओ, ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है इस समय। तो चलिए सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। बस गुरुवार का दिन है आज, और आज है 20 अगस्त 2026 में हम कदम रख चुके हैं। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस हिंदुस्तानी सभा को शुरू करने से पहले आइए सेंट्रल एक्सप्रेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। रोनियों मोरेल त्रोआ ब्रा पेटी राफे के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 20 अगस्त 2026 को दिन के 11:30 बजे से लेकर दिन के 1:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्सप्रेस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है, और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओ, अभी आप सेंट्रल एक्सप्रेस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस हिंदुस्तानी सभा को हम शुरू करने जा रहे हैं। जी हाँ श्रोताओ, आइए एक विशेष कार्यक्रम सुनते हैं मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से दिव्य दृष्टि कार्यक्रम।
2: कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।
3: ओम योन्तः प्रविशममवाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। दिव्य दृष्टि के समस्त श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का प्रसंग है, महात्मा लोग कहते हैं कि जो सुखी है वही दूसरे को सुखी बना सकता है। परमात्मा के संपर्क में ही श्रोताओं जीव वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसी में सुख की पराकाष्ठा है। जिसके पास जो कुछ होता है श्रोताओं, वही वो दूसरे को दे सकता है। किसी कंगाल से कोई धन की याचना करे तो ये मूर्खता ही तो है ना। जिस प्रकार धन की राशि से ही धन प्राप्त किया जा सकता है, विद्यानिधि अर्थात विद्वान से विद्या की प्राप्ति की जा सकती है, उसी प्रकार सुख की राशि भगवान है और भगवान से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। संसार में भगवान के कृपा पात्र भक्तों को छोड़कर के कोई भी सुखी नहीं है। आध्यात्मनिष्ठ परमात्मा के भक्त ही यहाँ सुख का अनुभव करते हैं, अन्यथा सभी को कुछ न कुछ दुख घेरे ही रहता है। संसार में कोई सुखी नहीं देखा जाता। जिसके पास जो वस्तु नहीं होती वो दूसरे को उसके द्वारा सुखी मानता है, किंतु जिसके पास वो है उसको देखा जाए तो उससे वो अपने को सुखी नहीं मानता। अरे, जिसके पुत्र नहीं हैं वो सोचता है कि जिनके बहुत पुत्र हैं वो बहुत सुखी हैं, पर पुत्र से कितना सुख मिलता है ये तो भाई जिनके पुत्र हैं उन्हीं से पूछो, है ना। मालूम होता है वास्तव में किसी भी लौकिक पदार्थ में सुख नहीं है। सुख स्वरूप तो सच्चिदानंद रूप परमात्मा ही है, और उसी के संपर्क में आने से जीव भी सुखी हो सकता है, और सुखी होने का दूसरा मार्ग है ही नहीं श्रोताओं। परमात्मा ही ऐसा जनरल मर्चेंट है जिसके यहाँ सुख को किसी जिनके यहाँ सुख की किसी भी

0: सामग्री का अभाव नहीं है, परंतु उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए विधिवत प्रयत्न करना पड़ेगा। श्रोताओं, केवल परमात्मा का महात्म्य पाठ करने से, खाली उसका नाम जप करने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। खाली बीजक का पाठ करते रहोगे क्या धनी हो सकते हो? अरे, संसारियों से सुख प्राप्ति की इच्छा करना महाभूल है श्रोताओं। भला जो स्वयं दुखी है वो दूसरे को सुखी क्या बनाएगा? संसार में जो सुख दिखता है श्रोताओं, वो सब सापेक्ष सुख है। किसी से कोई किसी अंश में सुखी है तो कोई अन्य किसी दूसरे अंश में सुखी है। किसी से सुख की याचना करनी है तो ऐसी जगह याचक बनो श्रोताओं, जहाँ से सब सुख प्राप्त हो सके। स्मरण रखो श्रोताओं कि जो परमात्मा की तरफ झुका है वही संसार में सुख शांति प्राप्त कर सका है, दूसरा नहीं। संसार में सुख ढूंढना तो ऐसा है जैसे प्यास बुझाने के लिए ओस की बूंदों का संग्रह करना। भगवान कपिल मुनि से माँ देवहूति ने पूछा कि हे भगवान, ये संसार में सुख कहाँ है? तब भगवान ने माँ देवहूति से कहा, हे माँ, इस संसार में सुख की व्यवस्था नहीं है। तो माँ ने कहा कि जो हमको दिखाई दे रहा है, कि हमको दिख रहा है कि ये व्यक्ति और सुखी है, इसके पास तो और सब सुख है। तो भगवान ने कहा, माँ, संसार में सुख की व्यवस्था नहीं है। ये संसार का जो सुख है, ये तो जब तक साधन उसके पास है, ये साधनों से मिलने वाला सुख जो है वो और संपूर्ण सुख नहीं हो सकता है। साधनों से मिलने वाला सुख तो तभी तक प्राप्त होता है जब तक साधन उपलब्ध हैं। जिस दिन साधन समाप्त, उस दिन सुख समाप्त। तो इसलिए संसार में सुख की व्यवस्था नहीं है। सुख के अधिष्ठाता तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। इसलिए सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो परमात्मा का शरण ग्रहण करो। महात्मा लोग कहते हैं श्रोताओं कि भाई, संसार में आए हो तो ऐसी चातुरी से काम लो कि फिर लौट करके और दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में न फंसें। भगवान की ही कृपा से और ये सारी की सारी जो है पल्लेदारी छूट सकती है श्रोताओं। जीवन जाने कितने जन्मों से और ये धोता आ रहा है, पल्लेदारी करते चला आ रहा है। कभी हाथी का 50 मन का शरीर, तो कभी चींटी का आधा रत्ती का शरीर, कभी मनुष्य का शरीर, कभी किसी दूसरे जानवर का शरीर। अरे, ये सब ढोना तो पड़ रहा है ना। ये सब पल्लेदारी भगवान की कृपा से ही छूट सकती है श्रोताओं। ऐसा करो कि इसी जीवन में भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए और मलमूत्र के शरीर में फिर ना आना पड़े। यह तभी हो सकता है श्रोताओं जब भगवान की आज्ञाओं का पालन करोगे। वेद शास्त्र के आदेश ही तो श्रोताओं भगवान की आज्ञा हैं। अरे, जिस वर्ण में हो, जहां हो, जिस आश्रम में हो, जिस हालत में हो, भाई उसी के अनुसार अपने धर्म का पालन करो और हर समय भगवान का स्मरण करते रहो। प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल नियम पूर्वक उपासना करो, संध्या वंदन करो। अपनी व्यावहारिक व्यवस्था ऐसी रखो श्रोताओं कि जहां तक हो सके अपने से दूसरों की भलाई ही हो, और यदि किसी की भलाई न हो सके तो कम से कम बुराई न होने पाए। भगवान को सर्वत्र उपस्थित देखना बहुत आवश्यक है। सर्वत्र भगवान को उपस्थित देखोगे तो कोई पाप नहीं होगा। पहले जो पाप हो गया वो तो नष्ट हो जाएगा, पर जब से भगवान के नाम को अपनाओ तब से पाप से बचो, नहीं तो उन पापों का छुटकारा बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिनाई होगी। क्योंकि पहले के किए हुए पाप तो गंगा स्नान से नष्ट हो जाते हैं, परंतु गंगा में तीर्थ में जो पाप करता है वो वज्र लेपो भविष्यति, कहा है ना कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। अर्थात वो पत्थर की लकीर के समान हो जाता है जो छुटाया ही नहीं छूटता। इसलिए भगवान का स्मरण करते समय पाप करने से डरो, सर्वस्वधर्म पालन पूर्वक और भगवान की साधना करो, भजन करोगे श्रोताओं, तो पिछले जन्म जन्मांतरों के पापों से और आपको मुक्ति मिलेगी, पाप कटेंगे और सुख शांति का अनुभव करोगे और अंत में सदगति को प्राप्त होगे। श्रोताओं, महात्मा लोग कहते हैं ना कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है परंतु फल भोगने में परतंत्र है। इसीलिए ऐसे ही कर्म करो जिसका फल बहुत अच्छा हो, उत्तम फल हो। अरे चोरी करने में स्वतंत्र हो परंतु फल तो श्रोताओं न्यायालय के अधीन है। जितनी सजा दी जाएगी उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे इच्छा हो या न हो। मनुष्य भी जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकता है श्रोताओं। पुण्य कर्मों को करके स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के दिव्य भोगों को भोग सकता है, या पाप कर्म करके रौरव आदि महान भयंकर नरक और जो दुखदायी नरक हैं उन नरकों को प्राप्त हो सकता है। ताओ मनुष्य योनि कर्म योनि मानी गई है। जहां मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है अर्थात वो जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकता है, मनुष्य चाहे तो साक्षात सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा से मिल सकता है। मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। अरे कोई कर्म मनुष्य कर ले और चाहे कि उसका फल न भोगना पड़े श्रोताओं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ ये अवश्य हो सकता है कि धर्मेण पाप मुपनुदति, कि धर्म करने से पाप नष्ट होता है। तो यदि किसी से कभी जाने अनजाने और जीवन में कभी कोई पाप हो गया हो श्रोताओं, तो उसे चाहिए कि उसको नष्ट करने के लिए पुण्य कर्म करें। पुण्य बढ़ जाएगा तो पाप दब जाएगा। इसीलिए कहा गया है ना कि जपतो नास्ति पातकम्, कि भगवान के मंत्र का जप करने से पाप नष्ट होता है। इसीलिए यदि किसी के द्वारा अभी तक कोई ऐसा पाप कर्म हो गया हो, ऐसा बुरा कर्म अगर हो गया हो, ज़्यादा हो गया हो, तो उन सब पापों से छुटकारा पाना यदि वो चाहता है तो अभी से वो मनुष्य शुभ कर्म करने पर लग जाए, श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने और योग्य उपयुक्त भगवान के नाम मंत्र का जप करने लग जाए। ऐसा करने से धीरे धीरे पिछले किए हुए पाप और नष्ट होते जाएंगे और कुछ समय में वो गड्ढा जो जिस गड्ढे में इतना सारा पाप आपने भर रखा है ना, वो गड्ढा पूरा हो करके फिर उसमें शुभ फल जो आप शुभ कर्म कर रहे हैं वो शुभ फल जो है उसमें संचित होने लगेगा और उसी के सहारे आपको सदगति प्राप्त हो जाएगी। श्रोताओं, अनिच्छा से भी यदि भगवान का स्मरण किया जाए तो उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और रामचरितमानस में कहते हैं ना कि भाई यदि गलती से भी और आप भगवान का नाम का जप करते हैं तो भगवान का नाम का जप करने से चारों दिशाओं में मंगल की ही प्राप्ति होती है, है ना। वो चाहे इच्छा से हो या अनिच्छा से, जानबूझ करके हो अनजाने से हो, किसी भी प्रकार से। बाबा जी कहते हैं कि भाई कुभाई अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। क्योंकि भगवान का नाम का जप किया है, भगवान के नाम का जप का फल जो है वो तो मंगल ही होता है, दसों दिशाओं में मंगल होता है। क्योंकि भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजर बिहारी। भगवान का नाम तो मंगल का भवन है, अमंगल का नाश करने वाला है, इसलिए उसी के सहारे सदगति हो सकती है। उसीलिए भगवान का स्मरण करते रहो। जैसे बिना इच्छा के भी यदि कोई अग्नि आपको छू जाती है तो जला करके भस्म कर देती है, इसीलिए बिना इच्छा से भी भगवान का नाम जप करोगे तो वो आपका कल्याण करेगा। आज यहीं पर समय समाप्त हुआ चला जा रहा है, इस प्रसंग को लेके पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: कॉन्शियस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, 6:18 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। लातू कोइंग के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है अवेन्यू लातू कोइंग, ऑन्टारियम, एंड्रियानम, क्रोटन, एबिस्कुस, मार्गरेट, जास्मिन, अनेमोम, फियोक्स, म्यूगे, जास्मिन, जिन्या, म्यूसोटिस, पेचुनिया, क्रोटन, इबिस्कुस, बुगेनविले, केनेट नेल्सन, टेरासों और जेरानियम के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 20 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस हैं।

चलिए श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक भावगीत। तो चलिए इस हिंदुस्तानी सभा को आगे बढ़ाएंगे। आर्य सभा मॉरिशस की तरफ से आइए आचार्य केडूजी से सुनेंगे अगला प्रोग्राम श्रावण मास के संदर्भ में।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: प्रिय श्रोताओं, सादर सप्रेम नमस्ते। श्रावण मास के इस पावन पर्व के उपलक्ष में श्रवण कीजिए ऋग्वेद का यह मंत्र। ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परीशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वयन्नशन्नन्यो अभिचाकशीति। ओम शां

श्रोत्राओं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने वैदिक दर्शन के सुप्रसिद्ध त्रैद्वाद सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत मंत्र की व्याख्या की है। इस मंत्र के माध्यम से उन्होंने सिद्ध किया है कि ईश्वर, जीव अर्थात आत्मा और प्रकृति यह संसार तीनों अनादि और पृथक सत्ताएं हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार पदार्थन्वयी और अर्थ ऋग्वेद भाष्य भूमिका के आधार पर उन्होंने इस मंत्र के प्रत्येक शब्द का यौगिक और आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार किया है। द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पंखों वाले पक्षी, चेतन सत्ताएं अर्थात जीवात्मा और परमात्मा, शयुजा, जो सदा एक साथ जुड़े या व्याप्त संबंध से रहते हैं, सखाया, जो परस्पर मित्रों के समान स्वभाव वाले हैं, दोनों चेतन हैं, समानम वृक्षम परि शस्व जाते, एक ही समान वृक्ष कार्यकारम रूप ब्रह्मांड या शरीर का आश्रय लिए हुए हैं, तयोह अन्यह, उन दोनों में से एक जीवात्मा, पिप्पलम स्वादु अति, इस संसार रूपी वृक्ष के कर्म फलों सुख दुख को स्वाद ले ले कर भोगता है, अन्यह अन्न शनन्ह, दूसरा परमात्मा उस कर्म फलों को न भोगता हुआ अभी चाकशीती है, सब ओर से केवल देखता है, साक्षी रूप में न्याय करता है। श्रोताओं, उन्होंने अपने प्रमुख ग्रंथ सत्यार प्रकाश और ऋग्वेद भाष्य भूमिका में इस मंत्र का प्रमाण देकर अद्वैतवाद, जीव ब्रह्म की एकता का पूर्ण खंडन किया है। उनके ग्रंथों के आधार पर विशेष संदर्भ निम्नलिखित हैं। सर्वप्रथम चलें हम देखें सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर सप्तम समूलास में महर्षि जी ने क्या कहा है। सत्यार्थ प्रकाश के सातवें समूलास ईश्वर और वेद विषय में महर्षि दयानंद ने इस मंत्र को त्रैद्वाद अर्थात तीन अनादि सत्ताओं को सिद्ध करने का मुख्य आधार बनाया है। उन्होंने यहाँ अद्वैतवादियों, नव वेदांतियों के साथ संवाद के रूप में इसे प्रस्तुत किया है। प्रथम तो जीव और ईश्वर की भिन्नता। महर्षि लिखते हैं कि यदि जीव और ब्रह्म एक ही होते तो मंत्र में द्वा, दो और सखाया अर्थात कि दो मित्र शब्दों का प्रयोग कभी नहीं होता। मित्र हमेशा दो भिन्न व्यक्तियों में ही हो सकती है, एक अकेले में नहीं। दूसरी बात, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ का भेद। जीवात्मा शरीर रूप वृक्ष पर बैठकर कर्मों के फल सुख दुख को चखता है, क्योंकि वह अल्पज्ञ सीमित जान वाला है। इसके विपरीत परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण बिना कर्म फल भोगे केवल साक्षी रूप में प्रकाशित रहता है। तीसरी बात, मुक्ति में भी पृथकता। दयानंद जी स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति मोक्ष की अवस्था में भी जीव ईश्वर में विलीन नष्ट नहीं होता, बल्कि ईश्वर के आनंद को भोगता है। यहाँ भी दोनों की सत्ता अलग रहती है। अब चलें देखते हैं कि ऋग्वेद भाष्य भूमिका के आधार पर महर्षि जी क्या लिखते हैं। सृष्टि विद्या विषय ऋग्वेद भाष्य भूमिका की रचना विशेष में महर्षि दयानंद ने इस मंत्र के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति और जीव ईश्वर के संबंध को वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझाया है। प्रथम तो व्याप्त व्यापक संबंध, परमात्मा व्यापक सब में समाया हुआ है और जीवात्मा व्याप्त जिसके भीतर

0: ईश्वर समाया है। जैसे लोहे के गोले में अग्नि प्रवेश कर जाती है, वैसे ही जीव के भीतर ईश्वर सदा विद्यमान रहता है। इसी संबंध में मंत्र में सयुजा, सदा साथ रहने वाले कहा गया है। प्रकृति की जड़ता समानम वृक्षम के द्वारा उन्होंने कार्य कारण रूप प्रकृति को जड़ नॉन लिविंग सिद्ध किया है। यह शरीर और ब्रह्मांड जीव के रहने और कर्म करने का स्थान है जिसे ईश्वर ने बनाया है। तीसरी बात, ईश्वर का न्यायकारी स्वरूप मंत्र का पद अभी चाक शीति यह दिखाता है कि ईश्वर पक्षपात रहित न्यायाधीश है। वह जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन उसके अच्छे बुरे कर्मों पर पूरी दृष्टि रखता है और उसी के अनुसार फल देता है। तो महर्षिदानंद के तर्कों का सारांश यह है कि महर्षिदानंद सरस्वती के अनुसार इस मंत्र का एकमात्र वास्तविक संदेश यही है, ईश्वर अनादि सर्वज्ञ और भोक्ता रहित दुख सुख से परे है। जीव अनादि अल्पज्ञ और कर्मों का भोक्ता सुख दुख पाने वाला है। प्रकृति अनादि और जड़ है जो इन दोनों के संबंध का माध्यम बनती है। श्रोताओ, महर्षिदानंद सरस्वती के अनुसार व्यापक व्याप्त संबंध से परमात्मा और जीवात्मा सदा साथ रहते हैं। जीव अपने अविद्या और कर्मों के कारण संसार के चक्र में फंसकर पाप पुण्य के फल भोगता है, जबकि ईश्वर कर्मों से निर्लिप रहकर जीव के कर्मों का साक्षी रहता है और उसे न्यायपूर्वक फल देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता और न ही ईश्वर कभी जीव की तरह बंधन में पड़ सकता है। श्रोताओं, आप लोगों ने मुझको ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। कर पावन वेद प्रकाश दूर करता
1: रहे। 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: 6:30 बजे ही पेश है समाचार बुलेटिन। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के बीच आज मुलाकात, जिसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार साझेदारी के तहत बहुप्रतीक्षित एमओयू का आदान प्रदान। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जाँच के लिए जिम्मेदार आयोग IPCC से जुड़े दो नए सदस्यों ने इस आयोग से संबंधित कानून में संशोधन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉरिशस और जिम्बाब्वे के बीच व्यापार सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी। दोनों देशों के बीच निवेश के अवसरों को बेहतर तरीके से तलाशने और उनका विस्तार करने के मुद्दे पर एक बिजनेस फोरम लगाया गया। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार एम्सो में नए पशु चिकित्सकों की भर्ती की तैयारी चल रही है। इस संबंध में वेटरिनरी काउंसिल और मॉरिशस के साथ विचार विमर्श किया जा रहा। और विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की। दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाने के बाद ये फैसला लिया गया। और अब समाचार विस्तार से। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से आज मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार साझेदारी के तहत बहुप्रतीक्षित एमओयू का आदान प्रदान किया जाएगा। इसके बाद प्रेस को संबोधित कर बयान भी जारी किया जाएगा। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन IPCC के अध्यक्ष पद पर सतीश फुगू की नियुक्ति के बाद आयोग में न्याय क्षेत्र के 2 नए पेशेवर शामिल हुए हैं। रेणुका ब्रिजमोहन और मामाद उजिया ने कल दोपहर बाद स्टेट हाउस में राष्ट्रपति धर्म गोकुल के समक्ष पद की शपथ ली। उन्होंने इस आयोग से संबंधित कानून में संशोधन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। आईपीसीसी का मुख्य दायित्व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायत

0: पद की शपथ ली। इनमें रेणुका ब्रिजमोहन और मोहम्मद उजिया शामिल हैं। नए सदस्यों का कहना है कि आयोग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और आयोग से जुड़े कानून को अपडेट करने की जरूरत है, ताकि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उनके काम के दौरान की गई शिकायतों के बढ़ते मामलों से निपटा जा सके। सबसे बड़ा प्रश्न है कि कर्मचारियों की कमी है, जांच के लिए ज्यादा लोग होने चाहिए, कानून को अपडेट करना चाहिए ताकि आयोग आगे बढ़ सके और जनता को नतीजे प्राप्त हों। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ करीब 3000 शिकायतें अभी समाधान के इंतजार में हैं। आईपीसीसी के अध्यक्ष के अनुसार अब काम की शुरुआत आयोग के आंतरिक नियमों और पुलिस की कार्यप्रणाली से जुड़ी प्रक्रियाओं में संभावित बदलाव के साथ की जा सकती है। आईपीसीसी के अध्यक्ष सत्यव्यास फुगु कहते हैं, पुलिस ताकत में कई चीजों का समाधान करना है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, व्यवहार, अनुशासन को लेकर। अगर पुलिस के स्तर पर ही समस्या का समाधान किया गया तो ये आईपीसीसी तक नहीं पहुंचेगी। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों में 5% से भी कम मामले आखिरकार सजा तक पहुंचते हैं। कई बार शिकायतों को मामूली माना जाता है या फिर पुलिस की कार्रवाई को नियमों के अनुरूप पाया जाता है।
1: मॉरिशस और जिम्बाब्वे के बीच व्यापार सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी हैं। दोनों देशों के बीच निवेश के अवसरों को बेहतर तरीके से तलाशने और उनका विस्तार करने के मुद्दे पर कुडा आउट सेंटर में एक बिजनेस फोरम लगाया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। एजेंडे में ठोस व्यापार पहलों और कारोबारी अवसरों पर विचार विमर्श किया गया। उद्देश्य एक विविध और मजबूत इलाकाई व्यापार प्रवाह का निर्माण करना है। मॉरिशस और जिम्बाब्वे के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बीच एक MOU पर भी हस्ताक्षर किया गया। विस्तार रिया रामबोजन की इस रिपोर्ट में।
2: ये कारोबारी फोरम डर्बान में हाल ही में संपन्न हुए सैडेक शिखर सम्मेलन की निरंतरता के रूप में आयोजित किया गया। जिम्बाब्वे के 30 से अधिक प्रतिनिधि मॉरिशस बाजार की संभावनाओं का जायजा लेने के लिए यहाँ एकत्र हुए। 2025 में जिम्बाब्वे की ओर मॉरिशस माल निर्यात लगभग 4,54,000 अमेरिकी डॉलर का था। वहीं ऐसे में दोनों देशों के व्यापार सदनों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के साथ इस साझेदारी के विस्तृत होने की उम्मीद है।
3: मॉरिशस aujourd'hui il représente presque 17% des investissements à travers nos AFC qui rentrent dans Zimbabwe. Donc l'écosystème d'intervention est déjà là et nous carbonifier, nous carbonifier dans le domaine agricole, nous carbonifier dans le domaine des technologies. Ce MOU, l'IPVIN formalise mais aussi l'IPVIN donne un boost à certains segments d'opportunité entre Mauritius et Zimbabwe.
2: एक और जिम्बाब्वे है दक्षिणी अफ्रीका का एक ऐसा देश जो खनिज संसाधनों से समृद्ध है और जहां कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्र भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। दूसरी ओर मॉरिशस, जिसके पास 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र और डबल टैक्सेशन से बचाव के समझौतों का व्यापक नेटवर्क है और चिकित्सा उपकरणों के निर्यात जैसे नए सहयोग के अवसर सामने आ रहे हैं।
4: Today's forum comes at a time when Africa is being called upon to redefine its economic future. That is why this mission is important. We are gathered here because we believe that meaningful economic partnerships are built through engagement, dialogue and action.
2: सहयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है, खासकर बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के चलते।
5: Zimbabwe has significant agricultural potential. Mauritius has experience in financial services, agro-processing, investment and market access. This is therefore considerable scope for cooperation in irrigation, climate smart agriculture, agricultural technologies, storage, logistics, processing, packaging and distribution.
2: मॉरिशस अफ्रीका एशिया और यूरोप के बीच एक सेतु की भूमिका निभाता है, इसलिए सहयोग की संभावनाएं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी विस्तारित हो सकती हैं।

0: Par exemple, businessman de Zimbabwe, donc Arvin Morris, restructure cette finance, faire une partie de manufacturing et aussi, par exemple, de four de coton aussi, par exemple. Comment Maurice a une expertise liée dans le textile, comment nous sommes complémentaires et comment nous sommes capables après d'exporter ce coton qui pour fabriquer Maurice, qui sortit de Zimbabwe, par exemple, allant en Inde aussi.
1: Zimbabwe का प्रतिनिधि मंडल मॉरिशस के विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का भी दौरा करेगा। इसके अलावा बंदरगाह और एबेन की यात्रा भी निर्धारित है। गुलशन गोविंद को कल बाओबो अदालत में पेश किया गया कैनाबिस की खेती और मिथाडोन रखने के आरोपों के संबंध में उनकी जमानत पर रिहाई की अर्जी पर बहस की गई। पुलिस ने संदिग्ध की जमानत की मांग का विरोध किया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार 24 अगस्त तक होगी। विस्तार लवीना सूफी और अशिता रघु के साथ।
2: मामले की सुनवाई मैजिस्ट्रेट बीबी फातिमा शर्फा पोगोबाली के समक्ष हुई। आजसू के जांच अधिकारी ने आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने का विरोध किया। उन्होंने तीन जोखिमों का हवाला दिया, फरार होने का जोखिम, दोबारा अपराध करने का जोखिम और गवाहों को प्रभावित करने का जोखिम। अधिकारी के अनुसार पुलिस के पास ऐसे सबूत हैं जिनसे गुलशन गोविंद की कथित संलिप्तता का पता चलता है। आरोप है कि वह रेनियन टापू से करीब 155 किलो गांजा आयात करने की साजिश में शामिल था। इस गांजे की अनुमानित कीमत 234 मिलियन रुपए बताई गई है। हालांकि जांच अधिकारी ने कहा कि फिलहाल वह इन सबूतों का विवरण सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। जांच अधिकारी ने यह भी बताया कि पूछताछ के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर गुलशन गोविंद ने चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। आरोपी ने कथित तौर पर अपनी नशे की लत के इलाज के लिए मेथाडोन लेने की बात स्वीकार की है। उसने अपने घर की छत पर गांजे के पौधे रखने की बात भी मानी है। हालांकि उसका कहना है कि ये पौधे केवल निजी इस्तेमाल के लिए थे और उसने इन्हें बेचने की किसी भी मंशा से इनकार किया है। वहीं उसके वकील रूबेन मोहंगापिले ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी इस मामले को मॉरिशस और रेनियन के बीच गांजे के आयात से जुड़ी जाँच के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
1: और पुलिस के आईटी यूनिट ने सांसद वेरोनिक लेगोविन के मोबाइल फोन की कल जांच की। ये कार्रवाई 155 किलो गांजा आयात मामले के तहत की गई। ये प्रक्रिया करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान सांसद और उनके वकील मौजूद रहे। इससे पहले वेरोनिक लेगोविन से पिछले सप्ताह रोजिल के आजसू ने भी पूछताछ की थी। उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। फिलहाल इस मामले में 3 संदिग्ध पुलिस हिरासत में हैं, गुलशन गोविंद, रविंद्र चिमाजी और डैनियल जोजी ओगुस्त। वही चौथे संदिग्ध मिथुन चुलन की पुलिस तलाश कर रही है। वो पहले से ही पुलिस के रिकॉर्ड में हैं। अतीत में उसे एफसीसी की इकोडिया मामले से जुड़ी जाँच के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उस समय जांचकर्ताओं को संदेह था कि उसने जॉन यूबिया सेल्गिन उर्फ फोंकले के लिए बेनामी व्यक्ति के रूप में काम किया था। फोंकले फिलहाल रेनियन में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े एक मामले में हिरासत में हैं। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार एम्सो में नए पशु चिकित्सकों की भर्ती की तैयारी चल रही है। इस संबंध में वेटरिनरी काउंसिल और मॉरिशस के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार सार्क देशों और मडागास्कर से योग्य पशु चिकित्सकों की भर्ती की संभावना पर भी गौर कर रही है। हालांकि इसके लिए उनकी योग्यता की मान्यता और पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने एक वेटरिनरी स्कूल, एक बड़ा एनिमल शेल्टर और एक वेटरिनरी हॉस्पिटल स्थापित करने की योजना का भी उल्लेख किया है। ये परियोजना भारत की ओर से मिलने वाली लगभग 2 बिलियन रुपए की सहायता के तहत आती है। मंत्री और अरविंद बुलेल को सुनते हैं जिनसे बात की शैली निर्वन ने, विवरण अशिता रघु का।

0: हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहती हैं और उनकी मांगों की पूर्ति हेतु वह जानवरों के वेलफेयर यानी हित को बढ़ावा देना चाहते हैं। वेटरनरी सेवा के स्तर पर हमने वेटरनरी काउंसिल से मांग की है कि वे क्वालिफाइड पशु चिकित्सकों की भर्ती करें। जैसे कि हम सादिक का एक सदस्य देश हैं, तो हम अन्य सदस्य देशों जिनमें मैडागास्कर शामिल है वहाँ के क्वालिफाइड पशु चिकित्सकों को मानते हैं और ला सकते हैं। सभी के पास संसाधन नहीं है कि इस क्षेत्र में पढ़ाई करें, इसलिए हमारे पास उन मान्यता प्राप्त वेटरनरी स्कूलों की सूची भी है।
1: आज 20 अगस्त को लाटोकेनिक स्थित नेल्सन मांडेला सेंटर में द फॉरगॉटन सेंट्स नामक प्रदर्शनी शुरू हो रही है। इसे सेशल्स के कलाकार इमानुएल डोफे ने प्रस्तुत किया है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस के अवसर पर मंगलवार को एक राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया था। केंद्र के निदेशक स्टेफान काउगू के अनुसार दास प्रथा मॉरिशस की आबादी के गठन और उसकी पहचान के इतिहास का हिस्सा है। उनको सुनते हैं, विवरण अशिता रघु का।
0: आज हमें ये ज्ञात है कि एक गुलाम भी एक इंसान है, उसका अस्तित्व है, जहां उसकी एक जिंदगी थी, रिश्ते नाते थे, बच्चे थे, महिलाओं व बच्चों की भूमिका क्या थी, उनका रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। ये सभी प्रश्न हमें ये सोचने पर विवश करते हैं कि गुलामी को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, यानी हमेशा की तरह हाथों व पैरों में जंजीरें होने के बजाय हमें उन्हें आज़ादी, किस्मत व स्वाभिमान का एक कारक और कारण के रूप में देखना चाहिए।
1: विदेशी स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाने के बाद ये फैसला लिया गया। ट्रंप ने ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी देश ईरान को आर्थिक मदद या सहारा देगा उसे भी गंभीर वित्तीय परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप के अनुसार ईरान को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले वित्तीय संस्थानों, कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और सेंट्रल अफ्रीका में कैमरून की सीमा के पास एक सोने की खदान के ढह जाने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार ये हादसा मंगलवार को जाम्बोई गांव में हुआ। बताया जाता है कि कई भूमिगत सुरंगों के ढहने से ये हादसा हुआ। बचावकर्मी मलबे में फंसे लोगों और इस शव को निकालने में जुटे हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। मौसम की रिपोर्ट। मस्करिंस के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले एंटीसाइक्लोन के कमजोर होने की वजह से हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर में भी धूप खिले रहेगी, सिवाय कि पश्चिम में जहां कुछ घरी के लिए बादल घिराएंगे। तापमान जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। तटवर्ती इलाकों में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाल रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 6:28 पर हुआ, सूर्यास्त होगा 5:58 पर।

खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के बीच आज मुलाकात, जिसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार

0: साझेदारी के तहत बहु प्रतीक्षित एमओयू का आदान प्रदान। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच के लिए जिम्मेदार आयोग आईपीसीसी से जुड़ने वाले दो नए सदस्यों ने इस आयोग से संबंधित कानून में संशोधन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉरिशस और जिम्बाब्वे के बीच व्यापार सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में प्रयास जारी, इसी सिलसिले में लगाया गया एक बिजनेस फोरम। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल के अनुसार एम्सो में नए पशु चिकित्सकों की भर्ती के वास्ते तैयारी जारी, इस संबंध में वेटरिनरी काउंसिल और मॉरिशस के साथ विचार विमर्श। और विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की, दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर सहमति नहीं बन पाने के बाद लिया गया ये फैसला। 6:49 हो चुके हैं, ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है फैजन के सहयोग से, जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Notre-Dame de Fatima Road, Terminus Triolemé, 64 साल की 64-year-old, श्रीमती आर्यवती धर्म सिंह, पैदाइश रामचरण जो सबीता से जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सपहर 3 बजे इनके पति ज्ञानदेव धर्म सिंह के मकान नोत्रडाम डे फातिमा रोड टर्मिनस थ्रियोले से उठाकर दाह संस्कार के लिए टर्मिनस थ्रियोले की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रेल रोड घोगोब में श्रीमती ईश्वरी भैरो पैदाइश नाम गंगा जो मानता से जानी जाती थी और 80 साल की थी 80 ईयर ओल्ड की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज दिन के 12:30 इनके बेटे श्री करण देव भैरो के मकान रॉयल रोड घोगोब से उठाकर दाह संस्कार के लिए दाहोची की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। अविनी बेतो काठबोन में 84 साल की 84-year-old कुमारी धनर लक्ष्मी मुटुसामी जो संगीरी से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके भाई श्री सेन मुटुसामी के मकान अविनी बेतो काठबोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए कोडेगाउत की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। Cremation today at 1 PM. Royalin Bejitombo mein 51 saal ki 51-year-old Shrimati Parvati Jagdeep paidaish naam Ramdhani jo karuna se jani jati thi ki mrityu ho gayi hai. Arthi aaj din ke 1:30 inki saas Shrimati Mala Jagdeep ke makan रोयालेन बेजितोंबो से उठाकर दाह संस्कार के लिए बामाशाओं की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 19 शातोनव स्ट्रीट बोबासे में 83 साल की 83-year-old श्री कमल कुमार ग्रंथ राय जो भाई कमल से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 इनके मकान नंबर 19 शातुनफ स्ट्रीट बोबासे से उठाकर दाह संस्कार के लिए कौलविये की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 1 PM। गुटवायाल घोगोब में 90 साल के 90-year-old श्री देवचन्नी राय जो बाल्मीक से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे हुनेश्वर निराय के मकान गुटवायाल घोगोब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोगोब की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 1 PM। रिजर्वोआर रोड कॉफुखो में 66 साल के 66 year old

older. Jenab Marie Laval Damon Uzia, Jenab Marie Laval Damon Uzia, जो डरमन से जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा जो हैं इनकी बेगम अनीता सकुन नंदुल के मकान रिजर्वा रोड कॉन्फुखो से निकाल कर दाह संस्कार के लिए रिजर्वा रोड कॉन्फुखो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड लावांचिया में 73 साल की 73 ईयर ओल्ड श्रीमती सितवंती गुंधारी, श्रीमती सितवंती गुंधारी पैदाइश नाम सुकालू जो मतिया से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनके बेटे विशाल गुंधारी के मकान रॉयल रोड लावांचिया से उठाकर दाह संस्कार के लिए लावांचिया की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ ऑफ पास्ट 11 AM। वालोरी रोड मुका में 74 साल के 74 ईयर ओल्ड श्री दयानंद राधा, श्री दयानंद राधा जो दया से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनके मकान वालोरी रोड मुका से उठाकर दाह संस्कार के लिए लाग्रिमों सेंट पियर की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 10 AM। रॉयल रोड पुटरेडो विलाज में 41 साल के 41 ईयर ओल्ड श्री विकास रामजी दास, श्री विकास रामजी दास जो विकास से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती अभिलाषा रामजी दास के मकान रॉयल रोड पुटरेडो विलाज से उठाकर दाह संस्कार के लिए पितों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 2 PM। और लडवा रोड पुटरेडो विलाज में 46 साल के 46 ईयर ओल्ड श्री सोमदत्त मेपल, श्री सोमदत्त मेपल जो बक्स से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे के मकान लडवा रोड पुटरेडो विलाज से उठाकर दाह संस्कार के लिए बेलमो की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूरोपियन चैंपियंस लीग के प्लेऑफ मैच में सेल्टिक ने 3-0 से एलएएस के टीम को पछाड़ा, मतलब एक कदम ग्रुप स्टेज में। अन्य मैचों में अपोएल बेर्शेवा 2 सबा 1, एनईसी 1 बोडोग्लिम 3, स्लोवान ब्रातिस्लावा 1 सेल्ये 1। स्पेन के ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने 2-0 से मालागा को हराया। आज यूईएफए यूरोपा लीग और यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के प्लेऑफ के मैच खेले जाएंगे। स्पेन के ला लीगा में रायो वालेकानो का मुकाबला अलावे से होगा। कल से प्रीमियर लीग सीजन 2026-2027 शुरू हो रहा है। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल और प्रीमियर लीग की नई नवेली दुल्हन कोवेंट्री सिटी के बीच टाइटल डिफेंस कल से शुरू। प्रीमियर लीग चैंपियन वर्सेस लीग चैंपियनशिप का चैंपियन आर्सेनल कल खेलेगा, पर टीम को और दमदार बनाने के लिए शॉपिंग जारी है। एस्टन विला के डिफेंडर एज्री कोनसा के लिए 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने पर मंजूरी हो चुकी है, अब उसे बस साइन करना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड तीसरा मिडफील्ड खिलाड़ी साइन करना चाहता है। एंड्रेस सांतोस और योगी चेलेमांस के बाद अब ब्राइटन से बालेबा को साइन करना चाहते हैं। बालेबा के लिए 60 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ऑफर भेजा गया है, पर ब्राइटन दाम बढ़ाना चाहेगा।

मैनचेस्टर यूनाइटेड की नज़र रोमा के मानु कोने पर भी है, पर सिटी भी कोने के पीछे है। लिवरपूल का मिडफील्डर कर्टिस जोन्स इंटर मिलान की ओर, खबर है इंटर मिलान 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर उसे साइन करने के करीब है। जॉन स्टोन्स और स्पेंस के बाद जोन्स इंग्लैंड का तीसरा खिलाड़ी होगा इंटर मिलान में। क्रिकेट, भारतीय टीम ने कल श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में हराया, 165 रनों की जीत, 165 रन विन। श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स में मानव सुतर 6 विकेट ले पाया, मैन ऑफ द मैच बना देवदत्त पदिक्कल। इंग्लैंड का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है, पहले टेस्ट मैच में पहले दिन ही इंग्लैंड ने पाकिस्तान को केवल 171 रनों में ऑल आउट किया। इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर रही है 112 रन बनाकर 2 विकेट के नुकसान पर। साइकिलिंग, टूर ऑफ ब्रिटेन वीमेन में कल लोरेना वेबेस ने पहला स्टेज जीता, मॉरिशस से किम्बर्ली लेकू डेब्यू पिना 22वें स्थान पर आई, 22nd प्लेस पर। ओवरऑल रैंकिंग में वो 6th स्थान पे हैं, 6th प्लेस लीडर वेबेस से केवल 8 सेकंड पीछे। बीच गोले में हमारी लड़कियों ने दूसरी जीत हासिल की, इजिप्ट में लग रही अफ्रीकी चैंपियनशिप में लिसाबोन और जुआनिता लातू ने इस बार साउथ अफ्रीका की जोड़ी को हराया, आज इनका मुकाबला केन्या से होगा। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सभी लोगों को अभी की ओर से शुभ दिन।

मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बा न्यू थावाई न्यू लाविनिया। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आसिया इंजीनियरिंग एंड इंटीरियर डेको लिमिटेड जुन वालोंचिना फिनिक्स में पावल जाला, चार बरिस के लिक्स पे योंस होला कैबिनेट मेकर के तलाश में बा। जस्ती जानकारी खातिन 5775-5933 पर कॉल करिए जा। अपन एप्लीकेशन mimranbokus@gmail.com पर भेजिया जा। रिटेल ट्रेड के सेक्टिया में अल बरकत मार्केटिंग लिमिटेड जुन रॉयल रोड ओयता वाकवा में पावल जाला, स्टोर कीपर और सेल्समैन के तलाश करता। जस्ती जानकारी खातिर फोन करिया 5827-0807 या 6840-632 पर कॉल करिया। आखिरी तारीख बा 21 अगस्त 2026। द क्यूबिकल लॉट रॉयल रोड फिनिक्स के वूलवर्थ मॉरिशस लिमिटेड कास्कावेल के आउटलेट खातिर शॉप असिस्टेंट के तलाश करत बा। जेकर SC बा, जस्ती जानकारी खातिर कॉल करिया 404-6090 पर और नहीं तर 5798-9536 पर। अंतिम तारीख बा 31 अगस्त क्लोवेल फिनिक्स और वालोंचिना में हाउसमेड और करियर के जरूरत बा। टेलीफोने करिया 6964031 और नहीं तर 6976458 पर। बेलवी मोगेल में एगो माली या गार्डनर के जरूरत बा 412-6925 पर कॉल करिया। कुंगुमा में प्राइवेट कार चालक माली के जरूरत बा, कॉल करिया 261-4524 या 270-1122 पर। गुडलैंड्स में हाउसमेड के जरूरत बा, जस्ती जानकारी खातिर टेलीफोन करिया 282-5917 या 282-5918 पर कॉल करिया। मैकेनिक के सिक्तिया में स्कूल लेन पिचिगाफ्टे के सुदेश टायर सेंटर लिमिटेड दो बरिस के तजुर्बा होला टायर मैन और व्हील अलाइनमेंट टेक्नीशियन के खोज करत बा। जस्ती जानकारी खातिर 5787-1234 पर कॉल करिया। अंतिम तारीख है 1 सितंबर 2026।

जॉब कॉन्ट्रैक्टर के सेक्टर में प्लॉट नंबर 6 बेल सूस पॉम्प्लिमूस के एएम इलेक्ट्रिकल एंड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड एगो इलेक्ट्रिशियन के खोज करत बा। जस्ती जानकारी खातिर कॉल करिए 5751-0599 पर। डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ जनरल मोशोजीज के सेक्टिया में मामजल जानी गुडलैंड्स के सुपर प्रोफाइल लिमिटेड दुबरीस के अनुभव होला लॉरी ड्राइवर और हेल्पर के खोज करत बा। जस्ती जानकारी खातिर 5255-0391 पर कॉल करिया। अंतिम तारीख है 6 सितंबर 2026। मैकेनिक के सिक्तिया में रिजर्वोयर रोड गुडलैंड्स के इको डिजाइन कंसल्टिंग लिमिटेड एगो वर्कशॉप एडमिन के खोज में बा। जेकर HSC बा और 3 बरिस के लेक्सपेयंस बा सकी कॉल करे 5735-7750 पर। अंतिम तारीख है 30 अगस्त 2026। जॉब कॉन्ट्रैक्टर के सेक्टिया में महादेव रोड मामजल जानी गुडलैंड्स के BCM एक्सकावेशन वर्क्स लिमिटेड एगो एडमिन क्लर्क के खोज करता। जेकर HSC बा सकी टेलीफोन करे 5803-2986 पर। न्यू रोड रोशनुआ के गाराज पुल लिमिटेड 3 बरिस के तजुर्बा के साथ होला एगो कार पेंटर के और संगे पैनल बीटर के तलाश करता। जस्ती जानकारी खातिर टेलीफोने करिया 5757-2905 पर। और सकी हौजा सीधा जाई के रॉयल रोड नुवेल फ्रांस के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से करल एगो सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन के खोज करत बा। जस्ती जानकारी खातिर टेलीफोने करिया 5291-1881 पर। अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2026। प्लेजांस शॉपिंग रोजबेल के पानाहोची मॉरिशस से प्राप्त करल कैंडिडेट लोग के वेटर कैशियर और किचन हेल्पर के नौकरी खातिर आमंत्रित करल बा। जस्ती जानकारी खातिर टेलीफोने करिया 4549603 और नहीं तो 5421-9327 पर। और नहीं तो खुद सके हौजा पर जाकर अपना अर्जी देवे के। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में बीमानिक स्टोन क्रशर लिमिटेड जोन मोटरवे लाविजी नुवेल फ्रांस में पावल जाला एगो स्टोर कीपर खोजता। जेकर SC संगे 2 बरिस के लेक्स पे यौंस बाते। एप्लीकेशन करे खातिर अपन CV ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दिया hr@bscl.mu। जस्ती जानकारी खातिर फोन करिया 5943-8209 पर। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 21 अगस्त 2026। कंस्ट्रक्शन के ही सेक्टर में हाईवेक पार्टनर्स लिमिटेड जुन लॉट 22A साइबर सिटी हाईवेक हाउस में पावल जाला एगो मासों खो जाता। जेकर 2 बरिस स्किल एक्सपीरियंस बा साथ में एगो इलेक्ट्रीशियन एगो कॉर्पेंटर एगो वेल्डर और एगो कुक सबके चाहिला 2 बरिस स्किल एक्सपीरियंस हो के। एप्लीकेशन करे खातिर फोन करिए 4648600 पर। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 24 अगस्त 2026। जॉब कॉन्ट्रैक्टर के सेक्टिया में पॉम्प्लिमूस मोटर व्हीकल्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जुन रॉयल रोड CGM मिल कालबास मौसलमा रिपाई में पावल जाला एगो सोफिया खोजता 12 व्हील्स लॉरी 35 टन्स खातिर। जेकर 4 बरिस के एक्सपीरियंस बाते साथ में ट्रक मैकेनिक जिनकर 4 बरिस के एक्सपीरियंस बाते एगो ट्रक एक्सकेवेटर ऑपरेटर जेकर 4 बरिस के एक्सपीरियंस बाते एगो GCB एंड बैकहो लोडर ऑपरेटर जेकर 4 बरिस के एक्सपीरियंस बाते और एगो वेल्डर जेकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाते। एप्लीकेशन करे खातिर फोन करिए 2439437 और नहीं तो 5725

0: 90766 पर। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 20 अगस्त 2026।
1: द ई रहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस तथा MBC के मिलल जुलल सहयोग से नू थावाय नू लाविनिय।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।
3: MBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।
4: श्रोताओं, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से टेंडर विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले ककुबोन के रहने वाले निवासियों को, जिनमें हैं अविनी कुंसिनी, हिलारी ब्लड, लुई नीलान लेन, कॉन्डोस लेन, लालुइज एवेन्यू और रिवे एवेन्यू और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 20 अगस्त 2026 को दिन के 12 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में है कौचे मिलितिया के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है फिलिंग स्टेशन ऑनजैन, रॉयल रोड कौचे मिलितिया, रेजिडेंस रावातों, बनवेन रोड, सैन लियन रोड और बेचुअल रोड के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को तथा आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 23 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है रियांबेल कोस्टल रोड सुरीनाम के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 20 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
5: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: तो चलिए श्रोते, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। गुरुवार का दिन है आज, 20 अगस्त 2026। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। नई सुबह, नई सोच और नया उत्साह जीवन को खूबसूरत बनाती है। तो चलिए श्रोताओं, आपके लाए हैं चिंतन। चिंतन जो है डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं, लेकिन अनुभव से अर्थ की समझ होती है। सफल जीवन की चाह रखने वाला व्यक्ति ज्ञान और अनुभव दोनों को साथ लेकर चलता है।

तो चलिए श्रोताओं, हम आपके लाए हैं झलकियां हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके लिए। इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह का नजाना कार्यक्रम आपकी सेवा में चंद पुराने गाने आप सुन पाएंगे। 8 बजे भोजपुरी में समाचार पढ़े जाएंगे। समाचारों के उस पार सुबह का नजाना के कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आपके चंद डुएट्स गाने। 8:50 पर हमारी धरोहर ये कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में, साथ में आपके लिए एक भोजपुरी गीत। 9 बजे के समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा की प्रस्तुति में। इसके बाद 10 बजे आप समाचार फिर से सुन सकेंगे और इसके बाद भक्ति धारा कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान चक्र कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जो है सनातन धर्म मंदिर परिषद की तरफ से आप सुन पाएंगे श्रावण मास के संदर्भ में। साथ ही साथ भक्ति धारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और एक और विशेष कार्यक्रम श्रावण मास के संदर्भ में हिंदू महासभा की तरफ से ये कार्यक्रम प्रसारित होने वाला है। और 11 बजे एक बार फिर से आप समाचार सुन सकेंगे। उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में 11:03 पर दिन के 12 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम गिरिशालिनी लेकर ये कार्यक्रम आएगी। तमिल भाषा में कार्यक्रम आरसी के साथ 12:30 बजे। 1:30 बजे विविधा कार्यक्रम मराठी भाषा में प्रीति के साथ। मंदारिन में कार्यक्रम दोपहर के 2 बजे जिन के साथ। 2:30 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। गुजराती कार्यक्रम वैसे 2:30 बजे गुजराती कार्यक्रम अमिता के साथ ये कार्यक्रम जो है 2:30 बजे आप सुन सकेंगे। 2:45 पर आपकी पसंद कार्यक्रम सुमिता की प्रस्तुति में और सुपहर के 3 बजे समाचार पढ़े जाएंगे और इसके बाद आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। शाम के 4 बजे भक्ति सागर कार्यक्रम, ये कार्यक्रम जो है सुमिता की प्रस्तुति में और इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीयूष धारा कार्यक्रम आप डॉक्टर महावीर शांति जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे। शाम के 5 बजे सदाबहार गीत सुमिता की प्रस्तुति में। 6 बजे

0: ये पूरा समाचार बुलेटिन और उसके बाद चंद फिल्में गाने और 6:30 बजे दाविद के साथ आप मंदारिन में कार्यक्रम सुन पाएंगे। रात के 7 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम पुवाना के साथ। वर्षा लेकर आएगी तेलुगु भाषा में कार्यक्रम 7:30 बजे 7:50 पर। गीत गंगा ये कार्यक्रम मराठी भाषा में प्रसारित है शीर्ष के साथ। भजले प्रभु का नाम देवीना की प्रस्तुति में 8:10 पर। 8:40 पर महफिले शब ये कार्यक्रम समीर के साथ। रात के 9 बजे भोजपुरी तड़का ये कार्यक्रम किरण के साथ। और रात के 11 बजे सुनहरे पर गिनिशा की प्रस्तुति में चंद पुराने गाने इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और रात के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक आपके लिए चंद प्यारे प्यारे गीत। तो हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा झलकियां
1: झलकियां
2: झलकियां
3: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।

वैसे सोचाओ जिंदगी की खूबसूरती भी तो इन्हीं ख्वाबों में छिपी है। कुछ ख्वाब आंखों में सजते हैं, कुछ दिल में पलते हैं और कुछ हमें अपनी मंजिल तक ले जाते हैं। तो आप ज़रूर ख्वाब देखिए, उम्मीद रखिए और हर सुबह एक नई कोशिश के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि शायद आपका आज का ख्वाब ही आपके कल की खूबसूरत हकीकत बन जाए। सुबह का नज़ाना कार्यक्रम आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 7:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में।

वैसे श्रोताओं, वक्त जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा है। पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर पल की कद्र करना सीखिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी भी इन्हीं गुजरते हुए पलों से बनती है ना।

चलिए श्रोताओं, प्रेम में बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी परवाह मायने रखती है। एक सच्ची मुस्कान मुश्किल समय के साथ और बिना स्वार्थ के किसी का भला चाहना, यही है सच्चा प्रेम जो दिल को बांधता है। तो चलिए सुबह का नजाना, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे चंद एवरग्रीन सॉन्ग आपके लिए।

श्रोताओं कहते हैं दिल की आवाज़ बहुत धीमी होती है, मगर अगर हम थोड़ा ठहर कर सुने तो वही आवाज़ हमें रिश्तों की कीमत, अपनों की अहमियत और ज़िंदगी की खूबसूरती समझा देती है।

श्रोताओं, पुराने गीतों की खासियत यही है, सादगी भरे बोल, मधुर संगीत और भावनाओं से जुड़ी आवाज़ें उन्हें हमेशा यादगार बनाती हैं। 7:45 हो चुके हैं, ये है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम। बुलंद है आपके लिए एक से बढ़कर एक गीत, चंद पुराने गाने जो आप सुनना पसंद करती हैं।

श्रोता वो कहते हैं, रोना भी रिश्तों का एक प्यारा सा हिस्सा है। कभी कभी हम नाराज़ होकर अपने मन की बात कह नहीं पाते, बस चाहते हैं कि सामने वाला हमारे एहसास को बिना कहे समझ ले। तो चलिए, कुछ ही घर में 8 बजने वाले हैं और आप भोजपुरी में समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार सुबह का नजाना इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से को लेकर हम उपस्थित होंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: फजर के 8 बजलवा पेशवा भोजपुरी समाचार। सब श्रोता लोग के नमस्ते, भोजपुरी समाचार में तोहर स्वागत बाते। मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपन व्यापार आदान प्रदान के नवा गति देखो जता। जिम्बाब्वे के 30 से जस्ती प्रतिनिधि स्थानीय बाजार के समझे के और नवा कारोबारी के अवसर तलाशे खातिर मॉरिशस में हवन जा। दोनों देशों के बीच व्यापार अभी भी सीमित बाते। 2025 में जिम्बाब्वे दिने मॉरिशस के निर्यात लगभग 4,54,000 अमेरिकी डॉलर के रहल। दोनों देश के चैम्बर्स और कॉमर्स के बीच काल एगो बिजनेस फोरम बजी हस्ताक्षर करल गल एमओयू के उद्देश्य नवा साझेदारी के रास्ता खुलेगी है। खाद्य सुरक्षा भी उप्रमुख क्षेत्र में शामिल है, जहां मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपन सहयोग के मजबूत करे खोजत हवन सा। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम संगे मुलाकात करियन, जिकर बाद पेट्रोलियम उत्पाद के आपूर्ति खातिर सरकार से सरकार साझेदारी के तहत एगो लंबा समय से प्रतीक्षित एमओयू के आदान प्रदान करल जाए। एकर बाद प्रेस संबोधन भी हुए। पुलिस कैनाबिस के आयात के कथित साजिश के मामला में एगो संदिग्ध की तलाश करता। संदिग्ध के नाम शान कुमार चुलन है, जिनकरा लोग मिथुन से भी जानन जा। उ लेमोन के रहे होला हुआन। जे कोई के पास ओकर बारे में कोनो जानकारी रही, ओकरा पुलिस से संपर्क करे के चाही। पुलिस याद दिलावता कि क्रिमिनल कोड के धारा 172 के तहत कोनो फरार व्यक्ति के पनाह दे के एगो अपराध है। गुलशन गोविंद के काल बाबो अदालत में पेश करल गल कैनाबिस के खेती और मिताडोन रखे के आरोप के संबंध में उनकर जमानत पर रिहाई के अर्जी पर बहस करल गल। पुलिस संदिग्ध के जमानत के मांग के विरोध करलक। मामला के आवत सुनवाई लेंदी 24 अगस्त के करल जाए। पुलिस के आईटी यूनिट सांसद बेगोनी के गोविंद के मोबाइल फोन के काल जांच करलक। इकारवाई 155 किलो गांजा आयात के मामला के तहत करल गल। ये प्रक्रिया करीब 3 घंटा तक चलल। इस दौरान सांसद और उनकर वकील मौजूद रहल। एकर से अक्ते वेरोनिक लियो गोविंद गल सप्ताह रोजिल के आतसू में भी पूछताछ करल गल रहल। उनकर से उ ई मामला में कोनो भी तरह के संलग्न हो से इनकार कर ले हवन। फिलहाल ई मामला में 3 गो संदिग्ध पुलिस हिरासत में बाते। गुलशन गोविंद, रविंद्र चिमाजी और वी डैनियल जोजे ओगिस्त हौजे चौथा संदिग्ध, जिनके मिथुन चुलन हवन के तलाश जारी बा। वो अक्ते से ही पुलिस के रिकॉर्ड में हवन। अतीत में उनकरा एफसीसी के एकोडिया मामला से जुड़ल जांच के दौरान गिरफ्तार करल गल रहल। उस समय जांचकर्ता के संदेह रहल कि वो जॉन यूबिया सेल्किन उर्फ फ्रैंकलिन के खातिर बेनामी व्यक्ति के रूप में काम कर ले रहन। फ्रैंकलिन फिलहाल रूनियन में मादक द्रव्य की तस्करी से जुड़ल एगो मामला में हिरासत

0: सच में बातें। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंट्स कमीशन यानी कि आईपीसीसी के अध्यक्ष पद पर सतीश फोगू के नियुक्ति के बाद आयोग में न्यायिक क्षेत्र के दुगुनावा पेशेवर शामिल होल हवंसा, रेणुका ब्रिजमोहन और इमामाद उजिया काल दोपहर के स्टेट हाउस में राष्ट्रपति धरम गोकुल के सामने पद की शपथ ले लंजा। उन लोग ये आयोग से संबंधित कानून में संशोधन आने की आवश्यकता पर जोर दिलन। आईपीसीसी के मुख्य दायित्व पुलिस अधिकारी के खिलाफ दर्ज शिकायत के जांच करेगी है। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल के अनुसार एम्सो में नवा पशु चिकित्सक के भर्ती खातिर तैयारी चलता। इस संबंध में वेटरिनरी काउंसिल और मॉरिशस संघ विचार विमर्श करल जानबा। सरकार सादेक देशन और मडागास्कर से योग्य पशु चिकित्सक के भर्ती के संभावना पर विचार करता। हालांकि इकर खातिर उलोग के योग्यता के मान्यता और पंजीकरण से जुड़ल प्रक्रिया पूरी करे के चाहिए। मंत्री अरविंद बुलेल एगो वेटरिनरी स्कूल, एगो बड़ा एनिमल शेल्टर और एगो वेटरिनरी हॉस्पिटल स्थापित करे के योजना के भी उल्लेख करलन। ये परियोजना भारत देने से मिली होला लगभग 2 बिलियन रुपया की सहायता के तहत आवेला। और दूसर देश के समाचार में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन शुरू करे के घोषणा करले बाद दोनों देशों के बीच कोनो समझौता पर सहमति नहीं होला के बाद ये फैसला लेवल गल बा। ट्रंप ईरान के आर्थिक रूप से अलग थलग करे खातिर बड़ा पैमाना पर कार्रवाई के चेतावनी दे ले बा। वो ये भी कहलन कि जो भी देश ईरान के आर्थिक मदद या सहारा दे ओकरा गंभीर वित्तीय परिणाम भुगते के पड़ी। ट्रंप के अनुसार ईरान के आर्थिक मदद पहुँचाई होला वित्तीय संस्थान, कंपनी या सरकारी संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई करल जा सकी। सेंट्रल अफ्रीका में कामरून के सीमा के पास एगो सोना के खदान के ढह जाला से 100 से जस्ती लोगन की मौत हो गल बा। स्थानीय सूत्र के अनुसार ये हादसा मंगर के जाम्बोई गांव में होल। बतावल जाता कि कई गो भूमिगत सुरंग के ढहला से ये हादसा होल। बचावकर्मी मलबा में फंसल लोगन और शव निकाले में जुटल हवंजा मृतक की संख्या बढ़े के आशंका बाती। और श्रीलंका में गो सामूहिक कब्र के खुदाई के दौरान 582 गो कंकाल बरामद कर गल बा, जिकर में लड़का और शिशु भी शामिल रहल बाती। स्थल देश के गृह युद्ध बजी तमिल नागरिक के सेना द्वारा हत्या करल जाए के आरोप से भी जुड़ल बाते। मामला के जांच में करीब 30 बरिस के देरी होल बा। एकरे संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भेल। धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुना जा। लडवा रोड पुरेडो विलाज में 46 बरिस के कारण सीजों के श्री सोमदत्त मेपुल, श्री सोमदत्त मेपुल जिनका लोग बाक से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर मकान लडवा रोड पुरेडो विलाज से उठा के दाह संस्कार खातिर बेलमो के स्मशान भूमि ले जाल जाए। रल रोड पुरेडो विलाज में 41 बरिस के कहतेनों के श्री विकास रामजी दास, श्री विकास रामजी दास जिनका लोग विकास से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर पत्नी श्रीमती अभिलाषा रामजी दास के मकान रल रोड पुरेडो विलाज से उठा के दाह संस्कार खातिर पितों के स्मशान भूमि ले जाल जाए। वालोगी रोड मुका में 74 बरिस के श्वासन का तोजों के श्री दयानंद राधा, श्री दयानंद राधा जिनका लोग दया से जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर मकान बालोगी रोड मुका से उठा के दाह संस्कार खातिर लागरेमा सैंपियर की स्मशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड लावाचिया में 73 बरिस के श्वासन थेजों के श्रीमती सितवंती गुंडारी, श्रीमती सितवंती गुंडारी जिन पैदाइश नाम सुकालू जिनका लोग मतिया सी जानत रलंजा की मृत्यु हो गल बा।

अर्थी आज दिन के 11:00 ध्यान कर बेटा विशाल गुंडारी के मकान रल रोड लावाउचुया से उठा के दास संस्कार खातिर लावाउचुया के शमशान भूमि ले जल जाए। रुटवायाल घोगोब में 90 बरिस के कतोवेजों के श्री देवचंद निराय जिनका लोग बाल्मीक से जानत रलंजा के मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 1:00 कर बेटा श्री हुनेश्वर निराय के मकान रुटवायाल घोगोब से उठा के अंतिम संस्कार खातिर घोगोब के स्मशान भूमि ले जल जाए। नंबर 19 शातुनफ स्ट्रीट बोबासे में 83 बरिस के कैथोवेंट ख्वाजों के श्री कमल कुमार ग्रंथराय जिनका लोग भाई कमल से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 1:00 इनकर मकान नंबर 19 शातुनफ स्ट्रीट बोबासे से उठा के दास संस्कार खातिर कौलिव्यू के शमशान भूमि ले जल जाए। हुयालेन बेजितोंबो में 51 बरिस के सैकौतेनों के श्रीमती पार्वती जगदेव पैदाश नाम रामधुनी जिनका लोग करोना से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 1:00 इनकर सास श्रीमती माला जगदेव के मकान हुयालेन बेजितोंबो से उठा के दाह संस्कार खातिर बुआ मौसों के स्मशान भूमि ले जाल जाए। आवेन्यू बेटो काठोबोन में 84 बरिस के काथोवै काथों के श्रीमती बल्कि कुमारी धनरलक्ष्मी मुतुस्वामी जिनका लोग संगेरी से जानत रलंजा के मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 1:00 इनकर भाई सैन मुतुस्वामी के मकान आवेन्यू बेटो काठोबोन से उठा के दाह संस्कार खातिर कोडेगाउत के शमशान भूमि ले जल जाए। नोत्रडाम डे फातिमा रोड टर्मिनिस त्रियोले में 64 बरिस के श्वासन काथों के श्रीमती आर्यवती धर्म सिंह पैदाइश नाम रामचंद जिनका लोग सबीता से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज सांझ के 3:00 इनकर पति ज्ञानदेव धर्म सिंह के मकान नोत्रडाम डे फातिमा रोड टर्मिनिस त्रियोले से उठा के दाह संस्कार खातिर त्रियोले टर्मिनिस के शमशान भूमि ले जल जाए। रिजर्वा गली कौफुखो में 66 बरिस के श्वासन सीजों के श्री मारी लावाल दामो उजिया जिनकरा लोग दरमन से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 11:00 इनकर पत्नी श्रीमती अनीता साकुन ननलोल के मकान रिजर्वा रोड कौफुखो से उठा के दाह संस्कार खातिर रिजर्वा गली कौफुखो के ही शमशान भूमि ले जल जाए। रुटवायाल घोगोब में 80 बरिस के काथोवेजों के श्रीमती ईश्वरी भैरो पैदाइश नाम गंगा जिनका लोग मानता से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा अर्थी आज दिन के 12:00 इनकर बेटा श्री करण देव भैरो के मकान होटवायाल घोगोब से उठा के दाह संस्कार खातिर दागोची के शमशान भूमि ले जल जाए। दशोक में डुबल इस सब परिवार लोगन के प्रति हमने के दिली हमदर्दी बातें।

चलिए श्रोते, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए इस समय से लेकर 8:50 पर चंद डुएट्स गाने आपके लिए। बहुत ही प्यारा सा डुएट है, चलिए, फिल्म का नाम है गाइड।

तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की मीठी आवाज़ों में। फिल्म का नाम बड़े दिल वाला। वैसे कहीं मत जा, इस गीत में प्यार की वह एहसास ऐसी पुकार सुनाई देती है जिसमें अपने किसी खास इंसान को खो देने का डर भी है और उसे अपने पास रोक लेने की चाहत भी है। तो चलिए खूबसूरत गीतों का ये कार्रवाई से हम आगे बढ़ाएंगे। स्टूडियो की घड़ी में 8:30 बज चुके हैं। चंद डुएट्स गाने आपके नाम इस समय रेडियो मॉरिशस पे। तो चलिए अगली भेंट में ये प्यारा सा गीत जो है आप सुन पाएंगे, लता मंगेशकर और यशुदास की मीठी आवाज़ों में, और फिल्म का नाम है त्रिशूल।

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक से बढ़कर एक गीत आपके नाम इस समय हम कर रही है। बहुत ही प्यारा सा गीत 1978 में आई त्रिशूल, जहां पर अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शशि कपूर, राखी और हेमा मालिनी जैसे शानदार कलाकारों ने अभिनय किया। और जहां कहानी में था संघर्ष, रिश्तों में था एहसास और पर्दे पर था अभिनय का जादू। जी हाँ, एक ऐसी फिल्म जिसे जितनी बार याद करें उतनी ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। तो चलिए, गीतों का ये खूबसूरत सफ़र इसे हम आगे बढ़ाएंगे अगली भेंट में। अगली भेंट में ये प्यारा सा गीत फिल्म कलाकार से लिया गया और ये प्यारा सा गीत इसे आप ज़रूर पसंद करने वाले हैं।

0: दिल की बहार सुबह का नजारा।
1: तो चलिए श्रोताओं, पुरानी फिल्म कलाकार से लिया गया गीत अभी आपने सुना। तो चलिए आपके लिए जो है हम लाए हैं चंद डुएट्स गाने रेडियो मॉरिशस पे। कहते हैं ना बहुत ऐसे जो है प्यारे प्यारे गीत आपके नाम हम कर रहे हैं जो आप बेहद ही पसंद कर रहे हैं। आपके फ़ोन कॉल्स के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिल्म कलाकार के गीतों के साथ आज फिर से सजाते हैं उन यादों को जो बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है आप सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को आप पसंद कर रहे हैं। तो चलिए एक ऐसा गीत है जो है आज भी लोग बहुत ही प्यार के साथ सुनते हैं, इस गीत को आप ज़रूर गाइए गुनगुनाइए हमारे साथ।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

भी गाने बेहद ही हिट हुए हैं और ये बहुत ही प्यारा सा गीत रात के हम सफ़र जैसे गीत की खासियत यही है कि इसमें रात सिर्फ एक समय नहीं बल्कि एहसास बन जाती है। गीत सुनते हुए लगता है जैसे चांदनी के साथ यादें भी चल रही हो और हर सुर दिल से कोई पुरानी बात कह रहा हो। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है चरित्रहीन और किशोर कुमार और लता मंगेशकर की मीठी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत हम सुनेंगे।

चलिए श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चैनल ड्वेट्स गाने। इस कार्यक्रम का समय पूरा हो चला, 8:50 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। चलिए हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। आइए किरण जानकी के साथ हम सुनेंगे हमारी धरोहर।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में तोहर स्वागत बा। अभी 15 अगस्त के भारत के जन स्वराज दिवस मनावल गल, ओके मनाते हुए हमनी के मॉरिशस में भी एगो अलग गर्व के महसूस करी लाजा। जब भारत के स्वराज मिलल रहल तब मॉरिशस में भी उस समय में एगो हस्ती रलन जे स्वराज दिवस मॉरिशस में जोश और जुनून से मनावत रलन, और भारत के स्वतंत्रता से प्रेरित होके उ मॉरिशस में भी आंदोलन शुरू कर ले रलन, जन आंदोलन। यह ओम का झंडा आता है, सोने वालों जाग चलो, ई नारा गावत रलन। अब समझ कल होइबा कि प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदयाल के चर्चा होवता, जिनकर बड़ा प्रतिमा कोदो वाटरफ्रंट में बा, और आधा प्रतिमा स्वराज भवन लालमाटी में बा, और उही ई देश में आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में गति अनलन, और मॉरिशन में देशभक्ति की भावना डललन। प्रोफेसर वासुदेव बिसुंदयाल देशभक्त, मिशनरी, विद्वान, बेहतरीन वक्ता और लेखक रलन। मॉरिशस वासी होते हुए वो भारत से प्रेरणा लेके मॉरिशन में अपन देश के प्रति प्रेम उजागर करलन। एकदम देशभक्त के भावना वो अनलन, और ई मानल जाला कि आधुनिक सांस्कृतिक मॉरिशस के निर्माण वही कर ले हवन। अपन जन आंदोलन के जरिए वो हजारन जना के वोट करे के काबिल बनेलन। 1948 के आम चुनाव में मतदान देवे के उ बखत इस शर्त रहल कि तोहरा चाही शिक्षित रहे के, पढ़ल लिखल रहे के। तो प्रोफेसर बिसुंदयाल सोचलन कि जे सब कोई के दस्तावेज दस्तखत करे के सिखावल जाए, अपन नाम कम से कम लिखे के सिखावल जाए, तो उ लोग के पढ़ल लिखल समझल जाए, और ई सही करे के आंदोलन स्वयं सेवक लोग गांव-गांव में हर बैठका में चलेलन सा, और चुनाव में 80,000 से जस्ती जना के वोटे करे के काबिल बनेलन जा। 1933 में प्रोफेसर बिसुंदयाल भारत गल रलन लाहौर यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर आज़ादी के आंदोलन चलत देख पंडित बिसुंदयाल महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और लाला लाजपत राय जैसन हस्ती से प्रभावित होलन। 1939 में मॉरिशस लौटला पर उ देखलन कि मॉरिशन जनता में भारतीय मूल के जो मॉरिशन हवन जा उ लोग में एकता के कमी बा। उ लोग के उत्साह बढ़ावे के, भाईचारा और एकता के भावना उ लोग में आने खातिर चाहिए एगो अभियान और एगो प्रशिक्षण आने के, और उ गांव-गांव में प्रचार शुरू करलन, और ई प्रचार में उ आध्यात्म, धर्म और सामाजिक और राष्ट्रीय एकता पर बहुत जोर देलन। उ मॉरिशस में लेकोस मालबाओ के खत्म कर देलन। लेकोस मालबाओ मॉरिशन हिंदू लोग के मजाक उड़ावे खातिर रहल। एगो शिक्षित व्यक्तित्व होते हुए पंडित आम जनता के बीच रह के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय उत्थान पर सफलतापूर्वक आंदोलन अनलन। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के आप सबको के एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते।
2: तो चलिए श्रोताओं, कुछ ही घड़ी में 9 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आप आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा के साथ सुन पाएंगे। मिलेंगे 10 बजे भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर, हम उपस्थित होंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: घड़ी हमें बता रही है इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अब आप करुणा से समाचार सुनेंगे। नमस्कार करुणा।
1: नमस्कार अनुराधा, सभी दर्शकों को भी नमस्कार और श्रोताओं को भी। एमटीसी जेसी ने आज सुबह घोषणा की कि इस सप्ताह घुड़दौड़ शनिवार 22 अगस्त के बजाय रविवार 23 अगस्त 2026 को लगाई जाएगी। सप्ताह की शुरुआत में खराब मौसम के कारण और आज गुरुवार से सामान्य प्रशिक्षण फिर से शुरू होने के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपने व्यापार आदान प्रदान को नई गति देना चाहते हैं। जिम्बाब्वे के 30 से अधिक प्रतिनिधि स्थानीय बाजार को समझने और नए नौकरी अवसर, नए कारोबारी अवसर तलाशने के लिए मॉरिशस में हैं। दोनों देशों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बीच कल एक बिजनेस फोरम के दौरान हस्ताक्षर किए गए ये MOU का उद्देश्य नए साझेदारी के रास्ते खोलना है। खाद्य सुरक्षा भी उन प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं जहां मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपने सहयोग को और भी मजबूत कर सकती हैं। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार साझेदारी के तहत बहुप्रतीक्षित MOU का आदान प्रदान किया जाएगा। पुलिस कैनाबिस के आयात की कथित साजिश के मामले में एक संदिग्ध की तलाश कर रही है। संदिग्ध का नाम शान कुमार चुलन है, जिसे मिथुन से भी जाना जाता है। वो लेमोन का रहने वाला है। जिस किसी के पास उसके बारे में कोई जानकारी हो उससे पुलिस से संपर्क करने की अपील की गई है। पुलिस ने याद दिलाया है कि क्रिमिनल कोड की सेक्शन 172 के तहत किसी फरार व्यक्ति को पनाह देना एक अपराध है। गुलशन गोविंद को कल बॉम्बो अदालत में पेश किया गया। कैनाबिस की खेती और मेथाडोन रखने के आरोपों के संबंध में उनकी जमानत पर रिहाई की अर्जी पर बहस की गई। पुलिस ने संदिग्ध की जमानत की मांग का विरोध किया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार 24 अगस्त को होगी। इंडिपेंडेंट पुलिस कंप्लेंस कमीशन यानी कि IPCC के अध्यक्ष पद पर सतीश फोगू की नियुक्ति के बाद आयोग में न्यायिक क्षेत्र के 2 नए पेशेवर शामिल हुए हैं। रेणुका ब्रिजमोहन और मामाद उजिया ने कल दोपहर स्टेट हाउस में राष्ट्रपति के सामने शपथ ली। उन्होंने इस आयोग से संबंधित कानून में संशोधन लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। गौरतलब है कि IPCC का मुख्य दायित्व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच करना है। और विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अभूतपूर्व क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर सहमति न बन पाने के बाद ये फैसला लिया गया। ट्रंप ने ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी देश ईरान को आर्थिक मदद या सहारा देगा उससे भी गंभीर वित्तीय परिणाम भुगतने होंगे। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। हमें पूर्ण आशा है कि आप सब स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आप भी तत्पर हैं। रेडियो मॉरीशस पर 819 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही साथ टीवी के तीसरे चैनल पर, एमबीसी टीवी के तीसरे चैनल पर ये प्रोग्राम आप लाइव भी देख सकते हैं। और आज हमारे साथ टेक्निक पर फैजन है और प्रोडक्शन सहायिका है उरुसा और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं जैनिश। हम सब बिल्कुल तैयार हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे विषय पर जो बहुत से लोगों के लिए डायरेक्टली रिलेवेंट

0: इम्पोर्टेड सेकंड हैंड काउस की बिक्री और उस पर लागू रेगुलेशंस। जब कोई ग्राहक एक सेकंड हैंड इम्पोर्टेड का या कोई व्हीकल ख़रीदता है तो उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, डीलर की क्या जिम्मेदारियां हैं अगर गाड़ी में कोई खराबी पाए जाते हैं, माइलेज और व्हीकल्स हिस्ट्री को लेकर कोई डाउट है या कोई वैसे शक है, तो उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं, वो क्या करना चाहिए ग्राहक, इन्हीं सवालों के कुछ जवाब पाने के लिए हमारे स्टूडियो में इसी विषय पर हम ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारे साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन अफेयर्स के दो ऑफिसर्स स्टूडियो में उपस्थित हैं, श्रीमती जयश्री बसावन सुपोल जी और श्री रणवीर सिंह मीतू जी। आप दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: और जैसे हम बोल लीजा, हमने सेकंड हैंड कार यानी कि इम्पोर्टेड सेकंड हैंड कार पर जैसी पत्याब ज हम आजकल के दौर देखी ला जा कि अगर एगो व्यक्ति एगो अच्छा गाड़ी किने चाहता तो जैसे जे आप ओके okay, कौन से देबा।
2: आज के जो टाइटल है इम्पोर्टेड सेकंड हैंड कार, उसका मतलब क्या है इम्पोर्टेड सेकंड हैंड का, जैसे सब लोग जाने ला रिकंडीशन लोटो रिकॉन, ताजा आज लोटो रिकॉन पे बात करब सर। लोटो रिकॉन देखिला सर ढेर शोरूम बाटे जो लोटो इम्पोर्टे करेला। रिकॉन का बोला जाला हाई लोटो वन दोरिजिन नया नहीं बाटे, नवा नहीं बाटे, लोटो वन दूसर देश में चलल बाटे ओकर मिलास मोटे होल बाद तब लोटोआ के फिर से बना के वो सब जे देफो सब रही था सब ठीक ठाक करके तब इम्पोर्टे होला। लोटो रिकंडीशन जब इम्पोर्टे होला तो ट्रेडर लोग जाने ला वो लोग के बाद कंडीशन जो रेस्पेक्टे करेंगे, जो हम इनके मिनिस्टर बा ट्रेड सेक्शन वो पीएमई इम्पोर्टेशन दे वेला। अब आज हम ग्राहक के हित में बात करब सर, ग्राहक के
0: अधिकार उन लोगों के हाइड्राइड्स जैसे पर
2: लोग जान सर लोटो शोरूम में देखे तो तीन चीज के चाहेला ध्यान में रखे के लोटोआ के घाट कौन घाट हते, एगो ग्रेडिंग बाते जो सकब सब ले आ बे से दे एगो घाट बाते सब लोटो के चाहना देखे के, और ये ओकर ऑक्शन सर्टिफिकेट वो चाहना देखे के, और ओकर देखे के चाहला ओकर कंडीशन वो सब, और ये प्रीज बियन श्योर प्रीज चाहेला देखे के। इन तीन गो चीज़ों शोरूम लोग चाहेला आफिशे करके, जब उबिया आफ कब आफिशे नहीं होकर ले उनसा तब पापियोवा बाते, जब एगो ग्राहक जाए देखिए एगो लोटो जैसे हाई लोटो आवा ओके पसंद पर रहता तो चाहेला पूछे के एक लोटोआ के घाट मिलास ओकर सब चीज फिटनेस सब देखे के चाहेला।
0: तो गाड़ी के खरीद मतलब खरीदारी खातिर एगो व्यक्ति के कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहेला आने के,
3: जैसे जाना सर हम इम्पोर्टेड सेकंड हैंड गाड़ी की बताते हैं सर, अच्छा जाने के कौन लालवा के जी घीसी करेला है, जैसे हम के कंज्यूमर प्रोटेक्शन व इम्पोर्टेशन ऑफ सेल्स एंड सेकंड हैंड मोटर व्हीकल बा रेगुलेशन दे मिलकात की है, उसमें बोलेला कैसे बिज है या जो जो व्यापारी है जो ऑथोराइज डीलर है कौन कौन कंडीशन में चाहेला उनके पीएमई रह के एगो एगो जाफा डिमार्केशन करत है। हमने हमने कंज्यूमर अफेयर्स है सर एक बार थ्रेड डिवीजन में वो लोग पीएमई देवे सर, हमने जिस देख ला कौन से माती है कि जैसे बोली थ्रेड डिवीजन वो देवेला इम्पोर्ट पीएमई देवेला कौन सी कंडीशन लेके वो लोग के लालवा के दौरान से, तब वो बोलेला कुछ यहाँ जाने के कुछ बोलल जा रहा एगो मोटर व्हीकल आगे कुछ बोल जा सेकंड है मोटर व्हीकल, जैसे जाना सर वो ताफिकाक बोला मोटर व्हीकल बोला जाए एगो एगो मासिन जो सीमा में सर्विस कर सर जैसे कि पेट्रोल से ताजा लाइसेंस रही या डीजल रही उबिया एगो हाइब्रिड रही उबिया एगो इलेक्ट्रिक है मोटर व्हीकल है। अब सेकंड हैंड मोटर व्हीकल कुछ बोल जाला जो मोटर व्हीकल हुआ हमने के को लालवा बा मोटर व्हीकल कुछ बोलता सेकंड हैंड हमने के गुलाल बाबा पिछाल गुलाल बाबा कंस्यूमर प्रोटेक्शन कंट्रोल इम्पोर्ट रेगुलेशन दे मिल जिसे उमें बोले ला मोटर व्हीकल कौन चाह रहे कि एगो मोटर व्हीकल सेकंड हैंड रहेला तो बोले जाए रिकंडीशन है यूज है दूसरे पे ही में लुटुआ मासीनुआ से भी करल बा तभी खातिर जैसे हमारे कोलिग बोला एगो घाट पर होला घाट जैसे

0: la loi bolivienne quoi contre le import brûlé qui la loi même brûlé là qui véhicule loi tiens là motocor et que 18 mois à 4 ans qui fou chez toi mais en machine que dans ça là c'est que tu en es que ou que tiens là ou que maintenant là quoi data registration ou le cas shipment ça ou que tu as right hand drive et que left hand drive non right hand drive ou les good running condition là ou les control ou d'une quand ça va कौन पे ही साला जब लापता हमने के व्हीकल था जापान सावेला तब जापान में कंडीशन अटासे है जैसे जो रेगुलेशन बोले कंट्रोल इंपोर्ट है वो एक सेजुल बस सेंक आसिस वो कम में बोले ला कि ऑक्शन सीट बोला जला चला जाने के ऑक्शन सीट कुछ है और पीएसआई सर्टिफिकेट कुछ है मतलब पीएसआई बोला जला प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट कुछ है लोग लोग चाहे जाने के ग्राहक लोग कौन सी है कौन जाफे है कुछ किन सब तब जब भाव व्हीकल हुआ जापान में
1: कंडीशन चाहे ला ध्यान में रखे कि
0: तो हाँ बताइए जब ऑक्शन सीट रहेला और प्रीशिपमेंट सर्टिफिकेट रहेला और ये लोग चाहे जो ग्राहक दल के हाँ एक जैसे बोलते हैं हम जैसे बोलते हैं ग्राहक दूसरा बोला था तो ग्राहक लोग कंपन है कुछ है तो वो खातिर हम तो डेटा में बोला था कौन सी है वो कंपन है जो एक बेसिक नॉलेज मिली कौन सी हाफे हुआ जब व्हीकल आवेला जापान से तब उकर में एगो ऑक्शन सीट रहला जैसे जाने ला एगो व्हीकल जब से अवील हुआ डीओ में तो नहीं जानो किसी से अवील बा तब हुआ से आवेला को बीडिंग में ऑक्शन है बोल दिला आवेला तब कंपनी के नाम सब रहला कुछ बा व्हीकल में तो ऑक्शन सीट में वो बोले ला व्हीकल के लेता कैसे बा ओ बियन तनी सुन प्रॉब्लम अभी वो एगो तनी सुन स्क्रैच बा काबूसे हुआ बा सब आवेला ऑक्शन सीट में तो हवे बोले ला कहाँ पर अब ग्राहक के बोले बोला ग्राहक मौसला 3% लाला बोले ला 3% से लाहुआ ने किसान व्हीकल दोन ग्राहक ग्राहक 3% कुछ बोल जा एगो ग्राहक जो मैं सकिला तेरी सुन सब लगे ये हुई तेरी सुन काबू से हुई ये 3% बोला तब मोटी हुई ला तब सैंक का बोला ग्राहक सैंक तो वे हाँ सब ग्राहक चाहे देखे कि ऐसे ग्राहक सैंक वो व्हीकल निवन कंडीशन में है वो कमे ढेर प्रॉब्लम और ढेर सेव नहीं हो रहा और इच्छा जाए ना कि वहाँ पर हाउ पी हुआ मैं व्हीकल कुछ कुछ से भी होगा वो भी एगो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एगो रेंटल डिपार्टमेंट है वो भी एगो इंडिविजुअल से व्हीकल बाकर यूजबिलिटी से जब जाना सब घाट व्हीकल कुछ है घाट हुए पर देवेला तब एगो दूसरा सर्टिफिकेट वो भी पी एस आई पी शिपमेंट इन्फेक्शन सर्टिफिकेट बदल वो कहे बदल जा जब ऑक्शन हो जाला बीडिंग हो जाला तब चला वो इंस्पेक्शन करके जो उकर मिलाज अच्छा बा उकर सासी अच्छा बा उकर इंजिन नंबर अच्छा बा या और ओकर भीतर के इंटीरियर कैसे बा मूर्तियाँ कैसे बा सब हमें बोलेला कौन चीज होगा तो हाउ जैसे लावला बोलेला ओके छा जब जब शोरूम में एगो शोरूम में तो लुटुआ में विंडस्क्रीन में छा डिस्प्ले करके ऑक्शन सीट और ओकर प्री शिपमेंट सर्टिफिकेट ओकर में बोली लुटुआ के ओकर मॉडल कौन कुले है इंजिन नंबर है कितना मिलाज कर लेबा तो एगो सर्टिफिकेट होगा कि ओडोमीटर फालसी नहीं होगा निमल है तब हाई सब इंफॉर्मेशन चला जाने के तब कुमोसो से सब बुटन खाया ले ली तो हाई सब डिस्प्ले रही जब जब कहूँ पर कि नहीं था तो अमिया जाए तो कौन कौन छा ना तो हुई खातिर हम बोला था और देता है कौन छा कौन चीज चाह देखे के जब जब देखे तो चाह देखे कितना मिलाज बोलवा मिलाज चाह देखे को प्रीशिपमेंट सर्टिफिकेट में प्लीज छा देखे कि मिलाज लुटू में इंजिन नंबर देखे कि छा लुटू में कौन पहा करके तो सब एगो शीत बा गो दूसरा नहीं बोलो लुटू हमें गो दूसरा नहीं बोलते नहीं सवाल गोलम जाए हर कारण ग्राहक से बोल रहा सर कि हर सब चाह लोग जान के कौन छा कुछ है गो ऑक्शन कुछ है गो प्रीशिपमेंट सर्टिफिकेट कुछ है गो एक्सपायर तो विनोद बोला जा डाले के कौन फ्री है कौन लाने है कौन घाट है जैसे घाट के ढेर आदमी नहीं जाने कुछ है घाट जो गर्मी लुटो कहीं जाए तो देखिए एक लोटे की नाथा है जब मैं किसी एक लोटे पर गोली करके समो हाँ सब ऐसा मार्शल हाँ ऐपोटो हाँ जिस फिर से आए ला प्रोटेक्शन कंस्यूमर्टे के द्वार राइट इनफॉरमेशन इस आए ला पारी या इनफॉरमेशन मिला था ना तब एक डिसीजन ऐसा किन्हें के ना यार लोटे किन्हें के एक बार का फाइनेंशियल डिसीजन है एगो लुटो कि नहीं के एगो इजाफे नहीं किया था सुबह में तो एगो छा सोच समझ के एगो डिसीजन ले के दाप बीजे से अगर इन्फॉर्मेशन हाँ मिली जब हम वहाँ जाए बता डील हुआ तो इन्हें बोली ना हाई लुटवा लेला हाई लुटवा तो नहीं जाना कुछ होता कुछ नहीं हो जाए बसा तो वही खाने बोला सर ग्राहक लोग के पारे आवेला लोग के द्वार जाने के ऊपर द्वार इन्फॉर्मेशन मिली तब से किसको लुटो कि नहीं
1: जैसे जी हमने के सकबा बताओ शोरूम के गाड़ी और ये एयरपोर्ट कर गाड़ी अंतर कौन सी है
2: शोरूम के गाड़ी जन बोले जा दोनों लुटवा शोरूम में मिलेगा एगो जन इम्पोर्टेड सेकंड हैंड का है एक नमूए है सेकंड हैंड से ताज़े ou des asservis holba ou

0: showroom ha un naya gari. C'est-à-dire, naya gari veut dire jaise l'atelier, workshop, mais c'est direct. Kabo ne servi holba du sar country, mais du sar desh, mais ne servi holba. Tandis que Rikon, jaise, sab log jane lang sa Rikon, ou servi holba du sar pays, mais tab, isab, tab Maurice, mais importé holba.
1: The man le koi ego importe tab ego gari importe karwata ta u kaise jani ki u gari sahi ba ki nahi
0: jaise hamar colleague bola china dekhi ke pre inspection certificate or auction certificate is sab document ha mein sab ki baatein affiche baatein जैसे एगो गाड़ी देखबा तो सकेला दूसर देश में एगो एक्सीडेंट कर लगबा तो एक्सीडेंट वो लोटोआ में बताए कौन बगल तापे होल बा कहाँ स्क्रैच बा मायने है कि एगो बड़ा रहल सब चीज है सब सर्टिफिकेट वन में बाते यही चीज वन चाहेला ग्राहक लोग जब जा लंग सर शोरूम में चाहेला देखे के निमन से ये सब चीज वन तब एगो डिसीजन लिए सर जैसे बा ओकर मिलाज कोनो के दिक्कत ओकर मिला थोड़ा ज्यादा बा मतलब कि दूसर देश में ज्यादा रूले होल बा कोनो लोटो के मिला जा कमती बाते
1: जब कबो कोनो समस्या पर गल बा कि मतलब ओकर मिलाज पर ओकर लाज पर जितना कि कोनो प्रॉब्लम शिकायत दर्ज कर गल बा कोनो ग्राहक से
0: हाँ ये सब लोटो पर मिले ला शिकायत तब इंस्पेक्टर लोग जा ला देखे लंग सा मैं से माँ किने के आगे जब अपन निमन से जांच कर लेबा तब किन लेबा तब उतने प्रॉब्लम नहीं हुई
1: अच्छा लाभांतर दे जाव लाभ हानि दोनों में होला
0: हाँ दोनों में होला
1: तो कैसे न कैसे लाभ कैसे न लाभांतर
0: कबो जैसे गो नवा लोटो जैसे बोली ला सा le toit t'en connais rouler roulba j'ai brûlé carbata tab janba ego problème ha tab irresponsabilité ha showroom par dire que problème d'origine hoy ta au log de le toit qui réparer carien ça pièce sans carien ça ou bien le toit net ça kabo kabo de kap ça le toit net sans roula pareil second hand véhicule que pareil j'ai break ba ego j'ai ori hu c'est l'agrément j'ai c'est ça ou même ego contrat जैसे किन बात है कॉन्ट्रा शोरूम दे वेला वो कॉन्ट्रा में लिखल बात है वारंटी कितना है
1: हाँ
0: वो लोग वारंटी दे वेलंग सा अब वहाँ डिपेंडर वारंटी पर जो तो हर प्रॉब्लम हो बा जे कब वारंटी कुवर करेला ऊ बे कब गारंटी जैसे बोले ऐसा नहीं कुवर होला अब लापी पर जैसे बोले ऐसा वेयर एंटी है इस सब पर गारंटी नहीं आवेला गारंटी कब आवेला मुते पर डिपेंडर शोरूम कौन गारंटी दे लगभग कौन लोटो पर और ये तो के कौन प्रॉब्लम होता तब ये सब चीज़ वन चाइना जांच करके निमन से तब देख बा कबो कुवेर होला गारंटी ऊ बिया कुवेर नहीं होता थी
1: अच्छा और 402-808-5 पर हमारे श्रोताओं दर्शकों का अगर कोई जवाब मतलब सवाल हो या फिर विचार बेझिझक हमें फ़ोन कर सकते हैं 402-80-85 पर
2: तेर जा मौसी तेर जा उतरे द मौसी उतरे द जगह नहीं बा मौसी विश्वा में जगह नहीं बा
3: ले ल बाबू ले ल तू घंटा से खड़ा है खरे खरे ले ल

0: आज की चर्चा।
1: इस कार्यक्रम में आप सबका दोबारा स्वागत हम करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेड सेकंड हैंड कार्स की बिक्री और उस पर लागू रेगुलेशंस। तो जैसे एगो नवा गाड़ी खरीदबत ओकर फिटनेस वगैरह 7 बरिस के बाद होला, तो एगो एम्पोते कर गाड़ी के फिटनेस कैसे होला?
2: एगो गाड़ी एम पोते होला तो एगो कौन जी हन जिसे बोली हन के एगो यूनियन बा ट्रेड डिवीजन उ सब देखेला एम्बो कैसे करल जाला। एगो दूसरा लाला पर कहला तब हमने देखेला सर जन जन का जो गाड़ी शोरूम में चला बा फिटनेस कैसे होला। जैसे उ लादवान के जब निकाले लंग सर बंदे तो वेयरहाउस में तो लोग आने लंग सर तब फिटनेस वो लोग ये करे लंग सर हाँ भैया उतराज दिलवा शोरूम में वही फिटनेस करेला। तब फिटनेस कर देवेला तब बोले ला फिटनेस होकर बात तब बोले ला तब हम लास रहा सब बोला हाँ बोला तब एक दफे बोले कि चाहिए कि जब एक आदमी जला एगो लुटो कि नहीं तो एक प्लस यहाँ देखे चला सगो देखे कि कैसे देखे चाहे वो कोमो जीते सैंप नहीं है वहाँ ढेर चीज़ों को एसोसिए है। जैसे ताले बोली लोग के घात बल है कि कौन लाने है कौन मुआ है कौन कौन घाटों को दफे पूछता हूँ घात और वारंटी दो दफे डिफरेंट। जब एक आदमी को लुटो देख लेला कि नहीं के तो एगो सेल्स एग्रीमेंट सी करेला थ्री देवा लगे हो जाए उतराज दिलवा लगे कि तेल तेल तो किने था तो चला देता लुटो मिली हाउ में और हाउ में बोले एगो गारंटी देता गारंटी लाला बोला गारंटी देवेला तब कुवे को बोला गियर बॉक्स हम जब बड़े विटेस और कोई बोला बन अदर पर्ट्स को धोला डिपो हाँ जैसे कि हमारे को एगो एक्सपीरियंस हम जहाँ को लुटो कि नहीं हमको बोला गियर बॉक्स पर ऑल ऑल पर्ट्स एनो के दिला गारंटी डिपो कौन कौन शोरूम और आदमी लोग जहाँ जाए कि देखे कुछ कि ना चाहता हर मिशन बोला सब जब एगो दफे किन लुटो फिर से बचे लुटो तो एगो गाँव डिसीजन ढेर पैसा लगेगा

0: फाइनेंशियल डिसीजन रखी नहीं के चाहे ना आप लोग चाहे देखे के वो लोग के हिसाब से कुछ करिकुलम सा एक लोग तो जाए अब रजिस्ट्रेशन जैसे डिक्लारेशन बोला d'après CC avant sinon qu'on qu'on puissance au spawa c'est à dire on va 1000 au tapé calé là au 15 au tapé que 10000 tapé calé au cas hisab se tan dekhe ki premier affaire dekha le toba mein premier affaire boli chana certificat re ke kon grade kuch dekhe ke le toba existe grade ou ne boya le toba acha ba kinala grade bela huma kaise grading lan sa di home a maurice ai ta existe jese jese botai d'un dealer bola ta hai le toba le hai ou ne tri fosse ke ko le to le ke to ke chana ko decision le ke ab jese boli ab jai ba le to kine ta dou option ba ou bien cash le ba ou bien ego leasing gal bas pa ego loan le bas ko tab hai sab ke chahe na niman se dekhe ke kon chi kina to kon chi ab ego ego jab jab ego loto reserve kare ho dekh le lago to koi boi la 10000 pe kare ke koi bila 20000 pe kare koi bila 50000 pe kare ke ta ho 10000 wali konte ho la pri le to initial d'un la fait d'un pay kare ho include la tab ab pafe ko ka ho la jab reservation kare de lang sa 10000 pe kare sa तब एक लोन के लिए अप्लाई करे तो लोन नहीं आप बोला तब कुछ तब उगे छा पूछे कि कु मौसम हुए से इसकी जो है जे जिसमें पे कर था रिजर्व करे के जे हमारे लोन आप हुए कुछ खराब वो भी रिफंडेबल है या नहीं रिफंडेबल है तो छा पूछ ले कि जब नहीं रिफंडेबल है तब तोर पर निर्भर बा कुछ करवा लेबा पे करवा तो दो दिन को प्लस गली समझ qu'on passe bien à 10000, qu'on passe bien à 20000, qu'on passe bien à 50000, qu'on la loi ne va pas par. Tu tout le que tu as dit que quand tu budget ke hisab se to ke loan mili aur how gari wa ke price to budget ke within limit mein ba ki nahi ba ya ko dusra gari swazri kar jis wala consumer ke ke right to choose ba na to swazri ke na how showroom sa hai showroom swazri ke na kon lute chahe la tab ukar hisab se kinyan sa tab aro ko zafe ba ki lo ke chala ko je ko test drive ha sense ko test drive kare lute wa se parce que is showroom cha dekh ke jitni khade cha cha dekh ke
1: nahi chahe
0: ise ye kare ke वेहिकलों में कुछ है देखे कि चाहे उकर इंजन नंबर सासी नंबर सा है भाई एयरपोर्ट है ओके चला कौन लाने है कौन पूरे सब चाहे रहे कि तो हाउ जब जब सेल्स एग्रीमेंट तक करी तो पीएसआई सर्टिफिकेट तो और उसका सेल्स एग्रीमेंट तक पारे चाह रहे कि और वेरीफी कर इंजन नंबर पारे बाकी नहीं बस कि वो कंपनी है जिसे बोला जेविक बोला ऑन डू जो मुझे मतलब एक जीवामिक बा और दूगो इंस्पेक्शन करना व्हीकल वाला कि जब ऑक्शन में पास हो जाला तब वो लोग ओडोमीटर रीडिंग दे वेला कि पारे रहेला सीट वा में जो डिस्प्ले कर वाले तो पर रीडिंग वाले का ओडोमीटर मिलास देखा अच्छा बा कि पारे बाकी नहीं जैसे कि डिफरेंस जो प्रॉब्लम हो जाए अब बोलता कि नहीं रहता तो हमने के एगो एगो काम मिल रहा कि एगो एगो आदमी को लोटो किन लेवा तो को मिलास दे रहा तो फिर पीएसआई सर्टिफिकेट में और ऑप्शन शीट में एगो एगो और को पापिया होला और को सीरियल नंबर ला सब इंटर एगो वेबसाइट में हेल के चेक करे सच्चे वा मिलास हो या झूठ बा तब बोले लंग सा मिलास ढेर जसी रहा तब हु जब बेचा था तब बता इतना वा नीचे बा तब को प्रॉब्लम होता आदम या गूगल पे ओपन रिसर्च कर लग तब देख लग तब गई सा चेक करे तब है कि सो ट्रेड डिवीजन डाला और लोग से इंपोर्टेड होता था हम लिखे रिफर हम लिखे मैम मिनिस्टर में हाँ तो कि सो के रिफर कर लिया अब लोग देखें तो कौन प्रोसेस जा लाखों के नुसा तो है सब जाने के ग्राहक लोग के देखे कि अब अभी ये मौके कर बा अभी हाँ भी है लिखूंगा मैं जब शोरूम में जब बता देखा ढेर मिला से लुटा था अब लाओ सा कौन मिल के मिला था तब चाहे देखे कि सब चीज तब मोहते होगा ना तो वही खातिर एगो दिले लोग लुटो आना था फिट करेगा बजट के ग्राहक लोग के तो खातिर बफा मिलास और पफा लाओ 100000 है मिला पफा 14000 है पफा 20000 है पफा 50000 है उसके हिसाब से प्रीवा हो रही होला और डिपेंड ऑप्शन लेते हैं मैं कौन कौन ऑप्शन बा वैसे जब एगो लेते हैं किनबा ओकर पैकेज है सबा X है सबा G है सबा सबा प्रीमियम है सबा डिफरेंट वर्जन और के प्री वो रही होला मेम मॉडल से प्रीवा वो रही होला सर कि लागो 50000 125000 75000 तो तू के चाहे देखे कि कौन कौन चीज किने को होता ला फैमिली कुछ किने होता कितना बड़ा फैमिली बा सिपा इंडिविजुअल हवा सिपा दुगल मी हवा कैसे लो तो कुछ सेवी का बहुत के बोले कल बा या कुछ वो ट्रिप का कर दबा गाज में तो वो इन्वेस्टमेंट धन आज सब बोलो तो किनके डिप्रेशन ला अगले तो से किनके गाज में समझ रखे इतना सेवी करके ना डिपा लोग के बीजो कर देखा कौन के बीजा में लो तो आगे बोलो तो अब देखो लग्जरी ने रहा आगे रहा अब देखो नेसेसिटी जब बच्चा चलो पिता है ट्रांसपोर्ट सब कहीं चाहे घर में लेके जैसे कोई इमरजेंसी हो तो वहाँ जैसा कैसे सर्विस करें
1: अभी जब कुछ दिन पहले बोले एनरजिस्ट्रेमेंट तब जब एक इम्पोर्टेड वाली गाड़ी और सेकंड हैंड और जो

0: इसने बात में रोड वर्सिनेस बा सा फिटनेस अ फिट फॉर द रोड बा कि नहीं आज सब चाहे देखे कि आगे रोड तो कि नहीं
1: तो लेसेंस और ये फुल इलेक्ट्रिक गाड़ी की डिफरेंस कौन सी है
2: ना डिफरेंस कैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी तो इलेक्ट्रिसिटी से चली और कोनेगो बैटरी बाते एक्सेट्रा तांजिक लेसेंस के गाड़ी नॉर्मल लेसेंस फीलिंग में जाया लेसेंस डालिया और ये इलेक्ट्रिक और ये लेसेंस में प्रियो के एगो फर्क बाते कबो देखिला सा इलेक्ट्रिक के गाड़ी जस्ती मंगा है बस कि ऊपर में नवा टेक्नोलॉजी है नवा चीज बाते और लेसेंस के गाड़ी तो
1: नोमा तो जैसे जानी ला जाए गो हाइब्रिड गाड़ी दोनों यानी के लेसेंस और बैटरी से चले जाता तो सही में इकोनॉमिक है इस सही
0: इकोनॉमिक है कैसे होले का तो ना बेबो अब होलो तो लाओ 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर वो इसमें तो 110 अलावा दसी तो 100 किलोमीटर दसी देखो ना हाँ तो दीपक कैसा दिमाग होले का था ये बुकी जाने कौन सा ये बुकी था एगो एगो टेक्नोलॉजी है जब एगो लिसेंस से सेवी कहला तब बैटरी के चार्ज कहला तब बैटरी वा चार्ज लो तब बैटरी और लोटवा बैटरी से बिकला तो हम ये को हाइब्रिड रूले कही ला हम के लोकल को इकोनॉमी है इकोनॉमी हमारे एक्सपीरियंस बोलते हैं हमने सबके एक्सपीरियंस कैसे बा वो डिपेंड कैसे रूले हुई बा तब हाइब्रिड में एक लामोटा सा जैसे बोलिए सा ग्राहक लोग के चाहना जाने कौन सी खोते हैं सा एक लिटर एक लिटर चाहे ला फुली लेसेंस अब जैसे लेसेंस रूले ला ou bien इकोनॉमी का तो सा हाइब्रिड और ou bien इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक बन जाए ना चला को चार्ज करें घरे चला पोर्ट डाले के एक चार्जिंग पोर्ट छा डाले के एक नुवो का है इलेक्ट्रिक इंस्टॉल करें के तब चार्ज करें के तब जैसे ना था पेट्रोल के प्राइस तो चढ़ते जाता तब आदमियों के पहुँच के ना हाइब्रिड में चला जाने के जाए जैसे लोग के सेविंग करे तो वो लोग कुछ पर निर्भर है कुछ कौन कहते मशीन के अंदर सभी ना
1: और याद रखिए जानकारी ही कंज्यूमर की सबसे बड़ी ताकत है अपने अधिकार राइट्स को जानिए और सवाल आप पूछ सकते हैं बेझिझक हमारे इस प्रोग्राम के अंतर्गत 402-80-85 पर

0: हमारी दो अतिथि हैं आज स्टूडियो में, श्रीमती बसावन सुपोल और श्री मीटू जी। तो जब कंस्यूमर जो है डीलर से सेकंड हैंड इम्पोर्टेड का खरीदता है, तो डीलर को बायर को कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना लीगली जरूरी है?
1: जैसे लालवा बोलेला, उनके लालवा सेक्शन 12 बोलेला 12 नंबर 4 की बोलेला कि एगो डीलर जब एगो लोटो बेचता ओके छाला ओकर लोटोवा में जहाँ पर ओकर डैशबोर्ड बा उसमें कहाँ पड़ी छाला ओके एगो जिस तरह बोली ऑक्शन शीट बोले जा कहाँ लोटोवा कहाँ पड़े आलबा कहाँ से किनाल बा प्लस एगो सर्टिफिकेट इंस्पेक्शन हो बा वहाँ पड़ी कि लोटोवा फिट बा रोल होके तब हर सब तरह डाले के प्लस ओकर फ्री डाला डाले के कितना कुत्ते होता ओकर ग्राड छा डाले के पी एस आई वा में ग्राडवा मिली ओकर में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिली कब लोटोवा बनल बा कौन लाने बनल बा कब कितना होगा इंजन नंबर सासी नंबर यहाँ पर बेह पता है बस कि हवाई तो चाहे वेरीफाई कर लुटवा में वो तो पी एस आई में सके वो एरिया हो जाए मेरा एरिया होला ना बिस्मा एरिया होला हो सके हो जाए चाहे वेरीफाई करके ओकर जैसे बोले वो ग्राहक जैसा कोई तो कि नहीं ऐसी चाहिए गुल बोले लुटो बिजामा एक लुटो उठा के चलाए उसे नहीं अच्छा सब चीज वेरीफाई करी जैसे तारा बोली ढेर ढेर आई बा ढेर सुहा बा लुटो ढेर का ही थे बास बा एस वी बा ची लुटो बा लुटो नोमाल बा ऐसे सब कहते लुटो बा वो लोग देखे कि चला कौन लुटो सब लुटो में पारे हुए अप्लीके होला जिस लुट बा लुटो में डिफरेंट रहेगा हमने सेलम मोटो कॉल बता सा लुटो के तब वो लोग चाहे सब देखे प्रमी दाफेर हाई जब दाफेर लोग के स्क्रीन में नहीं डाली था डीला हुआ जो एम पुताते हो जो लुटो बिछला जो लोग एक लुटो में नहीं डाली तो वो कौन था वहाँ से डाला बस कि भाई सब नहीं डाले लालवा बोलेला और ऐसे छाना डिस्प्ले करके आफिक्स करके लाला बोलेला बोला छाना उनके डाले के नहीं डाली तब वो कौन था
0: कॉपरेट न करी
1: हाँ न तो वो कौन था वहाँ से जला केस वाला लाखों जला तो सकेला लामान स्वामी को जला तो थोड़ा सा प्रिजन वाला तो वही खातिन चाहे है सब इंफॉर्मेशन छाना दे कि ग्राहक आल बैगो की दे फिर सब होते हैं ऊपर राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट टू चूज इंफॉर्मेशन मेन ओकर आधार से ओकर देही कुछ की नहीं तो सब इंफॉर्मेशन था देगा प्लस जब एगो आदमी नहीं जाएगा जैसे हमने बोला सा जैसे बोले सा आदमी तो ढेर चीज नहीं ला कुछ है वो घाट कुछ है वो ऑक्शन चीज कुछ है वो सा वो लोग चाहे जाने के जिन्हें जाना तो जैसे प्रोग्रामा करते सा जे लोग नहीं चाह सके हमने कोई तेरे फिर के सब सब बोले कौन सी बात कौन बोलो जो चला के नहीं कहाँ चला के नहीं कहाँ नहीं बोले सा कौन सी चाहे देखे के कौन सी सब चला देखे पढ़े के जहाँ सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो नहीं कि नहीं पैसा चाहे तो मिले के बस उल के चाहे लालोवा में बोला चाहे डिस्प्ले करके ओकर हिसाब से वो कुछ चाहे किने के लिए तो ऐसा मिलेगा प्लीज चैनल को पूछे के जब एगो लोटो स्वास्थ्य कर तो कुछ करब सा एगो एग्रीमेंट मिलब सा एगो सेल्स एग्रीमेंट मिलब सा लोटवा के लिखब सा कौन ग्राहक अच्छी बा और चाहे लिखे के लोटवा के जिस भीतर देखे चला नहीं सोली रिलाय करके कि जो थ्रेडवा बता ना हाई लोटवा लीला हाई लोटो लीला हाई ट्रेंडी बा हाई ला तो के कोई फोर्स ही नहीं करी एगो लोटो किने के तो लालवा फैतेगा मिसलीडिंग मिसलीड करके फोर्सफुली एगो ट्रांजेक्शन में तुके नहीं सीखे लाए बस तू सब स्वास्थ्य करा वो तुके साथ बोले इन्फॉर्मेशन दे

0: Bukan air pemas, tapi udah aku decision lah. Tuk ni boleh hai lu tuan lelak acaba, hai ta lamut ba, hai acaba. Tapi sih naik tu graha kawat jatuh lu tu kini, tu biji ke hisap sih. Tapi gua tu suasai kalau dia sih confident, tapi tu family ke kuch kalau dia tu tuan sih, jadi gua tu sebab business kalau gua tu ke family kau hari, deh paha. Hai sebab air pemas tu tuan dek. तब जाए चला जाने के कब फिटनेस तो उग तो बोली कितना था दे के कितना कितना कुत्ते हो ही लुटवा जब लीसिंग कर बस पा काश पे कर बस कौन कौन कंडीशन हो उस तक चला को बोले के तब इनफॉरमेशन दे तब से बस जाए किने लुटवा
1: इसमें जोर बात कुछ होगी में
2: जैसे हमारे कोलेग बोला कि सब इनफॉरमेशन वहाँ इम्पोर्टेंट हैं जब ये गुलटो खरीदे जाएगा और ये आगे कुछ चाहला जैसे ये हर प्रोग्राम में बोली सा अपन बजट के अनुसार लोटो एगो छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है एगो बड़ा इन्वेस्टमेंट है एगो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कोनो कोनो ग्राहक लोग लोन लेके लोटो की नहीं लग सा जैसे बोले सा लीसिंग तो ये सब देखे के चाहला जे अलालोंग जब एगो लीसिंग ले वत हुआ पाँच बरिस के सात बरिस के तो अपन बिजे के अनुसार लिया
1: और जैसे हिडन डिफेक्ट्स जो है उसका जो इशू रहेला वो बहुत कॉमन रहेला कॉमन कंसर्न तो अगर परचेज के कुछ दिन या वीक्स बाद मेजर मैकेनिकल प्रॉब्लम मतलब सामने चला तो कंज्यूमर की कौन अधिकार है कंज्यूमर की कौन राइट्स
0: है तो बोली एक साल को वारंटी रहेगा
1: हाँ
0: वारंटी में व्हीकल के डिटेल रहेगा और बोली ला कुछ कवर करता जैसे कोनो कोनो बार बोली ला ऑल कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स कवर्ड बाय द डीलर प्लस इंक्लूडिंग गियर बॉक्स बोली ला कोई में बोली ला तो चलो कि जहाँ जाने के जो प्रॉब्लम बोलता जैसे एनो में गारंटी बा लुटो हमें किन लेगो सेकंड हैंड तो दूसरा में कहना चाहिए हाथ नहीं चलता है कि वारंटी वाला वॉइड हो जाए वारंटी वाला नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वाला रही तो एनो में कितना दिया था हाउ हाउ लिप कौन कितना प्रॉब्लम हो तो थोड़ा डील लगा के देखेंगे हाई इन्फॉर्मेशन जब कुमार सब किने जब लुटो तो सब चीज़ पूछे कि प्रॉब्लम हो कुछ करब हिया नब हमारे को दूसरा गाज बा हुआ गाज नहीं उसके वो गाज आप लिए बा कौन भाई हुए कि हाँ सब चीज़ पूछे कि तब एगो प्रॉब्लम हो तो वो लोग के समझ गया वो लोग के वारंटी में लिखल बा कंडीशन नीचे सीए कर बा वो तू सीए कर बा पर हाँ गाँव चो अब जब बोले ऑल कोस तो चला पूछे कि ऑल वा कुछ बोला जला ऑल वा वाक बलो छा बोले कुछ बा लाहू बा लातुल बा ला पेचे बा मुतिया बा कुछ बा बोली अब अला बा और इंटीरियर बा कौन सी बा सर पूछे के तो को बोली तो स्पेसिफिक कर के तब भाई छा बोले के तब आर को जाफे बोले चाहता है कि एगो ऑथराइज डीलर कौन सी है एगो को पीएमई मिलल बा को इंपोर्ट परमिट मिलल बा ओकर एगो बीआरएन बा ओकर एगो प्लस बा बेला फिजिकल एड्रेस बा वहाँ पर जहाँ पर बिजनेस वा करेला ओकर एगो शोरूम बा लाला बोले ओकर एगो शोरूम चाह रहे के वो भी एगो एगो यार्ड चाह रहे के शोरूम बा के भीड़ी एगो क्लोज यार्ड रही फेम है रही हाँ मैं हूँ मैं पर अपन लोटे चला एक्सपोज करके ओकर शोरूम में भीतरे बा बन बा या ओकर यार्ड में ओकर यार्ड के अलावा और शोरूम के अलावा कहूँ नहीं सके लोटो एक्सपोज करके लाला बोले ला जैसे एगो आदमी आए लोटो किन बा शोरूम वाला बोला लोटवा हिया ना बागो दूसरा प्लास बा अच्छा जाने के कौन प्लास इसकी उछा लोटवा तो आगे रह के अब लोटवा आए तो बोलिए लोटो किन बा तो फोटो बताता था पूछता मैं हाई दिखाई लोटवा ना था हर ना था तब तूने जन मा कौन लोटवा होता था जो कोई नहीं कर दे सो आतंक का लोटवा तब तू ही देख बा तो आगे रही देखा लोटवा कैसे बा उसका कंडीशन कैसे बा पूछा तब डिसीजन लुआ एक को शोरूम ने जा सगलो सगलो जा देखा कौन कौन प्री मिला था जहाँ मैम वो दिलवा के हाई प्री बात डिफरेंट बा हुआ डिफरेंट बा तो देखा कौन तो बीजे के फिट होता हर के हिसाब से चाहे कि निके बोली डीलवा चाहे ना ऑटोरिजे इम्पोर्ट परमिट मिला मिसे को मैं सही डिसीजन से उसका सब कौनसा हम है और पेमी और पे कहला प्लीज ओकर शोरूम वहाँ के कभी है ना हुआ पर ही ऑपरेट कहला ओकर अलावा कहूँ पर ऑपरेट नहीं करे इस मुँह पर ही
1: तो एक छोटा सा अगर डीलर कार को एक्सलेंट कंडीशन या एक्सीडेंट फ्री बताता है लेकिन परचेज के बाद कुछ और पता चलता है कंज्यूमर क्या एक्शन ले सकता है
2: जब लोटोगा किने एक सेकंड हैंड इम्पोर्टेड का जैसे आगे बोली सर ये लोटोआ देजा से हैवी होलवाती तो कौन कंडीशन में दूसरे देश में से हैवी होलवास पाएगो लोटो एक्सीडेंटे है एक लोटो सकेला नहीं एक्सीडेंटे होलबा एगो लोटो जिस से भी होलबा दूसर पे में तब ये लोग रिकंडीशन करके मुकुस में एम्पोटे होलबा ते चाहेला जो जस्ती एम्पोटो हाँ हे सब ऑक्शन शीट और प्री शिपमेंट सर्टिफिकेट वन चाहेला इंस्पेक्टे करे के तब जनबा लोटोआ एक्सीडेंट फ्री हिपा एगो माइनस खाच बाते उबियन जूसर चीत बाते लोटोआ में

0: ई सब डॉक्यूमेंट वहाँ नहीं वेरीफाई करबा ले तो किन लेला तो ये बाद में प्रॉब्लम लोग
1: जैसे बोला ऑक्शन सीटवा में जहाँ डीओ होला ऑक्शन एगो बिड होला तब लुटवा मिलेला तो ऑक्शन सीटवा में एगो एगो एगो एगो एगो एगो प्लास्टिक खाबा डैमेज पा लुटवा में स्पा ओकर में एक्सीडेंट होल बा स्पा एगो स्क्रैच बा हाउ जैसे व्हीकल ओसनी बा ओसनी होल ऑक्शन में तब आवेला तब ऑक्शन में जब आवेला लुटवा जे हाउ हाउ लीटवा में तब किनाला तब हाउ लेतवा किना जला तब एगो इंस्पेक्शन लेतवा में तब इंस्पेक्शन के दौरान हाउ पी एस आई सर्टिफिकेट है आगे ऑप्शन छी तब जैसा पी एस आई बोलेगा प्री शिपमेंट प्री शिपमेंट बोलेगा आगे शिप करके मोरिस के तब आवेला एगो इंस्पेक्शन पान कंपनी इंडिपेंडेंट कर हुआ पड़ी जो ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है वो लोग देवेला वो लोग के कुमैच व्हीकिलवा छबा माइनस खाच बा सिपा उकर में कब दौते नहीं होलबा सिपा का बुसल बा हेने को तेने सुन बस कि जब कोनो शोरूम जा रहा तो बोला लुटुआ बता रहा तो के जैसे अनले बा आज इतीज बा मालंग बा नीमो लिखल बा हेने ने लुटुआ बोला आज इतीज ऐसे बा हिया हिया तेल तेल प्रॉब्लम बा जब लुटुआ किन लेबा तो लुटुआ के फिर से रिफर्बिश करके नितवाई करके दांत को उजर के बा लापेचे को उजर करके बा दांत को उजर के बा सब को उजर करके तब देला तब तो के चाह देखे के जो लुटुआ तो के बताएला कुमोस मो जैसे आलबा राजवान से निकल के आलबा तो चाह के देखे कौन कहाँ डिफेक्ट लोकल बा ग्राहकवा के तब जब लुटवा की लिवरेजन ले तो जहाँ देखे कि हाउ सब प्रॉब्लम जो दिखला कुमार एक प्रॉब्लम के आतेन होगा कोजो होगा कि नहीं जो नहीं होता जहाँ बोले कि वही कहना सब जहाँ देखे कि हाई सब के देव सा सब चीज प्रॉब्लम
2: होगा वही कब कब बोले जैसे कि सिपा इतना ले रूले मैं 400 किलोमीटर रूले कैसे जन्म मजे कि सिया सिया हुई बाकी इतना ही
1: इंस्पेक्शन होला तो कम ओकर ऑडियोमीटर रीडिंग में रहला ऑडियोमीटर में जला जो मिलाज को लिखो में रहला हाउ जो मिलाज बा जैसे बोला था लब लुटवा खुद दिख बता पी एस आई वा में मिलाज बा कौन लाने के है तब हाउ ओकर मिलाज हुआ ओकर छा रिफ्लेक्ट करके अब तक परफेक्ट को डिफरेंस होला का है जब हाउ मिलाज है जहाँ पर हुआ से अनाल बा हाउ मिलाज है तब आवला लादवान चलो तो आपके बोला घूले करके आने के शोकुम तक ना तब तेरे से मिलाज तो नहीं मोटो चला तब वह एगो डिफरेंस रही बस पापा लुटवान लोग काम में नहीं आए ना तो पापा घूले करके आने सब प्लाक टेपे लेके शोकुम सिर्फ लादवान से निकला पोली में तब तो शोकुम ले सीट में बताओ बुधवार पहले घूले के आगे ना मिलाज तो नहीं मोटो बोला तो चला उतना चला चला आएगी
2: और अंत में हमने के जितना कोई हमने के संगे बा अभी एगो मजे छोटा सुन प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन सी देबा जोन अभी मन बा प्लान कर रहे थे मन सा कि कुछ एगो लो तो किने के कौन सी बोल बा
0: हमी जैसे हमेशा बोली ला सर कंज्यूमर राइट और ही कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राहक के चाहे ला मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेके और ही वो लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब चीज़ वेरीफाई करके आगे तब जाइया एगो खरीदारी करी वो लोटो जैसे बोली एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है तोहर बजट के बड़ा भाग ले ले वेला चाहे ला जाने के लोटो की ना हो तो कौन पर्पोज से की ना हो रोज के रूले हो उबे वन ऑफ रूले हो उबे एगो फैमिली बिजनेस बातें तो ई कारण लोटो ले वत हो ये सब चीजवन जब कुमार जा आगे से प्लान कर लेबा तब जाइबा शोरूम में तब लोटो वेरीफाई सब हो तब एगो निमन डिसीजन सक बले
2: कौन ची बल बमी
1: जैसे प्रोग्राम को मौसम कर लीसा एडमिनो सकीला धर सब इंफॉर्मेशन नहीं जाना लग सा अब एगो ग्राहक एगो इन्फॉर्म कस्टमर गल बा जितना जो कंसुमाते इन्फॉर्मे जितना चीज बोल दी सा पहुंच गया था एडमिनो के लाभ उठाए सब लाभ होंगे तब हाई के जो जो इंफॉर्मेशन के मिल बा अब सेकंड से को बेटर डिसीजन ले कुछ किनियन सा आगे से जान सा शोरूम देखे इसने अब तो जाए ना सब चाह रहे कि नहीं रही तो नहीं लो अब तब अच्छा बा है प्रोग्राम दौरान उन लोग के इन्फॉर्मेशन मिलल अब लोग के नेक्स्ट परचेज करे जेन से खरीदारी सेकेंड से सब इन्फॉर्मेशन देखे सिपा चेके करे पूछे तब तब सेकेंड से को बहुत डिसीजन ले कैसे को इन्फॉर्मेशन मिली तक एगो राइट टू चूज कैसे स्वास्थ्य कैसे कौन सी छा किने के लिए उन लोग के बजट के हिसाब से
2: तो आज की चर्चा हमारी सामने ये बात आई कि इम्पोर्टेड सेकेंड हैंड कार खरीदना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है बल्कि कंज्यूमर के राइट्स उसके अधिकार और सुरक्षा के भी इसमें जुड़ा हुआ है इसीलिए ज़रूरी है कि गाड़ी खरीदने से पहले उसकी कंडीशन जैसे भाई ऑफिसर्स बोलन कर जैसे कंडीशन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स वारंटी और सेलर की इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह वेरीफाई करना चाहिए तो आप दोनों ऑफिसर्स को श्रीमती बस

पवन सुपोल जी और श्री मिथु जी, इन सारी जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमें पूर्ण आशा है कि हमारे इस प्रोग्राम से हमारे जितने श्रोता और दर्शक हैं उन लोग ज़रूर लाभ उठाएंगे। और जाते जाते फैजन टेक्निक पर हैं और उरुसा प्रोडक्शन साइका और जेनिश को उनकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक और प्रोग्राम तक हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: है, ये सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार। आपके साथ करुणा जी, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा, सभी को नमस्कार। MTCJC ने आज सुबह घोषणा की कि सप्ताह घुड़दौड़ शनिवार 22 अगस्त के बजाय रविवार 23 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। सप्ताह की शुरुआत में खराब मौसम के कारण और आज गुरुवार से सामान्य प्रशिक्षण फिर से शुरू होने के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए सरकार से सरकार साझेदारी के तहत एक बहुप्रतीक्षित MOU का आदान प्रदान किया जाएगा। पुलिस कैनाबिस के आयात की कथित साजिश के मामले में एक संदिग्ध की तलाश कर रही है। संदिग्ध का नाम शान कुमार चुलन है, जिसे मिथुन से भी जाना जाता है। वो लेमोन का रहने वाला है। जिस किसी के पास उसके बारे में कोई जानकारी हो, उससे पुलिस से संपर्क करने की अपील की गई है। पुलिस ने याद दिलाया है कि क्रिमिनल कोड की धारा 172 के तहत किसी फरार व्यक्ति को पनाह देना एक अपराध है। गुलशन गोविंद को कल बॉम्बो अदालत में पेश किया गया। कैनाबिस की खेती और मेथाडोन रखने के आरोपों के संबंध में उनकी जमानत पर रिहाई की अर्जी पर बहस की गई। पुलिस ने संदिग्ध की जमानत की मांग का विरोध किया। मामले की अगली सुनवाई सोमवार 24 अगस्त को की जाएगी। उधर पुलिस के IT यूनिट ने सांसद वेरोनिक लेगोविन के मोबाइल फोन की कल जांच की। ये कार्रवाई 155 किलो गांजा आयात मामले के तहत की गई। ये प्रक्रिया करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान सांसद और उनके वकील मौजूद रहे। इससे पहले वेरोनिक लेगोविन से पिछले सप्ताह रोजहिल के आतसू ने भी पूछताछ की थी। उन्होंने इस मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है। फिलहाल इस मामले में 3 संदिग्ध पुलिस हिरासत में हैं। गुलशन गोविंद, रविंद्र चिमाजी और डैनियल जोजे ओगिस्त, वहीं चौथी संदिग्ध यानी मिथुन चुलन की पुलिस तलाश कर रही है। विदेश में रूस के रात भर किए गए मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के क्षेत्र में से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हमले में 33 लोग घायल रहे हैं। हमले में अपार्टमेंट इमारतों और गोदामों को निशाना बनाया गया। एक अस्पताल और एक स्कूल को भी नुकसान हुआ है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद, नमस्कार।
2: Radio Musti. kHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: 10:03 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। श्रोताओ, आइए सेंट्रल एक्सेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। ख्वाब के रहने वाले निवासियों को जिनमें है मकाओ, ले बुशो रोड, SSR रोड, मिजिया ख्वाब के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि आज गुरुवार 20 अगस्त 2026 को इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्सिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल एक्सिस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। आइए भक्तिधारा कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा सादर प्रणाम आप सभी सुनने वालों को। कार्यक्रम है भक्ति धारा, भक्ति की धारा बहने जा रही है इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक रेडियो मॉरिशस पे। तो चलिए श्रोताओं, हम आपसे यही कहेंगे, जब भी जीवन में कोई नया कदम उठाएं, सबसे पहले गणेश जी का नाम जो है उनका हमें स्मरण करना है, क्योंकि गणेश जी हमें याद दिलाते हैं कि रास्ते में बाधाएं आएंगी ज़रूर, लेकिन

बुद्धि, धैर्य और विश्वास हमारे साथ हो तो हर मुश्किल हमें और मजबूत बना सकती है। तो इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान आप सभी सुनने वालों के नाम कर रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में।

0: चलिए श्रोताओ, भक्ति धारा इस कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। आइए ज्ञान चक्र कार्यक्रम हम सुन सकेंगे। और ये कार्यक्रम जो है मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर परिषद की तरफ से प्रसारित है और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य सुपाल जी।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस ज्ञान चक्र कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। अष्टमूर्ति तत्व का पहला श्लोक का अर्थात, हे जगदीश्वर, आप अपने तेज से समस्त अंधकार को दूर कर रात्र में विचरण करने वाले राक्षसों के मनोरथों को नष्ट कर देते हैं। हे दिनमणि, आप त्रिलोकी के ही हित करने के लिए आकाश में सूर्य रूप से प्रकाशित हो रहे हैं, आपको नमस्कार है। लोके तेम वेलमति वेल महांत मनोरभि निर्भासी कौच गगने अखिलतो लोके नेत्रम विभ्राताखिलं मता सुतमो हितमाशो पियोषी पुरपरिपूरित तनमास्ते। हे हिमांशु, आप पृथ्वी तथा आकाश में समस्त प्राणियों के नेत्र बनकर चंद्र रूप से विराजमान है और लोक में व्याप्त अंधकार का नाश करने वाले एवं अमृत की किरणों से युक्त है। हे अमृतमयी, आपको नमस्कार है। त्वं पावने पते सदा गतिर पुण्य पास्य कस्य त्वां विना भुवन जीवन जीवत ही तभ्य प्ररम जीव वीर्धि सजन्ति तुहु संतोषिष्टा हितं कुल सर्गं वै नमस्ते। हे भुवनन जीवन, आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव है। इस जगत में आपके बिना कौन जीवित रह सकता है? आप वायु रूप से समस्त प्राणियों का वर्धन करने वाले और संपुट लोकुलों को संतुष्ट करने वाले, हे सर्वव्यापी, आपको नमस्कार है। वैश्वं कपावनम्

0: पावकं शशे त्रिनिमित्तवातं वृदं दिव्यं काव्यां प्राणीयुष्टदो जगद्दोही जगतात्मनां स्वस्तं पावकं प्रतिपदं शमोदं नमास्ते। हे विश्व के एकमात्र पावन कर्ता, हे शरणागत रक्षक, यदि आपकी एकमात्र व्यापक पवित्र करने वाला एवं दाहिने का शक्ति न रहे तो मरने वाले को मोक्ष प्रदान कौन करे। हे जगद आत्मा, आप ही समस्त प्राणियों के भीतर वैश्वानर नामक पावक अग्नि रूप है और उन्हें पग पग पर शांति प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

चलिए श्रोताओं, 10:17 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। गुरुवार का दिन है आज, और आपको पता है कि इन दिनों जो है श्रावण मास का महीना चल रहा है। ऐसे में आपको पता है सभी जगह पर हम शिव जी को पूजते हैं और उनकी महिमा का गुणगान हम कर रहे हैं। चारों तरफ हम उनकी जो है गुणगान कर रहे हैं। तो चलिए, शिव जी हमें यही सिखाती है श्रोताओं की ज़िंदगी में हालत चाहे जैसे हो, अपने भीतर का संतुलन हमें मत खोना है। विष मिले तो उसे शिकायत नहीं, समझदारी से संभलिए। सफलता मिले तो अहंकार नहीं, विनम्रता हमें रखना चाहिए। जी हाँ, विनम्रता हमें रखना चाहिए, क्योंकि असली शिवत्व वही है जहाँ मन शांत हो और हृदय में प्रेम हो। हर हर महादेव इस मंत्र का जो है जाप आप करते रहे। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है आप सभी सुनने वालों के नाम।

श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम प्रसारित कर रही है चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। और इस समय श्रावण मास के संदर्भ में चंद भक्ति गीत भगवान शिव जी पर आधारित हम चला रहे हैं। वैसे श्रोताओं, शिव और पार्वती का प्रेम हमें यही संदेश देता है कि रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब उनमें विश्वास हो, सम्मान हो और एक दूसरे के प्रति सच्चा अपनापन हो।

0: चलिए श्रोताओं, समय हुआ है श्रावण मास के संदर्भ में ये विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हिंदू महासभा की तरफ से और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले हैं आप हैं आचार्य गिरीश शर्मा जी।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं।

ये मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः।

ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा

आपके समक्ष रख रहे हैं। श्रोताओं, इस वर्ष का जो पावन श्रावण मास है अब अपनी अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। पूरे मास भक्तों ने भगवान भोलेनाथ जी की आराधना की, जप तप अभिषेक और पूरे भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना की। इससे जो पावन वातावरण बना रहा वह न केवल हमारे जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है बल्कि हमें धर्म सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। कल बुधवार 19 अगस्त को कलयुग के महान संत परम पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज की जन्म जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई। तुलसीदास जी केवल एक महान कवि नहीं बल्कि सनातन धर्म के एक ऐसे उच्च कोटि के संत हैं जिन्होंने श्री रामचरित मानस की रचना कर भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाया है। इन्हीं कारणों में से एक कारण यह भी रहा कि श्रावण मास को रामचरित मानस मास कहा जाता है, कारण कि इसमें तुलसीदास जी की जन्म जयंती मनाई जाती है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी जो है भगवान राम की जो गाथा रामचरितमानस के माध्यम से हमको सुनाते हैं उसमें सबसे पहले भगवान शिव के दिव्य चरित्र उन्होंने रचना की। उन्होंने सर्वप्रथम शिव सती चरित्र का वर्णन किया, तब उसके बाद श्री राम की पावन कथा का विस्तार किया। इसके माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी संपूर्ण मानव समाज को यह दिव्य संदेश देना चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा के बिना श्री राम के वास्तविक स्वरूप का बोध कठिन है और श्री राम कृपा के बिना शिव तत्व की पूर्ण अनुभूति भी संभव नहीं। इसलिए श्री राम और भगवान महादेव एक दूसरे के पूरक है। दोनों की भक्ति मनुष्य को धर्म ज्ञान वैराग्य और अनंत मोक्ष की प्राप्ति कराती है। श्रोताओं, भगवान श्री हरि के विभिन्न अवतारों में श्री राम भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है। श्री राम के अवतरण की पटकथा भगवान शिव ने राम अवतार से पहले ही तैयार कर ली थी। भगवान शिव के संकल्पानुसार ही राम अवतार की सारी घटनाएं घटित हुई। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित मानस मुनि भावन बिचरे ओ शंभु सुहावन पावन। यह भी आता है, रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाषा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रत्येक कार्य से पूर्व भगवान शिव का स्मरण वंदन करते थे। वनागमन के समय भी वे शिव जी को नमन करना नहीं भूलते। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वर्णन है, राम लखन सिया जान चरी शंभु चरण सिरुनाई सचिव चला यहु तुरत रथु इत उत खोज दुराई। श्री राम वनवास में भी नित्य स्नान करके शिव जी के पूजा करती है। तब मज्जनु करी रघुनाथा पूजी पार्थिव नायहु माथा। और कहीं तुलसीदास जी यह भी कहते हैं, तब गणपति शिव सुमेरी प्रभु नाई सुरसरही माथ सखा अनुजसिय सहित वन गवनुकीन रघुनाथ। वनवास के दौरान जब महाराज रावण सीता का अपहरण कर समुद्र को पार कर लंका को भाग जाते हैं तो श्री राम सीता जी के वियोग में अत्यंत दुखी हो जाते हैं। श्री शिव गीता नामक ग्रंथ में वर्णन आता है कि अवसाद ग्रस्त श्री राम अगस्त्य मुनि से यह बात कहते हुए कहते हैं कि हे महामुनि, ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अगाध समुद्र को पार कर लंका जाकर रावण का वध कर सकूं और सीता को प्राप्त कर सकूं। इस पर अगस्त महर्षि कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु

और इंद्र आदि देवताओं से अभिजीत रावण को शंकर भगवान की कृपा के बिना नहीं मारा जा सकता। अतः हे राम, मैं आपको विरजा दीक्षा देता हूँ। ऐसा कह करके अगस्त महामुनि ने श्री राम को पाशुपत व्रत का उपदेश दिया और विरजा मंत्र से हवन करवाया। तदांतर भगवान राम को श्री शिव सहस्रनाम का पाठ करने का उनको उपदेश दिया। अगस्त जी के उपदेश अनुसार भगवान श्री राम ने गोदावरी तट पर रामगिरी पर्वत पर शिवलिंग की स्थापना कर पत्र पुष्पों से पूजन किया। पूजन में संलग्न भगवान राम की समाधि लग गई। कुछ समय बाद एक भीषण ध्वनि के साथ पृथ्वी हिल उठे और आंखें खोलने पर श्री राम जी को सच्चिदानंद विग्रह कोटि सूर्य सदृश प्रकाशमान कर्पूर गौर वर्ण श्री भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर श्री राम को दिव्य अमोघ अस्त्र प्रदान करते हुए कहा है कि हे राम, अधर्म में प्रवृत्त होने के कारण इन राक्षसों की आयु क्षीण हो चुकी है। पतिव्रता स्त्री की अवमान से रावण का संहार सुगम हो गया। यहां से कुछ ही दूर पर किष्किंधा नगर में रहने वाले असंख्य वानर आपकी सहायता करेंगे। उनकी सहायता से समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध करके आप अपनी प्रिय सीता जी को शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। शिव जी कहते हैं कि हे राम, मैं काल रूप होकर सभी राक्षसों का ग्रास करूंगा, आप निमित्त मात्र बनो। यह युद्ध आपको महान कीर्ति प्राप्त होगी। मम वक्रगतः सर्व राक्षसा युद्धर्मदाः निमित्त मात्रं त्वां भूया कीर्तिं याप्स्यसि संगरे। इस प्रकार भगवान राम को विजय का वरदान देने के पश्चात भगवान शिव ने श्री राम को विस्तार पूर्वक अपनी विभूतियों का वर्णन सुनाया और अपने निष्कल अद्वितीय शुद्ध परमात्म स्वरूप का परिचय कराया। तत्पश्चात भगवान राम को दिव्य नेत्र प्रदान कर अपने विश्व रूप का दर्शन कराया, जिसमें अनंत सूर्य चंद्र मेरु मंदरादि पर्वत सागर और अनंत ब्रह्मांड दिख रहे थे। भगवान शिव के विश्व रूप का दर्शन करने के बाद श्री राम जी भगवान शिव से सौम्य रूप में दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं, जिसे सुनकर भगवान शिव ने अपने विराट रूप का संवर्णन करके मंगलमय पंचमुख रूप दर्शन कराया। इसके पश्चात भगवान राम ने शिव जी के पंच महाभूतों से देह उत्पत्ति स्थिति विलय जीवन के स्वरूप कैवल्य मुक्ति निर्गुण एवं सगुण उपासना आदि पर अनेक प्रश्न पूछे और उत्तर प्राप्त किए। भगवान राम के समस्त संशयों का निवारण और सीता हरण के अवसाद से पूर्णतः मुक्त कर भगवान शिव श्री राम के सामने ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्रोताओं, त्रेता युग में दंडकारण्य में घटित यह शिव गीता का प्रसंग उसी तरह है जिस प्रकार द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में घटित श्रीमद् भगवद गीता का प्रसंग, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मोपदेश देकर अवसाद मुक्त किया था। भगवान शिव के संकेतानुसार श्री राम का किष्किंधा पहुंचने पर सुग्रीव आदि से मिलन होता है और भगवान राम वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचते हैं। इसी बीच उन्हें प्यास लगती है और वानर तुरंत ही मीठा जल ले आते हैं, लेकिन भगवान राम जो ही जल पीने के लिए आगे बढ़ते हैं, मन में विचार आ जाते हैं। शिव पुराण में वर्णन आते हैं, भगवान राम कहते हैं, नकृतम दर्शनम शंभो गृहतेश्च जलम कथम स्वस्वामी नः पश्यश्च सर्वानं।

0: चवे। अर्थात भगवान राम कहते हैं, मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन पूजन तो किया ही नहीं, फिर अभी जल कैसे ग्रहण कर सकता हूं। अतः श्री राम ने जल रख दिया और पार्थिव पूजन करने लगे। अत्यंत प्रेम पूर्वक सुरसोपचार से भगवान शिव का पूजन करने के बाद तब भगवान राम शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, स्वमिच्छदम शंभो महादेव सर्वदा भक्तवत्सल पाही माम शरणाम पन्नम त्वा भक्तिम दीन्यमानसम। शिव जी कहते हैं कि हे महादेव, आप भक्तवत्सल है, मैं दीन मानस आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। त्रिभुवन विजयी रावण का आपका भक्त होने के कारण दुर्जय है, इधर मैं भी तो सर्वदा आपके अधीन रहने वाला आपका दास हूं, अतः आप मेरे प्रति पक्षपात्र मुझे विजय का आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार स्तुति करके भगवान राम शिव जी के सन्मुख नृत्य करने लगे। श्री राम की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शिव भगवती पार्वती सहित वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव ने श्री राम को रावण से युद्ध करने की आज्ञा दी और विजय का आशीर्वाद दिया। जयो अस्तु ते महाराज प्रयत्याश्च पुनरावृतम। श्री राम ने पुनः प्रार्थना की कि हे शंकर भगवान, यदि आप संतुष्ट है तो जगत के लोगों के कल्याण के लिए आप सदा यहां निवास करें। श्री राम के अनुरोध को स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए, जो तीनों लोकों में रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री रामेश्वरम के प्रभाव से श्री राम ने विशाल सेतु बांधकर समुद्र को अनायास पार कर लंका पहुंचकर रावण आदि राक्षसों का वध किया और अपनी प्रिय सीता जी को प्राप्त किया। लंका विजय के उपरांत भगवान श्री राम सीता जी और वानर सहित पुष्पक विमान में अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और मार्ग में श्री रामेश्वरम धाम के ऊपर जब गुजरते हैं तब भगवान राम सीता जी को बताते हैं कि यह वही पवित्र स्थान है जहां मैंने सुखधाम भगवान शिव का अर्चन पूजा किया है। इस प्रकार भगवान राम भी स्वयं शिव जी की उपासना करते हैं और शिव जी स्वयं कहते हैं भगवान राम इनके इष्ट देव है। यही श्रावण मास की विशेषता है कि यहां पर दोनों की भक्ति हरि के रूप में श्री राम और हर के रूप में शिव जी की आराधना किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम को मैं विराम की ओर लेके चलूं। अब जो शेष दिन रह गया श्रावण मास में, इनको हम भरी भक्ति के साथ निभाएं ताकि यह श्रावण मास का अनुष्ठान संपन्न हो जाए। आपकी ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, 10:50 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज है गुरुवार। गुरुवार का दिन आपको पता है समर्पित है भगवान विष्णु को। तो चलिए उनके नाम पे ये बहुत ही प्यारा सा भजन आप सभी सुनने वालों के नाम। आपको पता है कि भगवान विष्णु जो है वो पालनहार है और हम सब जो है उनकी जो है कृपा हम पर बनी रहे, हमारी यही कामना है। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। जाने से पहले ये प्यारा सा जो है भक्ति गान आपके नाम छोड़े जा रहे हैं। जी हाँ, एक आरती है आपके लिए। आज का दिन हम साईं बाबा को पूजते हैं। श्रद्धा और भक्ति, यही सीख हमें प्राप्त होती है भगवान साईं बाबा से। तो इस सीख को लेकर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, श्रद्धा और सबूरी का। तो चलिए कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में हमारी ओर से आप सभी को नमस्कार, शुभ दिन।

0: अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर से करुणा जी के साथ। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा, सभी को नमस्कार। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात करेंगे। इसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के वास्ते गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट साझेदारी के तहत बहुप्रतीक्षित MOU का आदान प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद प्रेस संबोधन भी होगा। मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपने व्यापार आदान प्रदान को नई गति देना चाहते हैं। जिम्बाब्वे के

0: 40 से अधिक प्रतिनिधि स्थानीय बाजार को समझने और नए कारोबारी अवसर तलाशने के लिए मॉरिशस में हैं। दोनों देशों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बीच कल एक बिजनेस फोरम के दौरान हस्ताक्षर किए गए एमओयू का उद्देश्य नई साझेदारी के रास्ते खोलना है। खाद्य सुरक्षा भी उन प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं जहां मॉरिशस और जिम्बाब्वे अपने सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। एमटीसीजीएसए ने आज सुबह घोषणा की कि इस सप्ताह घुड़दौड़ शनिवार 22 अगस्त के बजाय रविवार 23 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। सप्ताह की शुरुआत में खराब मौसम के कारण और आज गुरुवार से सामान्य प्रशिक्षण फिर शुरू होने के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया। विदेश में श्रीलंका में एक सामूहिक कब्र की खुदाई के दौरान 582 कंकाल बरामद किए गए जिनमें शिशुओं और बच्चों के कंकाल भी शामिल हैं। ये स्थल देश के गृह युद्ध के दौरान तमिल नागरिकों की सेना द्वारा हत्या किए जाने के आरोपों से जुड़ा है। मामले की जांच में करीब 30 वर्षों की देरी हुई है। और सेंट्रल अफ्रीका में कैमरून की सीमा के पास एक सोने की खदान के ढह जाने से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक ये हादसा जाम्बोई गांव में हुआ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुई। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। मामजे लो त्यागोज में 37 साल के 37-year-old श्री विराज भागोबान जो डू से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं आज दिन के 10 बजे इनकी माँ सीता भागोबान के मकान मामजे लो त्यागोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौसा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 10 AM। कापुरल रोड गुडलैंड में 74 साल के 74-year-old श्री जगदीश दामरी जो जगदीश जग से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे इनके मकान कापुरल रोड गुडलैंड से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआगोज गुडलैंड की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टुमोरो एट 11 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

फरोजा। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

तेरा दर हो और मेरा सर हो, ये जभी यूं ही झुकी रहे। तेरा दर हो मेरा सर हो, ये जभी यूं ही झुकी रहे। मेरी आँख हो तेरी दीद हो, मेरी आँख में यूं ही नमी रहे। मेरी आँख हो तेरी दीद हो, मेरी आँख में यूं ही नमी रहे। मौज़ सामेईन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर आफ़ियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फ़िरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समाअत फरमाएंगे तिलावत क़ुरान पाक, हम्द और नातो सलाम, इसके अलावा आपके पैगामात। ताखिर न करते हुए आइए आगाज़ करते हैं सूरह अल अहकाफ की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

सदकल्लाहु अज़ीम। हर नेक अमल ज़िक्रल्लाह में दाखिल है। हज़रत सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि ज़िक्रल्लाह सिर्फ तस्बीह तहलील और ज़ुबानी ज़िक्र पर मुनहसर नहीं, बल्कि हर अमल जो अल्लाह ताला की अतात में किया जाए वो भी ज़िक्रल्लाह में दाखिल है, बशर्त ये कि नीयत अतात की हो। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम में से बेहतर और अफजल बंदा वो है जो कुरान पाक का इल्म हासिल करे और दूसरों को इसकी तालीम दे। बहवाला सही बुखारी शरीफ। ए पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा। आमीन।

मकसद भी जुबां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया पर इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। मौज़ सामेईन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:31 होने को हैं। जुमेरात का दिन है, अगस्त की आज 20 तारीख है। और इसके अलावा आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। आइए इसी के साथ समात फरमाइए चंद ऐलानात दावत इस्लामी की जानिब से। इज्तिमाए मीलाद का अहतमाम किया जा रहा है, सनीचर 22 अगस्त सुबह के 10 बजे कादरी चिश्ती मस्जिद कौशाप्लों पाई में। सनीचर 22 अगस्त दिन के 1:30 बजे यानी बाद नमाज़े ज़ुहर, मार्केट रोड सेंट्रल फ्लाक बदरुल इस्लाम मस्जिद कौलिविये गोज़ल में। इसके अलावा 23 अगस्त, जी हाँ, मंगल 23 अगस्त को सुबह 10 बजे मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी प्रोग्राम हो रहा है दारुल उलूम मजलिस रज़ा की ब्रांच आबेद गुलित पोर्टलुस में, मोहतरमा आलिमा सैयदा उनाजा फ़ातिमा की सरपरस्ती में। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा 24 अगस्त, जी हाँ, 24 अगस्त बाद नमाज ज़ुहर दारुल उलूम मजलिस रज़ा प्लेंदे पपाई में आलिमा सैयदा उनाजा फ़ातिमा और उस्ताजा यास्मीन आज़िया साहिबा की सरपरस्ती में ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़िक्र का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा आइए समात फरमाइए चंद और ऐलानात। जुम्मा 21 अगस्त, जी हाँ, जुम्मा 21 अगस्त रात के 8 बजे से रात के साढ़े आठ बजे से रात के साढ़े दस बजे तक सुन्नी रज़वी औलिया मस्जिद सुन्नी रज़वी एकेडमी सर एतगौ लोगों से पोर्टलुस में जश्न नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया जा रहा है। जी हाँ, जुम्मा 21 अगस्त रात के 8 बजे। सनीचर 29 अगस्त दिन के 1:30 बजे इस्लामिक कल्चरल सेंटर लापे स्ट्रीट पोर्ट लुइस में मुस्लिम लेडीज़ काउंसिल की जानिब से ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया जा रहा है। और मंगल 25 अगस्त, जी हाँ, मंगल 25 अगस्त फजर से लेकर असर तक दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा इरादन लेन में ज़ियारत बाल मुबारक हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाई जाएगी। और आपको बताते चलें कि मंगल 25 अगस्त, जी हाँ, मंगल 25 अगस्त यौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सुबह के 9:10 से दिन के 11:10 तक आप सुन पाएंगे आलिमिया कॉलेज हाईलैंड से बराह रास्त, जी हाँ, लाइव ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीफ। सुनना मत भूलिएगा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए।

चूम लेते हैं अंगूठे आपका सुनते ही नाम, चूम लेते हैं अंगूठे आपका सुनते ही नाम। आशिकाने मुस्तफ़ा की ये भी एक पहचान है, आशिकाने मुस्तफ़ा की ये भी एक पहचान है। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि मैंने कोई अंबर और कोई मुश्क और कोई खुशबूदार चीज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महक से ज़्यादा खुशबूदार हरगिज़ नहीं देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से मुसाफा फरमाते तो तमाम दिन उस शख्स को मुसाफे की खुशबू आती रहती, और जब कभी किसी बच्चे के सर पर हाथ रख देते तो वो खुशबू के सबब दूसरे लड़कों में पहचाना जाता। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी रास्ते से गुज़रते और कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में जाता तो वो खुशबू से पहचान लेता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से तशरीफ़ ले गए हैं। ये खुशबू बग़ैर खुशबू लगाए हुए ख़ुद आप सल्लल्लाहु

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक में थी। बस गई है फिज़ा में निखते हुस्न, बस गई है फिज़ा में निखते हुस्न, वो जहाँ भी जिधर से गुज़रे हैं।

मौजूद सामीन, आइए समाप्त फरमाइए एक और ऐलान। इतवार 23 अगस्त, जी हाँ, इतवार 23 अगस्त सुबह 10 बजे ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया जा रहा है। दारुल उलूम मजलिस रज़ा की ब्रांच आबिद गुलित पोर्ट लुइस में मोहतरमा आलिमा सैयदा उनाजा फ़ातिमा की सरपरस्ती में तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगाम की तरफ। जी हाँ, नानी ताहिरा खुदादीन के लिए ईसाले सवाब की दुआए शिफा की गुजारिश की जा रही है, और ईसाले सवाब की गुजारिश की जा रही है सत्तार नूरबख्स, मरहूम रहीमा नूरबख्स और मरहूम शफीक हसाम खुदादीन के लिए उनकी बेटी शबनम और फुप्पू रुखसाना भी दुआए शिफा और ईसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं। इसके अलावा शुमैगनिये से, जी हाँ, शुमैगनिये से अफरोज़, शुमैगनिये से वालदा अफरोज़ अपनी बेटी रुखसाना बीबी सावो और अपने दामाद मोहम्मद यूसुफ सावो के लिए और नौफल और नूरिया के लिए बहुत सारी दुआएं भेज रही हैं कि अल्लाह पाक इन सबको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। इसके अलावा जी हाँ, एक और पैगाम है सैपुल से, रियाज और रिहाना तमाम मुसलमानों को और MBC की पूरी उर्दू टीम को ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, और रिहाना अपनी बहन मरहूमा बीबी फजीला हुसैन बुकर्स को, जिनके इंतकाल को 22 दिन हुए हैं, उनके लिए दुआ मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनकी बहन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उन्होंने एक कलाम की फरमाइश भी की है, आइए समाअत फरमाइए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वर तरंग,
2: स्वर तरंग। संगीत प्रेमी श्रोतियों नमस्कार, सुस्वागतम। मैं आशा करती कि आप ठीक हाथ मजे तहत एंड चुनिंग करी तहत ऑन MBC रेडियो कर सीखो अर्ध्यता सा कार्यक्रम है तुम्हारा सगल्यांच्या मनोरंजनासाठी दोन वाजता पर्यंत। तर सीखो आमची साध्या दोन वाजता पर्यंत। तर सुरुवात करूया आजचा आपल्या सर्तरंग कार्यक्रम एका अप्रतिम भक्ती गाण्यानी।

着可欠，完全为见你一面，寻得到尘封。

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस। मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। गुरुवार 20 अगस्त घड़ी मिला लीजिए, दोपहर के 2:45 हो चुके हैं और हम आ चुके हैं आप सबका फेवरेट प्रोग्राम आपकी पसंद लेकर। मैं हूँ सुमी और हमारी ओर से नमस्कार स्वीकार करें। तो अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है हमारा और आपका साथ रहेगा। यस, 6 बजे तक, क्योंकि अभी से लेकर 4 बजे तक आप सुन पाएंगे आपकी पसंद इस प्रोग्राम को, और फिर उसके बाद भक्ति सागर और उसके बाद सदाबहार गीत। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का दिन बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। और बाहर तो आज इतना सुहाना मौसम है कि क्या कहे। मौसम अच्छा है तो मूड भी अच्छा होता है, और अच्छे अच्छे गाने यहाँ पर बिल्कुल आपकी फरमाइश पर हम चलाएंगे आपके अपनों के लिए। तो भूलिएगा नहीं, 4028085 है नंबर हमारा, और साथ ही आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 5251700 पर।

0: आपकी पसंद।
1: तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत हुई है आपकी पसंद इस प्रोग्राम की, और आपका साथ तो हमें मिल ही रहा है। चलिए, आप है तो हम है, आप है तो ये प्रोग्राम है, और ऐसे ही साथ जुड़े रहिए आपकी पसंद ये प्रोग्राम में। अगला जो तराना है, कब्जा फिल्म का ये गीत होगा। मौदालबे से अनीता जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, और ये गाना जाता है उनकी ओर से करुणा, अमृता, कविता, उनके सभी दोस्तों के लिए, मौदालबे के उनके पूरे परिवार के नाम। इस समय सुदेवी जी वाकवा से हमारा साथ दे रही है। गुड आफ्टरनून, आपको भी गुड आफ्टरनून सुदेवी जी, और थैंक यू हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय करने के लिए। अगला गीत थ्रियोले की आपकी दीदी लालिता के लिए। वी हैव कुशल फैमिली, दीदी सुनीता, शोभा, वी हैव देवीना, बिंदु, लालोरा से आपका पूरा परिवार इस समय हमारे साथ जुड़ा हुआ है। दीदी माला है, जयश्री है, अंबिका है, सभी जलू परिवार, सभी भिकारी परिवार, सभी राम रतन, राम गुलाम, सभी रघुबर परिवारों के नाम ये गाना। और आपने कहा बस कोई भी गाना चला देना, हमारे नाम कोई भी गीत कर देना, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कब्जा फिल्म का ये गाना आप सभी के नाम, मोहम्मद अजीज जी की आवाज़ में।

0: की पसंद।
1: और चलिए अभी के लिए शोला और शबनम का ये गीत चल पड़ा है। ये गाना जाता है कैरोलिन की सीता देवी जी की ओर से उनके पति धीरज की याद में। और श्रोताओं, इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के समाचार की ओर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: देश विदेश की खबरों को लेकर स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
2: नमस्कार आदाब। 18 सालों के बाद पोटली सीट फिर से कार्यरत होने लगेगा। इन कार्यों की वजह से 500 मिलियन रुपए लगे हैं, कुछ देरी हुई है लेकिन कार्य संपन्न होंगे। मुर्शिद के 14 फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। कल मेबाग में स्थानीय मछुआरों को सुरक्षा सामग्रियां दी गई ताकि मछली मार का समर्थन किया जाए। वहां पर मौजूद मंत्रियों और सांसदों ने मछुआरों का समर्थन करने और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए मुख्तलिफ सहायक योजनाओं का उल्लेख किया। ये जाने कि देश में 2000 से ज्यादा माहीगीर हैं। नवीनीकरण और टेक्नोलॉजी को मजीद बढ़ावा देने के लिए बैन में एक नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। ये लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती हैं। रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये प्रयोगशाला मुर्शिद नौजवानों को अपनी परियोजनाएं विकसित करने की संभावनाएं देती हैं। विदेश में अमेरिका के कांग्रेशनल बजट ऑफिस ने एक आंकड़ा आम किया है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 10 सालों में 40 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। ये बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनों के दौरान काफ़ी खर्च किए गए हैं और सूद दर भी बढ़ी है। सन 2016 में राष्ट्रीय कर्ज 20 ट्रिलियन डॉलर था। तो अभी के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर में शोक समाचार। एवेन्यू दी सैब्लों ग्रिनी फ्रांस में 61 साल के 61 years old श्री धर्मराज चितामन जो सुनील के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी मंगलवार को उनके घर फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रिनी फ्रांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन ट्यूजडे एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। चलिए समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। आपकी पसंद इस प्रोग्राम में आप जुड़े हुए हैं, आप सभी का धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद आपके फ़ोन कॉल्स और आपके मैसेजेस का। तो चलिए यहाँ पर अगला जो तराना है, यहाँ पर ये जो गाना है होगा मूवी आज का शहनशाह, इस मूवी से लिया गया, मोहब्बत कितने रंग बदलती है। गाने की फरमाइश आई है विश्वानी जी आपकी ओर से। विश्वानी जी, आपने लिखा कि गाना है शहनशाह फिल्म का और आपके गाने को हम

ढूंढते ही रह गए और मुझे आपका गाना मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि जिस गाने को आप सुनना चाहते हैं वो फिल्म शहंशाह का नहीं है, आज के शहंशाह इस फिल्म का है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप सुनना कुछ चाहते हैं, आप गाने के बोल तो लिख के भेजते हैं और फिल्म कोई और लिख देते हैं, और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली कौन सा गाना आप चाह रही है और हम ढूंढ कर नहीं मिलता है। जैसे जब भी आप फरमाइश करें, आप अगर हमें ठीक ठीक सही सही जानकारी दे तो आपका गाना हम बड़ी आसानी से ढूंढ पाते हैं और आपके लिए बड़े ही प्यार से चला पाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने आपका गाना ढूंढ लिया है और गाना जाता है विश्वानी दुबन जी आपके लिए। साथ में यहाँ पर इंदिरा, शारदा, सहेलिया है नीला, प्रतिभा साथ में वी हैव शोभा जी, गीता गजाधर जी, सभी दुमन फैमिलीज के नाम ये गाना बस चलने ही वाला है। और बड़े ही प्यार से इस समय ज्योति जी भी यूनियन पार्क से जुड़ी हुई है। ज्योति जी ने भी कहा बस सुमित जी कोई भी गाना हमारे लिए चला दीजिए तो चलिए ये जो अगला गाना है इसमें नाम जाता है आपके पूरे परिवार का, जो यूनियन पार्क से इस समय हमें सुन रहे हैं, खासकर प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अविष्टा आपके लिए भी।

0: की पसंद।
1: यकीनन वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, कभी समय बदलता है, कभी हालात बदलते हैं, कभी मोहब्बत बदलती है, कभी रिश्ते बदलते हैं। लेकिन जो भी बदलाव हो, अगर अच्छे के लिए हो, जिसमें सबकी भलाई हो, तो ये बदलाव बुरा नहीं है। लेकिन किसी बदलाव से अगर किसी को कोई नुकसान हो रहा है, कोई हानि पहुंच रही है, किसी को कोई दुख हो रहा है, तब हमें थोड़ा सोचना चाहिए, है ना। चलिए अभी के लिए हम आपके गानों के बारे में सोच रहे हैं। अगला जो तराना है, यहाँ पर हमारी प्यारी माधुरी जी आपके नाम हम करते हैं। माधुरी जी उन हमारे लिसनर्स और फॉलोअर्स में से हैं जो रेडियो मॉरिशस हो या रेडियो मनोरंजन हो, वो व्हाट्सएप हो या हमारा टिकटॉक हो, सभी जगह बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ती है। तो माधुरी जी अगला गाना आपके नाम, ये रात फिर ना आएगी फिल्म का तराना है महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में, मेरा प्यार वो है कि, ये गाना आपके नाम। और ख़ासकर इसी गाने को हम हमारी प्यारी परी के लिए भी करेंगे और आपके सभी दोस्तों के लिए, और जितने लोग इस गाने को सुनना पसंद करते हैं, ये गाना उन सभी के लिए भी।

0: प्यार हो आपकी पसंद।
1: यकीनन खूबसूरत गानों का ये जो कारवा है आप सभी के लिए यहाँ पर हम चला रहे हैं, एक से बढ़कर एक तराने, वो भी आप ही की फरमाइश पर। और अगला जो नगमा है जगजीत जी की आवाज़ में है, जगजीत सिंह जी की आवाज़ में, कटरबोन से स्वस्ति जी ने इस खूबसूरत नगमे की रिक्वेस्ट की है और ये गाना उनके सभी दोस्तों के नाम। और इस समय बड़े ही प्यार से हमारे साथ जो है जुड़ी हुई है शिमला जी, जो बेलरोज से साथ दे रही है, कह रही है कि आपके प्रोग्राम को हम सुन रहे है और बस किसी भी गाने में हमारा नाम जोड़ दीजिए। तो चलिए गाना जाता है यहाँ पर बहन रूमा, साथ में है आरती, इंदिरा, भाई है राकेश, धीरज, आपके बेटे हैं निमलेश, और साथ में यहाँ पर बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपकी बेटी कीर्तिना, सभी समय हमें सुन रहे हैं। और ये गाना खासकर शिमला जी आपके लिए भी हम करते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: यकीनन ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है जिसमें हमारी मर्ज़ी जो है शामिल नहीं होती है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार जो कुछ होता है उसे होने देना चाहिए, क्या पता हमारी किस्मत में यही लिखा है और इसी में कहीं ना कहीं हमारी भलाई भी छुपी हो, है ना। तो चलिए, यहाँ पर इस समय बड़े ही प्यार से आप साथ दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपकी पसंद ये जो प्रोग्राम है चलने वाला है 4 बजे तक, और आज जितने भी सुनने वाले अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना जन्मदिन मना रहे हैं, MBC रेडियो की पूरी टीम की ओर से आप लोगों को जन्मदिन के हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज आपको। और यहाँ पर हेलो आपकी पसंद टीम, और यहाँ पर आज आपके बड़े बेटे नबील का जन्मदिन है, वो 29 ईयर्स के हो रहे हैं, उनको ढेर सारी खुशियाँ, अच्छी सेहत और कामयाबी, खासकर उनके मामा और पापा की ओर से। भाई है नफीज़, साथ में यहाँ पर इस की फरमाइश आई है नसरीन जी की ओर से। सो नसरीन जी, आपके बेटे को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, और वो बहुत ही तरक्की करे अपनी लाइफ में, ऐसी कामना हम, ऐसी विश हम करते हैं, और हमेशा खुश रहें।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे। और चलिए अब बारी इस अगले तराने की। छाया फिल्म का ये जो अगला गीत है बड़ा ही सुंदर सा गीत है रुजबेल के साकुन जी की ओर से। इस गीत की फरमाइश आई है एवा शेन और सभी जीवन परिवारों के नाम। इस समय सुनीता जी ग्रॉन्गप से हमारा साथ दे रही है, वो भी हमेशा हमारे सभी प्रोग्रामों से जुड़ती है। और ये गाना आपके नाम भी हम करते हैं सुनीता जी, साथ ही मैं आपकी प्यारी बहन विमला के लिए और आपके सभी भाइयों और सभी बहनों के लिए जो हमेशा हमारा साथ देते हैं हमारे सभी प्रोग्रामों में। बहुत सारे लोग फ़ोन तो करते हैं लेकिन कहते हैं कि बस किसी भी गाने में हमारा नाम जोड़ दीजिए ताकि औरों को मौका मिले, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप ऐसा सोचती हैं। तो चलिए इसी गाने को हम आपके लिए भी करते हैं चित्रा जी जो इस समय हमें सुन रही हैं।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए, प्यार तो ऐसी चीज़ है कि समय के साथ हमेशा बढ़ते रहती है। अपनापन जो है समय के साथ बढ़ते रहता है। जो कम हो जाए वो प्यार कैसा है ना, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं प्यार तो कभी कम नहीं होता ना, अपनापन तो कभी कम नहीं होता, एक दूसरे के प्रति हमारा जो सम्मान है वो तो कभी कम नहीं होता। तो बस प्यार हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर प्यार होता है कहते हैं ना, वहाँ पर नफरत के लिए कोई जगह नहीं होती। तो चलिए बड़े ही प्यार से इस अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। पूर्णिमा फिल्म का ये बड़ा ही खूबसूरत सा गीत लता जी और मुकेश जी की आवाजों में, हम सफर मेरे हम सफर। और ये जो गाना है यहाँ पर जाता है अमीना आपके नाम, जो हमें सुन रही है, अमीना की ओर से गाना जाएगा। फाइमा के नाम, साथ में नाजमा है, फाजीमा है, मुनीजा है, आपके सभी भाइयों के लिए, आपके सभी रिश्तेदारों के लिए। और यही गाना जाता है वसंती जी आपके नाम, जो इस समय बुबासे से हमारा साथ दे रही है।

0: आपकी पसंद।
1: और चलिए अब बारी है इस अगले तराने की, और अगला जो गाना है यहाँ पर जाता है साधना जी आपके नाम, रिवेद क्रियोल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाइड फिल्म का ये जो गाना है इसे हम करेंगे आपके सभी बच्चों के नाम। नीतीश है, कुशल है, करण है, सतीश, कविता, कवीना, संहिता, अनुषा, मानसा, जिया, तेजल, गौरव, क्रियान और सबसे छोटा लड्डू गोपाल। और यहाँ पर यही गाना जाता है ताश्विक के नाम, साधना जी आपके लिए, देवानंद के लिए और सभी रिवेद क्रियोल के सभी जीवन परिवार के नाम।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए उम्मीद करते हैं इन गानों को आप भी गा रहे हैं और गुनगुना रहे हैं, और इन गानों को सुनते सुनते कब यहाँ पर ऑलरेडी 4:15 बज चुके हैं पता ही नहीं चला। और चलिए अगला जो तराना है, आया सावन झूम के फिल्म का ये टाइटल ट्रैक होगा, लता जी, रफ़ी साहब और साथियों की आवाज़ों में। और ये गाना खासकर सभी बंधु परिवार के नाम जो इस समय ट्रियोले से हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़े ही प्यार से जो है हमें सुन रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे अभी भी रिक्वेस्ट हमें मिल रही हैं। तो चलिए हमारी पूरी कोशिश होगी कि समय ख़त्म होने के पहले हम सभी रिक्वेस्ट को पूरा कर पाए। तो चलिए इसी खूबसूरत गाने को लक्ष्मी जी आपके नाम हम करते हैं। बॉम्बू से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उम्मीद करते हैं ये गाना आपको पसंद आएगा।

भी है, तो सावन के इस महीने की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और इस महीने में प्रकृति में एक अलग जो है रंग छाया होता है, और प्रकृति का ये सुंदर रंग जो होता है इसका सीधा असर हमारे मन पर भी पड़ता है ना। चलिए, आज फरमाइशें इतनी है कि क्या कहें, और समय खत्म होने को चला, तो जाते जाते जो अंतिम गाना है उन सभी के नाम हम करेंगे, समय की कमी के कारण जिनकी फरमाइशों को हम पूरा नहीं कर पाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर सुमति जी, जो आप इस समय हमें सुन रही हैं, आपके प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। माहिन जी, आपका भी मैसेज हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अगले तराने को आपके नाम हम करते हैं, और यहाँ पर आप साथ दे रही है, प्रमिला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सरिता जी भी, आपका भी साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तराना अमीना जी, आपके नाम हम करते हैं, और इसी गाने को हम करेंगे यहाँ पर शांति जी आपके लिए। और इसी के साथ आज का ये जो आपकी पसंद प्रोग्राम है ये खत्म होने को चला, जाते जाते ये खूबसूरत तराना उन सभी के नाम जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमारे सभी प्रोग्रामों को पसंद करते हैं। 4 बजे जो है, यानी कि इस गाने के तुरंत बाद शुरुआत होगी भक्ति सागर इस कार्यक्रम की, तो आप हमारा रेडियो मॉरिशस पर यूं ही साथ देते रहिए। धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भक्ति सागर।
2: घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 4 बज रहे हैं। आज है गुरुवार 20 अगस्त। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। आप सबका स्वागत हम करते हैं भक्ति गीतों के इस कार्यक्रम भक्ति सागर में। सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा और जहाँ कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं, आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आपको बता दें, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारावी डॉक्टर शांति महावीर जी से। तो चलिए, भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं। भगवान गणेश जो है हमारे जीवन से सभी विघ्नों को दूर करते हैं, सभी परेशानियों को दूर करते हैं और सबका कल्याण करते हैं। तो चलिए, हम इस कार्यक्रम के साथ ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर की अपार कृपा आपके जीवन पर सदा रहे, ईश्वर की कृपा दृष्टि आपके जीवन पर सदा रहे, आप सभी संकटों से, सभी परेशानियों से सदा दूर रहे।

भक्ति सागर इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं और भक्ति की बात करें, साधना की बात करें, आराधना की बात करें, तो ये सभी मार्ग है ईश्वर से जुड़ने का, ईश्वर के समीप जाने का। और जब भी हम ईश्वर के समीप जाते हैं, जब भी हम ईश्वर से जुड़ते हैं, तो सभी नकारात्मकताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। हम तो ये भी मानते हैं कि जिस भी कार्य को आप करते हैं, कार्य के शुरुआत में अगर ईश्वर का नाम लेके, हे ईश्वर हमारे हर श्वास, हमारे हर पग पर हमारे साथ चले, हमारे साथ रहे, हमारा मार्गदर्शन करे, तो वाकई में हमें अपने आसपास ईश्वर के होने की अनुभूति होती है। जिस भी कार्य को हम करते हैं, फिर चाहे वो घर का कोई काम ही क्यों ना हो या बड़े से बड़ा कोई कार्य क्यों ना हो, ईश्वर साथ हो तो सभी कार्य में सफलता मिलती है और वो कार्य संपन्न भी होता है।

0: चलिए, सभी जो भी बिगड़े काम है वो ईश्वर सब सवार दे, ऐसी कामना हम करते हैं। और श्रोताओं, अभी के लिए पीयूष धारा इस कार्यक्रम की ओर हम बढ़ेंगे और इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। तो आइए उनको सुनते हैं।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर के साथ।
2: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सबका सादर अभिवादन

श्रोताओं, रामायण महाकाव्य की कथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ गज सिंह गति वीरौ शार्दूल वृषभ उपमौ। मिथिला के महाराज जनक जी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से कहते हैं कि हे भगवान, आज आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। मानो मुझे अपने यज्ञ का फल प्राप्त हो गया है। हे ऋषिवर, आपके साथ ये दो कुमार कौन हैं? इनका पराक्रम और इनकी गति हाथी, सिंह, बाघ और वृषभ के समान है। इनकी वीरता देखते ही बन रही है। इनकी आँखें कमल के समान विशाल और सुंदर हैं। तलवार, तरकश और धनुष धारण किए हुए ये कुमार देवताओं के जैसे दिख रहे हैं। ये दोनों कुमार सूर्य के समान तेजस्वी हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप कृपा करके मुझे बताइए कि ये दोनों किसके पुत्र हैं। श्रोताओं, महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों का परिचय कराते हुए कहते हैं कि हे महाराज, ये दोनों पराक्रमी वीर और सुंदर कुमार अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। सिद्धाश्रम की रक्षा के लिए मैं इन्हें इनके पिता से मांग लाया हूँ।

इन्होंने ताड़का यक्षिणी को मारकर मलद और करुष देशों को अत्याचार से मुक्त कर दिया। सुबाहो और उसके राक्षस साथियों को मारकर इन्होंने सिद्धाश्रम के यज्ञ की रक्षा की। अब सिद्धाश्रम के वासी चहुं दिशाओं से सुरक्षित हैं। ये दोनों राजकुमार महातेजस्वी और महापराक्रमी हैं। हे राजन, धरती लोक में सुप्रसिद्ध क्षत्रिय वंश में उत्पन्न दशरथ जी के ये सुपुत्र हैं और ये दोनों उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं जो आपके पास है। इसीलिए मैं दोनों को अपने साथ लेकर आया हूँ। श्रोताओं, दोनों राजकुमारों की पराक्रम गाथा सुनकर राजा जनक बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वे महर्षि विश्वामित्र से बोलते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सीता का पिता हूँ और मेरी अर्धांगिनी देवी योगिनी उसकी माता है। सीता केवल जन्म से ही नहीं बल्कि कर्म से भी क्षत्राणी है। सीता की वीरता और उसके पराक्रम को मैंने देखा है, इसलिए सीता के विवाह के लिए मैंने वीर्य शुल्क प्रतिज्ञा की है। मेरी पुत्री सीता वीर्य शुल्का है, कर्म से क्षत्राणी है। हे मुनिवर, मेरी पराक्रमी पुत्री सीता के लिए कोई वीर और उत्तम पुरुष की मुझे तलाश है। सभी जनक राजाओं ने कुल के इस उत्तम धनुष की पूजा की है। यह धनुष हमारे लिए दिव्य है, इसीलिए सीता से विवाह करने के लिए जो भी राजा आते हैं मैं उनसे अपना पराक्रम दिखाने की मांग करता हूँ। इस उत्तम धनुष का चिल्ला चढ़ाने की मांग करता हूँ, क्योंकि मेरी आत्मजा सीता के लिए मुझे एक वीर पराक्रमी और श्रेष्ठ पुरुष की खोज है। परंतु हे ऋषिवर, वीरता की डिंग हाँकने वाले कितने राजा आए और चले भी गए, वे इस दिव्य धनुष पर चिल्ला नहीं चढ़ा पाए। श्रोताओं, महाराज जनक योगी थे, सांसारिकता से एकदम कट कर रहते थे, धार्मिक थे, परंतु थे वे उच्च कोटि के क्षत्रिय। उनका पराक्रम अनुपम था, उनकी वीरता अद्वितीय थी। युद्ध में उन्हें परास्त करना किसी भी योद्धा के बस की बात न थी। मिथिला में जितने भी राजा हुए वे सब जनक नाम से ही जाने गए। सीता के पिता जनक अपने पूर्वजों की भांति ही श्रेष्ठ क्षत्रिय और शासक थे। उनकी और उनके भाई कुशध्वज की बेटियां पराक्रम में बड़े बड़े महायोद्धाओं को पीछे छोड़ देती थीं। श्रोताओं, महर्षि विश्वामित्र के साथ जब राजा जनक श्री राम को देखते हैं तब वे मन ही मन उन्हें अपनी बड़ी बेटी सीता के लिए पसंद करते हैं। इसलिए वे विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, लोहे की पेटी में रखा दिव्य धनुष आप श्री राम को दिखाइए। धनुषों में श्रेष्ठ धनुष को अगर श्री राम उठाकर उसमें डोरी चढ़ा देते हैं तो सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे ही होगी। श्रोताओं, महर्षि वाल्मीकि कथा को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं कि पश्यताम नरी सहस्त्राणाम बहूनाम रघुनंदनः आरोप यत्स धर्मात्मा सलीलमीव तधन्नो हो। अर्थात बहुत से लोग देखते रह जाते हैं और श्री राम बिना प्रयास धनुष उठाते हैं और उस पर डोरी चढ़ाते हैं। डोरी चढ़ाकर जो ही वे उसे खींचते हैं धनुष टूटकर दो टुकड़े हो जाता है। श्री राम की अपार वीरता देख वहां पर उपस्थित

लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब के सब श्री राम की प्रशंसा करने लग जाते हैं। यह देख हाथ जोड़कर जनक जी महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं कि मम सत्या प्रतिज्ञा च वीर्य शुल्केति कौशिका सीता प्राणेर बहुमता देया रामाय मे सुता। कि हे महर्षि, आप तो अंतःकरण की बात जानने वाले हैं, इसीलिए आप कौशिक कहलाते हैं। सीता के विवाह के लिए मैंने जो वीर्य शुल्क की प्रतिज्ञा की थी वह पूर्ण हो गई। मेरी पुत्री सीता मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। सीता को पति रूप में अगर श्री राम मिल जाते हैं तो वह दशरथ कुल की कीर्ति संसार भर में फैला देगी, परंतु यह तब संभव हो पाएगा जब सीता पर आपकी कृपा होगी। हे ऋषि, मुझ पर भी आप अपनी अनुकंपा बनाए रखिए। मैं अपने मंत्रियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर अयोध्या भेजना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी ही उन्हें अयोध्या के लिए रवाना करता हूँ। श्रोताओं, विश्वामित्र जी ऋषि थे, दूरदर्शी थे। उन्हें पहले से ही पता था कि श्री राम और सीता एक दूसरे के लिए बने थे, इसलिए वे महाराज जनक को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें श्री राम और सीता के विवाह का प्रस्ताव राजा दशरथ के यहाँ भेजने की अनुमति भी देते हैं। श्रोता भाई बहनों, सभी जनक राजा जिस दिव्य धनुष की पूजा करते हैं उस धनुष को तोड़कर श्री राम देवी सीता को पत्नी रूप में प्राप्त करते हैं। सीता को पाने के लिए पराक्रम दिखाना अति आवश्यक था, क्योंकि सीता वीर्य शुल्का थी। ऋग्वेद का मंत्र कहता है, मम पुत्रा शत्रुहणो अथो मे दुहिता विराट। वेद भगवान माता पिता से कहते हैं कि हे माता पिता, तुम अपने पुत्रों को इतना बलशाली बनाओ कि पापी उनके सामने टिक न सके। तुम्हारे पुत्र बुराइयों को नष्ट करने वाले होवें। अपने बेटों की तरह ही तुम अपनी बेटियों को भी विराट बनाओ, तेजस्विनी बनाओ। तुम्हारी बेटियों को कोई शक्तिहीन समझने की भूल न करे। दशरथ नंदन श्री राम सुयोग्य माता पिता के सुयोग्य पुत्र थे, शत्रुनाशक थे, क्षत्र धर्म के अनन्य पुजारी थे। जनक नंदिनी सीता भी तेजस्विनी थीं, गुणमयी थीं और विराट थीं। क्षत्राणी शत्रुमर्दिनी सीता के लिए जनक जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वर रूप में चुनते हैं। श्रोताओं, सुयोग्य स्त्री और सुयोग्य पुरुष के मिलन से संसार का हित होता है। इसीलिए प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होता है कि वे अपनी कन्या और अपने पुत्र को सुयोग्य बनावें। आते कार्यक्रम में हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अंजू और मुझे आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति मुहावीर के साथ।
1: भक्ति सागर,
2: श्रोताओं भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष धारा, और इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर शांति महावीर जी को हम धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का भी जो हमारे सभी कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, इस समय भक्ति सागर इस कार्यक्रम में आप साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार। और चलिए इस अगले भक्ति गीत द्वारा कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं।

ईश्वर कहे, प्रभु कहे, परमपिता परमेश्वर कहे, यही तो हमारे जीवन का आधार है। इनके बिना हम कुछ भी नहीं, इनके बिना हम कहीं पर भी नहीं, क्योंकि जिन पांच तत्वों से ये प्रकृति बनी है, जो पांच तत्व ईश्वर में पाए जाते हैं, वही पांच तत्व इस सृष्टि पर रहने वाले हर एक जीव में, हर एक कणकण में पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप से हम ईश्वर से जुड़े अवश्य हैं। लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है कि जीवन में ठीक नहीं चल रहा होता है, तो हम फिर क्यों ईश्वर को दोष देते हैं? अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम तो मानते हैं कि उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी भलाई छुपी होती है। तो बस जीवन के हर एक क्षणों को अगर हम अपना कर चलते हैं, कुछ ठीक नहीं है उसके बारे में सोच विचार करके उसे अगर सही करने का प्रयास करते हैं, तो जीवन उतना भी कठिन नहीं है जितना कठिन लगता है। कहते हैं ना कि हमारे ये जो विचार है वो हमारे कर्म बनते हैं। तो अगर विचार अच्छे हो, दिन का आरंभ एक अच्छे विचार के साथ हो, पूरे दिन जो है ईश्वर का स्मरण हम करते रहे, और जो भी चीज़ हमें मिल रहा है उसके लिए हर एक क्षण का ईश्वर को धन्यवाद करते रहे, तो कुछ भी ऐसा नकारात्मक नहीं है जो जीवन में होता है। जीवन में सब कुछ फिर सकारात्मक ही होता है। तो बस ईश्वर पर ये जो विश्वास है उसे सदा बनाए रखें। ईश्वर ने जो है समस्या दी है, तो उस समस्या का समाधान भी कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही दिया है।

श्रोताओं, यही भक्ति है, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करती है जब हम अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों से जब व्यतीत होते हैं तो यही शक्ति हमारे काम आती है। कभी कभार होता है ना कि जीवन में अचानक से कहीं पर कोई संकट आ जाता है, अचानक से कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन वहीं पर हमारी आंतरिक शक्ति उस तरह से कार्य करती है कि हर एक जो है बुरे हालातों का हम सामना कर पाते हैं। और तभी कभी कभार सोचते हैं ना कि कहाँ से हम में इतनी शक्ति आई, तो ये शक्ति कुछ और नहीं, ये भक्ति की ही शक्ति है जो ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। इसलिए ईश्वर पर सदा विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास जो है जीवन में हमें बहुत कुछ देता है, कभी कभार हम देख नहीं पाते हैं। कहते हैं ना कि हमें जो नहीं मिलता है हम उस ओर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि जो मिला होता है वो कई गुना ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पर इसी के साथ हम भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं, और इस अंतिम गीत के साथ हम आज के इस भक्ति सागर कार्यक्रम का समापन करने जा रहे हैं। और 5 बजे से शुरुआत होगी सदाबहार गीतों की, तो आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। आप सभी को शुभ संध्या। रेडियो मॉरिशस पर साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
2: चलिए घड़ी मिला लीजिए, शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। आज है गुरुवार 20 अगस्त। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं रेडियो मॉरिशस पर, और यहाँ से शुरुआत होती है सदाबहार गीत इस प्रोग्राम की। जी हाँ, एवरग्रीन गाने तराने इस एक घंटे के दौरान यानी कि अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक हम आपके लिए चलाने वाले हैं। सदाबहार गीतों का ये जो प्रोग्राम है चलता है हर गुरुवार को शाम के 5 से 6 बजे के बीच। तो तैयार हो जाइए इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे तो ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगर आप अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, डेडिकेशन करना चाहते हैं, तो बेशक आपका स्वागत है 5251700005 पर। आप मैसेज के जरिए अपने डेडिकेशंस हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ इस सुरीले सफ़र में। और तेरे मेरे सपने फिल्म का ये जो खूबसूरत गीत है, किशोर दा और लता जी की आवाज़ों में, इस गाने के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए, आपके भी जीवन की जो बगिया है ऐसे ही महकती रहे, चहकती रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और अभी के लिए बढ़ते हैं इस खूबसूरत गाने की ओर, जिसे हमने लिया है साजन की सहेली इस फिल्म से। और इस गीत को आप सुनेंगे रफी साहब और सुलक्षणा पंडित जी की आवाज़ों में।

चलिए, इतनी चाहत है तो चाहतों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं। और इस अगले गाने के साथ सदाबहार गीतों के इस प्रोग्राम में जो है हम आपका साथ दे रहे हैं। और अगला तराना इतना खूबसूरत है कि क्या कहे। आप सुनिए, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर। सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, रेडियो मॉरिशस पर सदाबहार गीत, और इस समय बहुत सारे हमारे सुनने वाले हमारा साथ दे रहे हैं। मौदलबिया की अनीता जी कह रही है, इस समय मैं सिलाई कर रही हूँ और सिलाई करते करते सुंदर गानों को सुन रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। और यहाँ पर सिस्टर सुमी, कैसी है आप? धन्यवाद सुंदर गानों के लिए, शुभ संध्या। लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया। बहुत सारे लोग हमें इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते हैं। सो कॉन्टैक्ट में जाकर हमें कभी कभार देखना पड़ता है कि मैसेज किसने भेजा है। तो आप है शोभा जी, तो चलिए जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं, आपके साथ के लिए शुक्रिया। इन खूबसूरत मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सदाबहार गीतों में ये अगला तराना, ये भी आपको यकीनन पसंद आएगा।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: चले इन सदाबहार गीतों के बीच आपके मैसेजेस आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाशवती जी बेल्जियम से हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही यहाँ पर बारिश हो रही है और हवाएं भी चल रही है, मौसम बदल रहा है। तो चलिए यहाँ पर मौसम का मज़ा उठाइए, अपना ख्याल रखिए। और साथ ही हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ी हुई है आप प्रकाशवती जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीना जी बड़े ही प्यार से, वीना शंभू जी इस समय हमारा साथ दे रही है, कह रही किचन में काम कर रही है और गाने सुन रही है और अगला गाना आपके नाम हम करते हैं। ऐसे फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम तो नहीं है लेकिन ये खूबसूरत सा तराना वीना जी आपके लिए और प्रकाशवती जी आपके लिए भी।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए सदाबहार गीतों के इस सफ़र में हमारे हमराही बने हैं, हमारे हम सफ़र बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गाने हमारे जीवन में एक अलग ही जो है जगह रखते हैं, है ना। कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको सुनकर खुशी का एहसास होता है, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनको सुनकर हमें कुछ ऐसे पल याद आ जाते हैं जिससे हम इमोशनल हो जाते हैं। तो हर एक गाना अपने आप में एक याद बसाए रखता है। आप बताए कि कौन सा गाना आपके दिल के करीब है। अभी के लिए जो गाना चल पड़ा है, अमृत फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत मोहम्मद अजीज़ साहब और साथियों की आवाज़ों में है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है।

0: ना?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: हाँ।
1: तेरी कसम आऊंगा।
2: अभी आने का नहीं बल्कि हमारे जाने का समय हो गया है, और सदाबहार गीतों के इस प्रोग्राम को आपने बहुत एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सरिता जी भी कटरबोन से इस समय हमारा साथ दे रही है, खाना बनाते बनाते गानों का मज़ा उठा रही है, तो धन्यवाद सरिता जी आपके भी मैसेज के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी, ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर जुड़े रहिए, हमारा साथ देते रहिए। 6 बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को हमारी ओर से।
3: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार, आदाब, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। विशेष समाचार बुलेटिन, सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। ये एक सच्चाई बन गई है, भारतीय सरकार के साथ G2G समझौता तय हो गया। मॉरीशस ने पेट्रोली पैदावारों की सप्लाई को सुरक्षित कर दी। आज दोपहर बाद पोर्टलुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और भारत के पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में दस्तखत समारोह लगाया गया। नवीनीकरण और टेक्नोलॉजी को मजीद बढ़ावा देने के लिए बैन में एक नई प्रयोगशाला का उद्घाटन। ये लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है, जो नौजवानों को प्रेरणा देगी। मॉरीशस के 14 फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। कलमेबर्ग में स्थानीय मछुआरों को सुरक्षा सामग्रियां दी गईं ताकि मछली मार का समर्थन किया जाए। और कैमरून की सरहद के पास जाम्बोई खान के नजदीक एक भूस्खलन पेश आया और सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। नमस्कार, आदाब, समाचार अब तफसील से। ये एक सच्चाई बन गई है, भारतीय सरकार के साथ एक समझौते के जरिए मॉरीशस ने पेट्रोली पैदावारों की सप्लाई को सुरक्षित कर दी। आज दोपहर बाद पोर्टलुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और भारत के पेट्रोल और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में दस्तखत समारोह लगाया गया। G2G प्रोटोकॉल संधि का मकसद देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने स्पष्ट किया कि इस पहल से लंबी अवधि का विजन आम हुआ है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
2: The signing of this memorandum is of strategic importance for Mauritius, one that will above everything else safeguard our energy security, reinforce the resilience of our economy and further strengthen the bonds of trust and solidarity that indissolubly unite our two nations. On behalf of the government and the people of Mauritius, let me reiterate our deepest appreciation to Prime Minister Narendra Modi for his personal commitment to strengthening the Mauritius-India partnership. For Mauritius, this MOU arrives at a particularly critical juncture when global energy markets are beset by unprecedented volatility. India is once again manifesting its unwavering commitment to the prosperity and resilience of Mauritius. The agreement we signed today embodies the translation of political resolve into tangible outcomes. As Prime Minister of Mauritius, I solemnly reaffirm my government's commitment to deepening the special and strategic partnership between Mauritius and India, rooted, as I've said, on solid anchors of history, shared values, trust, and solidarity.
1: भारतीय प्रधानमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस संधि से दोनों राष्ट्रों के भरोसे की गवाही मिलती है, उन्हें सुनती हैं।
3: Mauritius's fuel security now will not rest on the uncertainty of tenders, but on the assurance of a 5-year supply commitment from Indian Oil Corporation, covering the entirety of Mauritius's import requirement. This is in fact the first agreement of its kind that an Indian public sector oil company has concluded anywhere outside South Asia. India is not merely energy self-sufficient, but also a net exporter of refined petroleum products to the world. We do not see this capacity as ours alone. We see it as a responsibility to stand as a dependable, transparent, and stable source of energy for our friends and partners across the world.
1: नवीनीकरण और टेक्नोलॉजी को मजीद बढ़ावा देने के लिए बन में एक नई प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। ये लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती हैं। रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से ये प्रयोगशाला मुर्शिद नौजवानों को अपनी परियोजनाएं विकसित करने की संभावनाएं देती हैं। अनाबेल वुलबेर की रिपोर्ट पर ये विवरण।
4: इस सुसज्जित कमरे में एक

0: कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की किट्स मौजूद हैं। ये प्रयोगशाला, जिसे मॉरिशस में अपनी तरह की अनोखी प्रयोगशाला बताया जा रहा है, मॉरिशस के अधिकारियों और स्टेम पावर नामक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से स्थापित की गई है। ये संगठन विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में कौशल विकसित करने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्टेम से जुड़े क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। आज मॉरिशस में शुरू की गई ये प्रयोगशाला युवाओं के लिए प्रयोग सृजन और नए विचारों को विकसित करने की जगह के रूप में काम करेगी। आईसीटी मंत्री अविनाश रामतोहल कहते हैं, इस लैब में करीब 24 कंप्यूटर हैं, जो एक सर्वर से नियंत्रित हैं, कई उपकरण हैं। ठेकेदार, टेक्नोप्रेन्योर, कॉलेज के छात्र और यूनिवर्सिटी के छात्र तथा खोजकर्ता अपनी पैदावारों की जांच यहां करने आ सकते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को उन तकनीकों तक सीधी पहुंच देना है, जिनके बारे में वे अक्सर पहले किताबों या केवल सैद्धांतिक रूप से सीखते हैं। ये तरीका कुछ छात्रों को पहले से ही पसंद आ रहा है। इंपीरियल कॉलेज के लेक्शान जावन कहते हैं, इस लैब से छात्रों को लाभ होगा। जिनके पास विचार हैं, वे अपनी परियोजनाओं को साकार कर सकते हैं, लेकिन इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उपलब्ध उपकरणों का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। आईसीटी मंत्रालय में एआई यूनिट के अधिकारी रामाकृष्णा मुडालिया कहते हैं, एक ऑनलाइन सिस्टम है, लोग एक स्लॉट बुक कर सकते हैं, यहाँ आकर वे अपना काम कर सकते हैं, मार्गदर्शन मिलेगा, वे एआई आर्टिफैक्ट्स रच सकते हैं और जीवन तथा समाज की समस्याओं से निपट सकते हैं। एबेन स्थित ये प्रयोगशाला छात्रों, टेक्नोप्रेन्योर और शोधकर्ताओं के लिए खुली रहेगी। फिलहाल ये सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुली है और आने वाले समय में इसके समय को बढ़ाने की योजना है।
1: मॉरिशस के 14 फिशरीज पोस्ट में मत्स्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। कलमीबाग में स्थानीय मछुआरों को सुरक्षा सामग्रियां दी गईं ताकि मछलीमार का समर्थन किया जा सके। वहां पर मौजूद मंत्रियों और इलाके के सांसदों ने मछुआरों का समर्थन करने और उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए मुख्तलिफ सहायक योजना का उल्लेख किया। ये जानी कि देश में 2000 से ज्यादा माहीगीर हैं।
0: मेबर्ग गांव में सबसे ज्यादा मछेरे हैं। यहां 400 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं सीधे इसी काम से अपनी आजीविका चलाते हैं। ओजिना सीमा किस्तु कहती हैं, 2.5 साल हुए हैं फिशिंग कार्ड मिला है। ये एक आसान पेशा नहीं है, हर रोज समुद्र में नहीं जा सकते। जॉन तुरैत कहते हैं कि वे 50 से ज्यादा वर्षों से मछली पकड़ते हैं, ये एक अच्छा काम है। नौजवान मछेरों से अच्छी तरह ये काम करने की मांग करते हैं। इस क्षेत्र में ये पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आया है। जॉन गायल जेली कहते हैं, उनके बड़े लोग मछेरे थे, अब वे भी ये काम करते हैं। खराब मौसम में समस्याएं होती है, तब वे अपनी जालें ठीक करते हैं। जय हरलाल कहते हैं कि 40 से ज्यादा सालों से वे मछली पकड़ते हैं, परिवार में सभी लोग मछेरे थे। मंत्री अरविंद बुलेल बताते हैं, इन लोगों के पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर है, वे मछली पकड़ सकते हैं, ऑयस्टर की पैदावार कर सकते हैं, आल्गे की पैदावार कर सकते हैं। मछेरा समुदाय के लिए भारी संभावनाएं हैं, सहायता कदम भी हैं। 65 साल की उम्र में उन्हें पेंशन मिलता रहेगा और वे अपना काम भी कर सकते हैं। दुर्घटनाओं को रोकने और समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कूलर बॉक्स, फर्स्ट एड किट और आपातकालीन संकेत उपकरण वितरित किए गए। जूनियर मंत्री फैब्रिस दाबिद कहते हैं, स्पीड बोट का इंजन बदलने के लिए मंत्रालय 50,000 रुपए दे रहा है। DBM 1,00,000 रुपए तक का लोन दे रहा है। कुल 2,483 मछेरों के साथ समुद्र स्थानीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। सरकार का लक्ष्य इस महत्वपूर्ण गतिविधि का टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है, जो तटीय समुदायों के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर विवरण गीता सुनारान का रहा। जानवरों की भलाई के लिए कोशिशें ठोस की जा रही हैं। गैर सरकारी संगठन कच्छिलापात आज सुबह सेंट मेरीज कॉलेज में गया था ताकि छात्रों को जानवरों की इज्जत करने, उनका दर्द समझने और उनकी देखभाल करने के लिए आगाह किया जा सके। अंजुराम गुलाम की रिपोर्ट पर यह विवरण।
2: सेंट मेरीज कॉलेज में दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने

0: के बाद ये छात्र एक खास सत्र में भाग लेने वाले हैं। काचिलापात हर सरकारी संगठन की ओर से एक लघु सत्र का आयोजन किया गया। यहाँ मौजूद लोग अपनी आवाज बुलंद कर जताना चाह रहे थे कि जानवरों के प्रति लगाव है। लोग जोरा की ओर इशारा कर रहे थे और वो अपने प्रति इतना प्रेम लगा पाकर खुश ही है। जोरा को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और इसे पेट के पास वाले हिस्से में काफी चोटें भी लगी थी। उसे डायपर्स भी पहनना पड़ता है। अब उसके लिए एक छोटा सा इंतजाम भी कर लिया गया है इनके छोटे छोटे पंजों की जगह पर।
1: Zora, c'est une chienne handicapée qui nous rentre dans la vie il y a deux mois. Qui fait une amélie, c'est pour montrer aux enfants du collège et la direction qui nous remercie d'ailleurs, qui la responsabilité, c'est quotidien quand on occupe des animaux.
0: कठिन और अलग अलग स्थितियों का सामना करते हुए जैसे तैसे जोरा का जीवन चल रहा है, वो है हिम्मत, ताकत, जीने की चाह रखने वाले मजबूती का प्रतीक।
2: Les chiens handicapés, ça me touche. Et j'ai deux chiens.
3: Qu'est-ce que tu as pensé de Zora?
2: Les conducteurs sont méchants.
0: Vidéo chalaya gaya, jise yahan maujood log dhyanpurvak dekh rahe the. Shirshak, Nizami le chien, kutton par aadharit. Netflix mein iska prasaran ho raha hai. Naam hai La paroisse des chiens errants. Ye padri Gomez ke liye samarpit hain jo agle 1 October mahine mein Mauritius aayenge. Kal ke vayask banne wale aaj ke in naujawanon ke liye इसी संदेश पर जोर, जानवरों की रक्षा करें। ऐसी जान जो बिना किसी शर्त के सिर्फ देते ही है, लेकिन कई बार मनुष्य के रहम पर जीते हैं। ये अभी केवल शुरुआत ही है जागरूकता अभियान के लिए।
1: Faire une invitation, nous déjà invité à notre école si vous êtes intéressé pour nous faire la conscientisation sur la maltraitance animale, pas hésiter prendre contact avec nous.
0: नौजवानों को ये जानने का भी मौका मिला कि किसी दुर्घटना के चलते ये जानवर जख्मी हो जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहने, जीवन जीने की चाह मरती नहीं। ये बात जोरा की समझ में आ ही गई। ऐसे में इनाम के तौर पर वो एकाध बिस्कुट की हकदार तो जरूर है ना?
4: 18 सालों के बाद पोर्ट लुई थिएटर फिर से कार्यरत होने लगा है। निर्माण कार्यों के लिए काफ़ी वक्त लगा और इस परियोजना के लिए 500 मिलियन रुपए लगे हैं। इस परियोजना के सफ़र पर ये विवरण।
5: पहला अध्याय 2008 में शुरू होता है। पोर्ट लुई का थिएटर अपने दरवाजे बंद कर देता है। करीब 200 साल पुरानी ये इमारत समय के साथ जर्जर हो चुकी थी। चूहे और दीमक भी इसे नुकसान पहुंचा रहे थे। पोर्ट लुई नगर पालिका के अनुसार ये इमारत सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी थी, लेकिन इसके पुनर्निर्माण के लिए नगर पालिका के पास सिर्फ 50 मिलियन रुपए थे, जो इतने बड़े काम के लिए काफी नहीं थे। करीब 10 सालों तक स्थिति ऐसी ही बनी रही। 2018 में जाकर पहली बार काम शुरू हुआ। ये पहला चरण इमारत को मजबूत करने पर केंद्रित था। ये काम 2020 में पूरा हुआ, जिसकी लागत करीब 100 मिलियन रुपए थी। इस काम में फ्रांसीसी विकास एजेंसी ने भी सहयोग दिया। भूषण रामलोल कहते हैं,
6: Le théâtre de Pauli, le grand floor du théâtre de Pauli, il est situé sous le niveau de la mer.
5: Donc, थिएटर का ग्राउंड फ्लोर समुद्र के जल स्तर के नीचे है। हमें फिर से एक बेसमेंट बनाना पड़ा। एक बंकर भी बनाया गया ताकि जब पानी ऊपर चढ़े तो उसमें न भरे। छत पूरी तरह सड़ गई थी, उसे पूरी तरह फिर से बनाया गया उन्हीं लकड़ियों से जो पहले से वहाँ मौजूद थी। दूसरे चरण के शुरू होने से पहले 3 साल बीत गए। जुलाई 2024 में भूषण रामलोल की अगुवाई वाली अभी कंस्ट्रक्शन को दूसरे चरण का ठेका करीब 400 मिलियन रुपए में मिला। इस बार मकसद सिर्फ इमारत को बचाना नहीं, बल्कि उसके पुराने गौरव को वापस लाना था। सुनहरी सजावट, बालकनियां और 1850 की डोम को उसके मूल रूप में फिर से चमकाने का काम किया जाना है। डोम को फिर से बनाने के अध्ययन के लिए करीब 25 मिलियन रुपए का बचत था। हमने काफी बचत की और इसमें करीब 15 मिलियन रुपए खर्च किए। कुल मिलाकर पोर्ट लुई थिएटर के पुनर्निर्माण की लागत अब करीब आधा बिलियन रुपए तक पहुंच गई है। सभी तरह की समस्याओं के साथ साथ कई चीजों पर फिर से ध्यान दिया।

0: जाना चाहिए था।
1: अनफॉर्चुनेट वर्क्स कौन उठे सो मेट लाबाओ एक्सेट्रा इन अ बुकू ज़ाफे की चीज़ बिज़ा रिवॉर।
0: अब आखिरी अध्याय की तैयारी चल रही है। थिएटर को पहले अगस्त 2025 में दोबारा खोलने की घोषणा की गई थी, अब इसके सितंबर 2026 में खुलने की उम्मीद है। लॉर्ड मेयर कहती हैं, अगर निर्धारित अवधि यानी अगस्त के आखिर तक ये मिल जाएगा तब सितंबर तक ये कार्यरत हो जाएगा। करीब दो दशकों के इंतजार के बाद पोटरी थिएटर आखिरकार एक बार फिर अपना पर्दा उठाने की तैयारी में है।
2: कैमरून की सरहद के पास जाम्बोए खान के नज़दीक एक भूस्खलन पेश आया और सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है जो खान में काम करते थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये खान गैर कानूनी तरीके से कार्यरत था, इसी वजह से वो खतरनाक था। अभी तक लाशों को निकाला जा रहा है। केंद्रीय अफ्रीका में कोलेरा का फैलाव होता जा रहा है। कैमरून और चैड में इस बीमारी की वजह से सैकड़ों मौतें दर्ज हो रही हैं। साफ पानी नहीं है और स्वास्थ्य ढांचों की कमी है, इसी वजह से इलाज मुनासिब नहीं है। प्रभावित इलाकों में अधिकारियों ने फैलाव को रोकने की कोशिश की लेकिन जीवन स्थिति वहाँ अच्छी नहीं है। यूक्रेन की राजधानी में रूसी हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है और 40 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कीव में हवाई प्रतिरक्षा मिसाइल कम होते जा रहे हैं। और अमेरिका में राष्ट्रीय कर्ज एक दशक में $40 ट्रिलियन का हो गया है। वजह ये है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के शासनों के दौरान बहुत खर्च किए गए और सूद दर भी काफ़ी बढ़ गए थे। सन 2016 में राष्ट्रीय कर्ज $20 ट्रिलियन से कम था। और अब करते हैं स्थानीय मौसम की बात। आम हालत हमारे इलाके में कुछ अस्थिर बादल हैं और आज रात से स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात मौसम सुहाना रहेगा रात के दौरान और कल सुबह पूर्व और सेंट्रल प्लेटों में बादल घिराएंगे और रह कर बारिश होगी। कल दोपहर बाद बारिश होगी खासतौर पर पश्चिम में और हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समंदर चंचल रहेगा, 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। इसी वजह से दक्षिण पश्चिम में न जाने की सलाह दी जाती है, वहां ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:28 पर सूरज उगेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इस बुलेटिन आप तक पहुंचाने में हमें समाचार फ्रेंच विभागों की मदद मिली है और हमारे तकनीकी साथी लुडोविक जोहांगिया की सहायता भी मिली है। नमस्कार, आदाब। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।

शोक समाचार सुनिए। कोपरवर रोड गुडलैंड्स में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड श्री जगदीश दामरी जो जगदीश जग के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े ग्यारह बजे इनके घर कपरवर रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआकूज गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 11 AM। तयरूज में 37 साल के 37 ईयर्स ओल्ड श्री विराज भागोबान जो दू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनकी माँ सीता भागोबान के घर तयरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 10 AM। बिरला रोड कॉटेज में 45 साल की 45 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जीना चिकोई पैदाइशी नाम अलीगन जो पूजा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल एक बजे इनके पति राजेश टिकोई के घर बिरला रोड कॉटेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कागुआ कासिया कॉटेज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। परमिशन टुमारो एट 1 PM।

सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। शनिवार 22 अगस्त को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 2:30 बजे तक वेल और आसपास के इलाकों में रॉयल रोड, स्विचीज रोड एंड बॉम्बू रोड में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: शुक्रवार 21 अगस्त को शाम 5 बजे से लावांचिया के जरनाथ शिवालय द्वारा काली पूजा का आयोजन किया गया है। श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में बौलो आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा शुक्रवार 21 अगस्त को शाम 5 बजे रॉयल रोड बौलो के स्वामी दयानंद वैदिक भवन में यज्ञ और प्रवचन का आयोजन कर रहा है। प्रवचन आचार्य मोहन आर्य श्रुबंधु द्वारा होगा। शुक्रवार 21 अगस्त को शाम 3 बजे श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में औषधेय रविवेद प्रचारिणी सभा शाखा नंबर 5 गांधी भवन महात्मा गांधी रोड गोष्ठिया में साप्ताहिक यज्ञ का आयोजन कर रहा है। शुक्रवार 21 अगस्त को श्रावण मास महोत्सव के संदर्भ में गहलोत राजपूत महासभा के तत्वावधान में कौतूहल राजपूत समाज शाखा नंबर 8 शाम 5 बजे कौतूहल

जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय तथा प्रभु के प्यारे भक्तों को हमारा सही स्नेह भरा प्रणाम है आप सभी को। आप सुन रहे हैं भजते प्रभु का नाम और मैं हूँ देवीना आपके साथ इस आधे घंटे की भक्तिमय यात्रा में। आइए मन को शांत करते हैं, आंखें बंद करें तथा अपने भीतर उस परम शक्ति को हम महसूस करें जिसने हमें आज का यह सुंदर दिन दिया है। जब मन थक जाता है तो प्रभु का नाम सहारा बन जाता है। जब रास्ते कठिन हो तो प्रभु का विश्वास उजियारा बन जाता है। श्रोताओं, जीवन में हर चीज़ हमारे मन के मुताबिक नहीं होती। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी बहुत कठिन। प्रभु कठिनाइयों को हमेशा खत्म नहीं करते, कभी कभी भी हमें उन कठिनाइयों से निकलने की शक्ति देते हैं। पहले भजन की ओर बढ़ते हैं।

0: भ्राजपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये।
1: जय श्रोताओं, जिसने मन में प्रभु का विश्वास होता है उसके चेहरे पर परिस्थितियां नहीं उम्मीद दिखाई देती है। तो आज अपने मन से एक डर निकाल दीजिए, कहिए हे प्रभु जो मेरे लिए अच्छा है वही मुझे देना, तथा जो मेरे लिए अच्छा नहीं है उससे मुझे दूर रखना। अब इसे खूबसूरत भावना के साथ सुनते हैं अगला मधुर भक्ति गीत।

आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम। आइए कुछ पल प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे परिवार को स्वस्थ तथा खुश रखना, जो दुखी हैं उन्हें हिम्मत देना, जो दुखी हैं उन्हें रास्ता दिखाना, जो अकेले हैं उन्हें अपना साथ महसूस कराना, तथा हमारे मन में हमेशा प्रेम, दया और विश्वास बनाए रखना। हे प्रभु, हमें इतना सामर्थ्य देना कि हम किसी के दुख का कारण नहीं, किसी की मुस्कान की

0: शिव शंकर नमामि शंकर
1: शिव शंकर नमामि शंकर
0: जय जय शिव शंकर नमामि शंकर।
2: श्रोताओं, श्रावण मास यानी भक्ति आस्था तथा भगवान शिव की आराधना का पावन महीना हम मना रहे हैं। इन दिनों वातावरण में ही जैसे शिव भक्ति की एक अलग मिठास ढुल जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हर ओर सुनाई देता है और मन अपने आप भोलेनाथ के चरणों में झुक जाता है। श्रावण हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, परंतु मन में विश्वास हो तथा जुबां पर प्रभु का नाम हो तो हर कठिन रास्ता भी आसान लगने लगता है। बेलपत्र चढ़ाइए, जल अर्पित कीजिए, परंतु साथ साथ अपने मन में अहंकार, क्रोध तथा नकारात्मकता आने न दीजिए, इनको अपने से दूर रखिएगा।

जहाँ श्रोताओं, प्रार्थना का समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस मन से प्रभु को पुकारा जाता है वह मन कभी अकेला नहीं रहता। आज की रात्रि जब आप अपने घर में जाए, अपने परिवार को प्यार से देखिए, एक मुस्कान दीजिए तथा मन ही मन कहिए, धन्यवाद प्रभु आज का दिन देने के लिए, आज की रात्रि देने के लिए, कल की सुबह भी अपनी कृपा के साथ लाना। इस विश्वास के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आप सुनते रहिए MBC रेडियो मॉरिशस, और अपने जीवन में हमेशा बनाए रखिए भक्ति, विश्वास तथा सकारात्मक सोच। जय श्री राम। राधे राधे।

दुआ है हमारी कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से खैर व आफियत से रहें। सामीन कराम, आइए महफ़िल शब का आगाज़ इस हमद से करते हैं।

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। उन्होंने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाई बल्कि सच्चाई, अमानत, सब्र, रहम, हया और हुस्न मुआशरत की अमली तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अखलाक हसना का बेहतरीन नमूना।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it.

0: Your kind of music all day, all night.
1: MBC teen programs की झलकियाँ
2: जहाँ भी ले जा रहे हो वहाँ पहुँचना नहीं चाहते, पर ये रास्ता ये बहुत अच्छा है. मैं चाहती हूँ कि ये रास्ता कभी खत्म ना हो.
3: शुक्रवार 21 अगस्त को MBC 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म हाईवे 2014 की ये मूवी आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा पर फिल्माई गई हाईवे.
1: MBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ.
2: यहाँ से मुझे अकेले ही जाना होगा.
4: नैना, तुम्हारे लिए अंदर खतरा हो सकता है.
2: शायद, पर अब जो भी है मुझे ही झेलना होगा. मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, पर मेरा पूरा विश्वास है कि उसकी आत्मा की सच्चाई तक पहुंचने के लिए मुझे अकेले ही जाना होगा. समीर,
3: शनिवार 22 अगस्त को MBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म नैना 2005 की ये मूवी उर्मिला मातोंडकर और अनुज पर फिल्माई गई नैना.
1: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे.
5: किरण के ओर से आप सब कोई के भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत बा. आप सब कोई के करजोर नमस्ते. ई बखत रात के 9:03 होल बा और आज है बीफे 20 अगस्त 2026 के रात्रि. और कहूँ कहूँ पानी बरसता, कहूँ कहूँ थोड़ा गर्म करके शुरू कर दे ले बा. ऐसन में आप हमने संगे जुड़ल रहिया. आपके मनपसंद प्रोग्राम ई बखत चलता रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तड़का, जेकर इंतज़ार आप सब कोई के रहेला. ई पहला गीत आप सब कोई के नाम संभावती दुमन के आवाज़ में नाकों के फुलिया गिरता था गिरे दे. और जब तक कि ई गीत चली आप सब कोई के फरमाइश हम नोट करे के यहाँ पर पूरा रूप से तैयार है.

0: का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night.
0: MBC TV, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: मेरे पास टिकट के पीछे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस का एड्रेस है।
5: तुम वहाँ मिलोगे ना?
4: हाँ बाबा।
6: अटक गए होंगे कहीं पे, आ जाएंगे। ऑफिस अभी खुला है, 5 बजे तक चलेगा। ए छोटू, ये रहा, ले क्या?
7: ये लो चाय, अंकुश भैया ने भेजा है।
5: तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अंकुश, बहुत कुछ। थैंक यू सो मच।
0: रविवार 23 अगस्त को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म आहिस्ता आहिस्ता 2006 की ये मूवी अभय देओल और सोहा अली खान पर फिल्माई गई आहिस्ता आहिस्ता।

रात के 9:14 होल बा और आप लोग के फरमाइश आवा था एक के बाद एक, और जितना भी गीत के फरमाइश आवा था वो सब चलावे के हमार पूरा कोशिश रही। अगला गीत बिस्वानी दीपा की आवाज़ में लीलो सड़िया, और ये गीत सुने चाहत हवन पितों से अमृता गणेश। अमृता गणेश जी ये गीत ख़ास तौर पर सोनिया परी और मीनाक्षी और विशान और साथ में उनकर बेटी पूनम के नाम करत हवन। उधर घोंगुप से सुनीता जी यही गीत अपन बहिन अमृता और कोंगुमा के दूसरा बहिन विमाला के नाम करत हवन। और उधर यही गीत सुने चाहत हवन ललिता जी। ललिता जी ये गीत नाम करत हवन देवीना ज्ञानी छोटी प्रभावती और हरीश और आत्माराम भैया और माला रामजावन के नाम। और लीलो सरिया जेके भी पसंद है, जेकर भी मनपसंद गीत है, चला ये गीत आप सब कोई के नाम बिस्वानी दीपा की आवाज़ में।

ई वक्त रात के 9:20 हो गल बा और हमनी के साथ रही अभी से रात के 11 तक 2 के ई प्रोग्राम चलेला आपके फरमाइश के दम पर। और अगला जो गीत चली ई गीत आजकल जो श्रावण मास चलता ओकर संदर्भ में बा शिव के महिमा लीलो माथुर के आवाज़ में। और जितना कोई भी अभी श्रावण मास से जुड़ के व्रत पूजा प्रार्थना करा था वजह आप सब कोई के नाम ये अगला गीत खास तौर पर ई गीत के फरमाइश अलबा शीला जी के ओर से उनकर पति सुरेन उनकर सब लड़का के नाम और अभी उनकर संगे हवन सोनम यौवन उधर कबीर रुद्राक्ष श्लोक शशि उनकर बेटी किरण और फिर आंसले सब कोई के नाम। और ख़ास तौर पर जितना कोई भी अभी श्रावण मास के पालन करत हवा जा आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना।

लीलो माथुर के सुंदर मधुर आवाज में शिव की महिमा के बाद जो दूसरा गीत चली वह विनोद सिद्धत की आवाज में संगत कर जान के पानी पिया छान के गीत सुने चाहता वन सेजिया मिल से शांता सुखारी जी। आप गीत अपन सब लड़कालों के नाम करत हवा बेटा सुदेश जे हमेशा हमी के सुनते रहेलन और साथ में हवन आपके दूसर बेटा रवीन उनकर पत्नी किरण और फिर प्रवेश अशोक सुजीत आपके पूरा परिवार संजना। बहुत प्यार से शांता जी ये गीत आप अपन पूरा परिवार के नाम करत हवा ये प्रोग्राम आप हमेशा सुनते रहेला आपके प्यार खातिर आपके वफादारी खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसन हमनी के कितने ऐसन श्रोता हवन जा जे लोग के बहुत बेसब्री से ई प्रोग्राम के इंतज़ार रहेला उ चाहे गरम करी चाहे ठंडा करी चाहे पानी बरसी तूफान आए आप लोग

0: के साथ हमेशा रहेला। कोनो भी परब रही, कोनो भी बखत रही, आपके प्यार, आपके फोन कॉल्स, आपके बातचीत ई प्रोग्राम में शामिल होते रहेला। ई खातिर हमनी बहुत बहुत आप लोग के शुक्रिया करत है जा, धन्यवाद करत है जा। तो चला अगला गीत विनोद सिद्दत के आवाज में।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे।

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग, यू आर RM3 मनोरंजन रेडियो।

0: Your kind of music all day, all
1: night. NBC TV programs की झलकियाँ.
2: पहचान लिया ना? तुम्हारा पुराना साथी मन्नू. अब बता कि हराम की कमाई कौन खाता है? तू या मैं? गब्बा, तो तू मुझे जेल भेजकर मेरे पैसों से आराम से यहाँ पर टीवी देख रहा है.
3: रविवार 23 अगस्त को एमबीसी 4 पर शाम के 8:30 बजे 1998 की हिंदी फीचर फिल्म ड्यूप्लीकेट शाहरुख खान पर फिल्माई गई.

रात के 10 बजे में अभी लगभग और 20 मिनट कमती बा और फिर 11 बजे तक हमने के साथ रही। अगला जन गीत चली सुना नोयान के आवाज में, बाचा बोल जिंदगी बा।

चारों तरफ गोल इगीत सुने चाहत हवन पॉम्पलमुस से शोभा जी, और इगीत शोभा जी खुद अपन नाम करत हवन। उधर बोनतिया से जानवी अभी हमने के सुनत हवन, जानवी के नाम ई अगला गीत। और एकर बाद जो अन्य फरमाइश आलबा वो चलावे के जरूर

जा। और जितना कोई भी अभी हमने के सुना था वह जा, चाहे आप सफ़र पर हुई बा और देखत है जा कि सफ़र पर आजकल हमने के सड़क तो वैसे ही बा, लेकिन दुर्घटना कुछ जस्ती बढ़ गल बा। काहे बढ़ाता, कैसे बढ़ाता, ये बात के जे समझे छ बा, तो सबसे बड़ा बात तो यही है कि चाहे बहुत ध्यान से आपके अपन सफ़र तय करे के, बहुत ध्यान से गाड़ी चलावे के, और जे ज़रूरी नहीं रही तो रात के चाहे नहीं निकले के, लेकिन जे ज़रूरी बा तो पूरा सावधानी के साथ अपन गाड़ी चलावा। और डिफेंसिंग ड्राइविंग एगो चीज़ के नाम है, चाहे अब हमने के ये बहुत हद तक अपनावे के। और जे हमने के अपन कमरा में अपन बिस्तर पर लेटे लेटे सुनत हवा, तो आप सब कोई के नाम ये गीत। और जितना कोई अभी जे काम करत हुई बा, काम करते करते हमने के सुनत हवा, तब भी हमने आपके साथ है जा और आपके याद करत है जा। आपके जोन समय बा वो अच्छा से गुजरी, बहुत हौसला के साथ गुजरी। रात के काम करे के आसान नहीं है, तो आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। और चला एगो बहुत ही एगो उत्साहपूर्ण गीत चलाओ अब जा, मज़ेदार गीत जेकर से आप सब कोई के एगो ऊर्जा के लहर महसूस होई।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all
0: night. MBC TV right programs ki jhalkiyan.
4: जहाँ भी ले जा रहे हो वहाँ पहुँचना नहीं चाहती। पर ये रास्ता, ये बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि ये रास्ता कभी खत्म ना हो।
0: शुक्रवार 21 अगस्त को MBC 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म हाईवे 2014 की ये मूवी आलिया भट्ट और रणदीप हुड्डा पर फिल्माई गई हाईवे।

भोजपुरी तड़का किरण संगे। ई जोन धुन अभी चलता एकर से के परिचित नहीं बा, के नहीं जानेला ई कौन धुन है। रंभा राम दोहल के आवाज में जुबेदा लोतु लेके जाए ई गीत सुने चाहत हवन। भाई अबू ई गीत अबू अफेज असलम अयाज जयर जहीरा रईस कला चोटी और उनकर दोस्त आपी और उनकर बीवी के नाम करत हवन। और भाई अबू जितना कोई ई बखत सुनत हवजा आप सब कोई के नाम भी ई गीत के फरमाइश कर ले हवन।

रात के 10 बजे था और जो अगला गीत चली वह नीरज गुप्त मधु के आवाज़ में हिले साबुन हिले लुंडा। और ये गीत सुने चाहा था वन सेंट पियर लाविनिया से अफेज। ये गीत जितना कोई ये बखत ये प्रोग्राम सुना था वजा आप सब कोई के नाम करा था वन।

गीत गवाई में जाना है चंदा, ई गीत के फरमाइश कर ले हवन रोजिल से सजीत, और ई गीत आप अपन दोस्त सरोवर के नाम करत हवा जे कनाडा में हवन और जे आज काम पर निकल हवन घरे हवन और सुनत हवन ई प्रोग्राम, और ई गीत आप सब कोई के नाम जे गीत गवाई में खुश रहला जा जाए के।

सिया मांगे अयोध्या के राज सरयू नहाने को ई गीत के फरमाइश कर ले हवन बॉशेरी से कल्याणी जी और ई गीत आप नाम करथवर गीता राधा की सुन अंजू सब परिवार बड़की मुनुवा शोभा उदित और आपके पूरा परिवार के नाम बॉशेरी से कल्याणी जी के ओर से।

0: का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music all day, all
0: night. MBC TV, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: मेरे पास टिकट के पीछे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस का एड्रेस है।
5: तुम वहां मिलोगे ना?
4: हाँ बाबा।
6: अटक गए होंगे कहीं पे, आ जाएंगे। ऑफिस अभी खुला है, 5 बजे तक चलेगा। ए छोटू,
7: ये लग जाए, अंकुश भैया ने भेजा है।
5: तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अंकुश, बहुत कुछ। थैंक यू सो मच।
0: रविवार 23 अगस्त को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म आहिस्ता आहिस्ता 2006 की ये मूवी अभय देओल और सोहा अली खान पर फिल्माई गई आहिस्ता आहिस्ता

रात के 10:15 हो गल बा और लगभग 45 मिनट के हमने के साथ बाकी बा। आप लोग इ बखत तक साथ देवेला जा बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो गीत चली, इ गीत के

मांग कर ले हवन बुआशेरी से धनी जी, और धनी जी के जो सबसे मनपसंद गीत है उनमें से एगो है धनाजी नावजी के गावल, धुआं उड़े ले जाला सीटी बजे ले जाला जवानी के रेल। ये गीत सच में उनकर फरमाइश पर सुनते सुनते हमके भी बहुत पसीना लगल बा। तो चला इस सुंदर गीत धनाजी नावजी के आवाज़ में ये गीत सुनी जा धनी जी के फरमाइश पर।

बड़की मसाला पिसेला ये गीत सुने चाहत हवन क्रिश हृदय के आवाज में। फ्लिकॉन फ्लक्स से अनिता जी और अनिता जी ये गीत नाम करत हवन अपन पति राज, बेटा अंतिश, अंकुश, बहु मनीषा, आशिमा, पोती हिमेशा, आध्या, पोता अंश और जितना कोई भी ये बखत रेडियो सुनत हवा जा आप सब कोई के नाम फ्लिकॉन फ्लक्स से अनिता जी के।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। भोजपुरी तड़का किरण संगे।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music all day, all
0: night. MBC TV programs ki jhalkiyan.
4: Pehchan liya na? Tumhara purana saathi Mannu. Ab bata. कि हराम की कमाई कौन खाता है, तू या मैं? गब्बा, तो तू मुझे जेल भेजकर मेरे पैसों से आराम से यहाँ पर टीवी देख रहा है।
0: रविवार 23 अगस्त को एमबीसी 4 पर शाम के 8:30 बजे 1998 की हिंदी फीचर फिल्म ड्यूप्लीकेट शाहरुख खान पर फिल्माई गई।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your 1&1 station.
0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
4: आज की रात भोजपुरी तड़का में आप हमारे साथ देवा थवा रात के 9 बजे से और 11 बजे में लगभग 10 मिनट कमती बा आपके साथ खातिर, आपके प्यार खातिर, आपके फ़ोन कॉल्स खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हमने की मुलाकात काल फजर के फिर से हुई हमारी धरोहर में और नहीं तो भोजपुरी तड़का में फिर से मिलब जा आवत बीफे के। अपन ख्याल रखिए, श्रावण मास के आप सब कोई के एक बार

बार फिर बहुत बहुत बधाई। और अभी से एक सप्ताह तक जो तैयारी चला था रक्षाबंधन के, ई खातिर भी आप सबको एक बहुत बहुत शुभकामना। अपन ख्याल रखिए, शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Very good evening to all of you. नमस्कार जी, और गणेशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और शुरू हो चुका है आपका सुनहरे पल। तो आइए लौट चलते हैं उन खूबसूरत दिनों में जब बॉलीवुड के गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिल में बसा लिए जाते थे। अगले कुछ घंटों तक साथ रहिए और महसूस कीजिए पुरानी यादों का जादू सिर्फ सुनहरे पल में।

तो मेरे प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स, हर गीत किसी ना किसी दिल की जुबां होता है। कुछ गाने खुशी बयां करते हैं और कुछ मोहब्बत, और कुछ वो बातें जो हम कभी लफ्जों में कह ही नहीं पाते। आज का हर नगमा शायद आपके दिल की कहानी कह दे। तो जहां भी है आप, मुस्कान के साथ हमें भी अपना साथी बना लीजिए और चलिए बॉलीवुड के सुनहरे दौर का लुफ्त उठाने में चलिए जी। ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम।

दोस्तों, अगर आप घर पर आराम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो या हो सकता है सफर पर हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए पुराने बॉलीवुड संगीत का खजाना। ये है सुनहरे पल, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, अगला नगमा खासकर आपके नाम।

कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें बसी होती हैं हमारी ज़िंदगी की खूबसूरत यादें। तो तैयार हो जाइए सुनहरे पल के साथ, जहां हर नगमा दिल को सुकून देता है और पुरानी यादों को ताज़ा कर देते हैं।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: याद कीजिए उन दिनों को। वाकई में वो दौर अलग था, वो गीत अलग थे और उन गीतों की बात ही कुछ और थी दोस्त। और रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में आज भी सजेगी यादों की महफिल, तो साथ बनाए रखे और बस हर एक गाने को आप दिल से महसूस कीजिए।

बॉलीवुड के सुनहरे दौर के लाजवाब गीत, दिल को छू लेने वाली आवाजें और यादों से भरा सफर। बिल्कुल जी, ये सब कुछ लेकर हाजिर है सुनहरे पर, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। और अगला गाना हम उन लोगों के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे जो शायद इस वक्त काम पे हैं, एंड इफ यू आर वर्किंग राइट नाउ, आपको हम विश करना चाहेंगे बो कोराज माय डियर। तो चलिए, ये अगला नगमा खासकर आपके नाम।

सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, पुरानी फिल्मों के गीत, पुरानी यादें और वही पुराना एहसास। चलिए कुछ पल के लिए वक्त को पीछे ले चलते हैं दोस्त, और अगला गाना हम ऐसे पेश करना चाहेंगे जो हम चाहते हैं कि आप आराम से बैठे, आंखें बंद करके अपने इन खूबसूरत यादों में खो जाइए, उनको याद कीजिए। होंठों पर आम प्रेटी मच्छों की छोटी सी प्यारी सी मुस्कुराहट जरूर आएगी। तो ये रहा अगला गाना खासकर आपके लिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. बिल्कुल, इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुड बाय. आपको विश करना चाहेंगे टू हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम अहेड, लेकिन बस यूं ही साथ देते रहना ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल. फिर से लौट आएंगे एक और खूबसूरत से शो के साथ. तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

0: You're listening RM Free Radio. Radio. Radio.
1: ओए कहाँ जा रहे हो तुम?
2: मैकडॉनल्ड से हैमबर्गर लाने जा रहा हूँ, तुम खाओगी?
1: हाँ, लेकिन वेजिटेरियन।

एक साथ धड़के हैं।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,